ये आकाशवाणी है FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के अश्विन माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 6 अक्टूबर वर्ष 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। आज शाम 5 बजे आप सुनिएगा युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेगी महिला जगत।

6:05 पर आप आनंद उठा सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत में। 6:20 पर लोक गीतों का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर। 7:00 किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे किसान वाणी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 7:30 पर। एल्बम सॉन्ग्स का आप आनंद ले सकेंगे 8:00 और लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर आप सुनेंगे 8:30 पर। गजलें सुनने के तलबगार सुन सकते हैं 9:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंद गजलें, और 9:25 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। और आज सुबह अभी सुनिएगा 9:10 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 9:20 पर, और हमारा कार्यक्रम इनसे मिलिए आप सुनिएगा सुबह 9:40 पर। और आज आप सुनेंगे गाल ब्लैडर की और किडनी की पत्रिका होम्योपैथिक उपचार विषय पर डॉक्टर श्रीराम शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। सुबह 10:00 कार्यक्रम होगा गाने पुराने जमाने के, और 10:30 पर आप आनंद उठा सकेंगे गाने नए तराने नए कार्यक्रम। श्रोता सुबह के 9:00 रहे हैं, आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी जयपुर और सुनवाते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम में धनतेरस पर्व को देखते हुए बदलाव किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और प्रवेशिका की परीक्षा इस शैक्षणिक सत्र से साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। FSSAI ने सभी राज्यों से त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा और भारतीय थल सेना की एविएशन विंग ने पश्चिमी सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर की ड्रोन रोधी क्षमता का प्रदर्शन किया। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम में धनतेरस पर्व को देखते हुए बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि धार्मिक आस्था और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान की तारीख एक दिन पहले कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पंच सरपंच के लिए मतदान 24 और 30 अक्टूबर तथा 5 नवम्बर को होगा।
1: जो प्रथम चरण का जो चुनाव है वो अपने उसकी 22 अक्टूबर को पोलिंग पार्टीज का प्रस्थान पहुंचता, जिसको हम 21 अक्टूबर कर रहे हैं। तो इसी तरह से पूरा शेड्यूल एक दिन पीछे खिसकाया गया है। तो अब जो तृतीय चरण में सबसे ज्यादा जो आपत्ति आ रही थी वो ये था कि 6 नवंबर को धनतेरस का त्योहार था और उसी दिन हमने पंच सरपंच का मतदान रखा था, तो उसको हम एक दिन पहले ले जाकर के 5 नवंबर को ही जो है पंच सरपंच के लिए मतदान करा देंगे और 6 नवंबर को सुबह जो है जो 10-12 वार्ड पंच होते हैं वो मिलकर के उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव कर लेंगे। ये निर्णय जो है जन भावनाओं को और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
0: इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी आदेशों की पालना 7 अक्टूबर यानी कल तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने एक आदेश में कहा है कि चुनाव की घोषणा के इन भर्तियों में रिक्त पदों पर पदस्थापन के संबंध में भी शिथिलता दी गई है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर 3 अक्टूबर से आगामी आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना अनुमति सार्वजनिक सभा, जुलूस और धरना आयोजित नहीं किया जा सकता।

0: रहेगा। हथियारों के प्रदर्शन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर भी रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार करने तथा सार्वजनिक संपत्तियों पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाने की पर भी रोक रहेगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण है और शिकायत मिलते ही तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जयपुर पुलिस आयुक्तालय के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और अभय कमांड सेंटर का निरीक्षण करते हुए ये बात कही। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस, बैंकों और संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने तथा ठगी की राशि का पता लगाकर उसे सुरक्षित करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
1: ये देखा गया था कि काफी अच्छा काम चल रहा है। 1930 पे जो कॉल्स लैंड कर रहे हैं, जीरो FIRs दर्ज हो रहे हैं, जीरो FIR से फुल FIR में वेरी क्विकली विद इन अ फ्यू आवर्स दर्ज हो रहे हैं। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन विद बैंक्स को जो नोटिसेस जा रहे हैं, प्रोसीजर इज वेल लेड आउट और पूरा प्रोसेस डिजिटाइज्ड है। और जयपुर और अलवर डिस्ट्रिक्ट्स जो हाई साइबर क्राइम डिस्ट्रिक्ट्स में नोटिफाई हैं, तो इसको किस प्रकार से कम किया जाए, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन विद बैंक्स कैसे बढ़ाए जाएं और जुडिशियल प्रोसेस को त्वरित गति से किस प्रकार से लाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और प्रवेशिका की बोर्ड परीक्षा इस शैक्षणिक सत्र से साल में दो बार आयोजित करने का फैसला किया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि पहली मुख्य परीक्षा फरवरी मार्च में होगी, जबकि विद्यार्थियों को अंक सुधारने का अवसर देने के लिए मई में दूसरी परीक्षा आयोजित की जाएगी। नई व्यवस्था में पूरक परीक्षा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी भी अधिकतम 3 विषयों में अंक सुधार के लिए मई में परीक्षा दे सकेंगे। दोनों परीक्षाओं में विषय वार अधिक अंक को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा। वहीं मुख्य परीक्षा में अधिकतम 2 विषयों में 33% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को मई की परीक्षा के परिणाम तक कक्षा 11 में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले त्योहारों के मौसम में मिलावटी और असुरक्षित भोजन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा है। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्तों और क्षेत्रीय निदेशकों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए। प्राधिकरण ने मिलावटी, नकली और असुरक्षित खाद्य उत्पादों जैसे दूध और दूध से बनी चीजें, मिठाइयां और स्नैक्स की बिक्री रोकने के लिए कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही प्रमुख बाजारों में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स गाड़ियां तैनात करने को कहा, ताकि मौके पर ही जांच हो सके और निगरानी मजबूत की जा सके। इधर प्रदेश में स्कूलों में स्वस्थ और सुरक्षित खानपान को लेकर ईट राइट अभियान चलाया जा रहा है। 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत विद्यार्थियों को संतुलित आहार, खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान, साफ सफाई और सुरक्षित भोजन के बारे में जानकारी दी जा रही है। भारतीय थल सेना की एविएशन विंग ने पश्चिमी सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर की ड्रोन रोधी क्षमता का प्रदर्शन किया है। वेलीपोर्ट विंग्स स्क्वाड्रन अभ्यास में AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की गन क्षमता का परीक्षण किया गया। इस दौरान अपाचे की 30mm गन से हवा में उड़ रहे मानव रहित बंशी जेट 40+ ड्रोन को निशाना बनाकर हवा में ही नष्ट किया गया। आधुनिक युद्ध में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए सुरक्षा बलों के लिए ऐसी क्षमता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उद्योग आयुक्त वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने कहा है कि सरकार का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र पर विशेष ध्यान है और आने वाला समय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है। उन्होंने ये बात जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिस्टम लैब के उद्घाटन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
2: और इसमें बेसिकली अब जो अपकमिंग सेक्टर है बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बैटरी स्वैपिंग का, और इस पे जो अपकमिंग सेक्टर अगले 10 से 20 साल होगा उसमें कैसे हमारे

0: गवर्नमेंट कॉलेज के और बाकी बच्चे स्किल ट्रेनिंग्स ले सकें, गैप्स को यूटिलाइज कर सकें, ताकि अच्छी जॉब क्रिएशन प्लस जो इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बेसिकली अब जो भी आएंगी आगे वो इन्हीं सेक्टर्स में आएंगी जितना भी, क्योंकि सरकार का भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर फोकस है। मार्केट में भी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर वगैरह जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो आई थिंक ये लैब ये शायद राजस्थान की पहली लैब होगी जिसका इनॉग्रेशन हो रहा है। और इनफैक्ट अब ये चीजें आगे मुझे लग रहा है करिकुलम में भी हमारा जो पॉलिटेक्निक का है, आईटीआईज का है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का है, उसमें भी इंक्लूड होगा।
1: जोधपुर से माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए अब सीधी रेलगाड़ी उपलब्ध होगी। रेलवे ने साबरमती बीजी जम्मू तवी, साबरमती बीजी एक्सप्रेस का विस्तार कटरा तक कर दिया है। ये ट्रेन 18 अक्टूबर से साबरमती से चलकर जम्मू तवी के बजाय अब कटरा तक जाएगी। इससे जोधपुर सहित मार्ग के अन्य शहरों के यात्रियों को जम्मू तवी में ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी और यात्रा आसान होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम में धनतेरस पर्व को देखते हुए बदलाव किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और प्रवेशिका की परीक्षा इस शैक्षणिक सत्र से साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। FSSAI ने सभी राज्यों में त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। और भारतीय थल सेना की एविएशन विंग ने पश्चिमी सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर की ड्रोन रोधी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

श्री रामचरित मानस के प्रथम दो सोपानों बालकांड तथा अयोध्या कांड की समाप्ति के बाद अब आरंभ होता है तृतीय सोपान अरण्य कांड का संगीतबद्ध रूप। प्रारंभिक श्लोक में दैहिक दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के ताप हरण करने वाले ब्रह्मा के आत्मज श्री रामचंद्र के प्रिय भगवान शंकर की वंदना की गई है। तत्पश्चात श्री राम की स्तुति की गई है जो अपने श्याम वर्णी शरीर पर पीतांबर, हाथों में धनुष बाण और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए जनक नंदिनी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित वन में निवास कर रहे हैं। एक दिन श्री राम ने अपने हाथों से भांति भांति के सुंदर फूल चुनकर मनमोहक गहने बनाए और सीता जी को परम मनोहारी रूप में सजा दिया। इतने में उनके बल का थाह लेने के उद्देश्य से इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण कर सीता जी के कोमल पैरों में चोंच मारकर उड़ गया।

श्रोताओं, सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:20 हुए हैं, समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। तो आइए इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले सुनते हैं हरिओम शरण का गाया ये भक्ति गीत।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की गाई ये भक्ति रचना, माया तुम्हारी राम।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आइए अब सुनते हैं सुमन कल्याणपुर का गाया ये भक्ति गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अनुराधा पौडवाल को गंगा मैया की स्तुति करते हुए।

0: लीजिए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत गॉल ब्लैडर की और किडनी की पथरी का होम्योपैथिक उपचार विषय पर डॉक्टर श्रीराम शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर सर, आज जो हमने विषय लिया है वो है गॉल ब्लैडर की और किडनी की पथरी का होम्योपैथिक उपचार।
2: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, ये हम देखते हैं कि चाहे वो गॉल ब्लैडर की पित्ताशय की स्टोन हो या किडनी का स्टोन हो, ये समस्या आम है।
2: जी, जी।
1: स्त्री पुरुषों सब में है और ये मतलब हम देखते सुनते हैं। तो अब यहाँ ये सवाल आता है कि पहले हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं।
2: जी।
1: हालांकि हमारे श्रोताओं को काफी कुछ इसके बारे में थोड़ा पता होगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि जो गॉल ब्लैडर की पथरी है और जो किडनी की मतलब पथरी है, उसके क्या कारण होते हैं। सबसे पहले हम कारणों की बात करें तो क्या कारण होते हैं इसके।
2: जी, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन दोनों अलग अलग चीज है। किडनी स्टोन तो होता है गुर्दे के अंदर और गॉल ब्लैडर स्टोन होता है पित्त की थैली के अंदर। लीवर के नीचे जो पित्त की थैली स्थित होती है उसके अंदर अगर बाइल जो सीक्रेट होता है अपना और उसमें कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट अगर ज़्यादा मात्रा में हो और वो कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट उस गॉल ब्लैडर की भित्ति पे चिपक जाते हैं और वो एक जो हार्ड पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं उसको तो अपन गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। और गुर्दे के अंदर जो पथरी बनती है उसको अपन किडनी स्टोन कहते हैं और गुर्दे के बीच में जो अगर पथरी बनती है तो उसको अपन ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेफ्रोलिथेसाइसिस कहते हैं। और वही पथरी आगे आके अगर उस नली के अंदर फंस जाती है, नली के अंदर बन जाती है तो उसको यूरियोलिथाइसिस कहते हैं। दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, दोनों में दर्द की प्रकृति अलग अलग होती है। गॉल ब्लैडर स्टोन का फॉर्मेशन अलग होता है, गुर्दे की पथरी का फॉर्मेशन अलग होता है।
1: तो गुर्दे की पथरी के फॉर्मेशन के लिए, जैसे आपने गॉल ब्लैडर के लिए तो बताया कि जो मतलब
2: बाइल सीक्रेट होता है और उससे वो बनती है।
1: तो ऐसे ही उसके गुर्दे की पथरी के क्या कारण हो सकते हैं।
2: हाँ, गुर्दे की पथरी अपने यहाँ इस एरिया में लगभग 80-90% तक लोगों के कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप की स्टोन बनती है। और जनरली चार प्रकार की पथरी होती है गुर्दे की, जिसमें एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट वाली होती है, यूरिक एसिड स्टोन होता है, स्ट्रूवेट स्टोन होता है और सिस्टीन टाइप का स्टोन होता है। तो 60-80% तक लोगों को कैल्शियम ऑक्सलेट वाली स्टोन बनती है और यूरिक एसिड वाले स्टोन 10% तक लोगों को बनती है और सिस्टीन टाइप तक के स्टोन 1-3% लोगों को बनती है और स्ट्रूवेट स्टोन जो है 6-7% लोगों को बनती है।
1: डॉक्टर साहब, सरल भाषा में अगर हम बात करें तो क्या कारण इसके होते हैं गुर्दे के पथरी के, कि मतलब किस तरह का खान पान हुआ, किस तरह की चीजों की अधिकायत हो या किस तरह का हमारा रहन सहन है जो कि इस तरह के किडनी के स्टोन बनने के कारण होते हैं।
2: हाँ, जो अपने सरल भाषा में मैं अगर बात करूँ तो कैल्शियम की जो रिच डाइट लेते हैं, जैसे कि पालक हो गया,

0: भिंडी हो गई, टमाटर हो गया, बीज वाली जो भी चीज़ें, अगर और जिनमें के कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो उसका सेवन अगर अपन ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वो किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कर देती है।
1: तो इस तरह से मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो या आपके कैल्शियम की ज्यादा हो, यूरिक एसिड का भी आपने बताया था,
0: हाँ,
1: यूरिक एसिड की भी बड़ी समस्या रहती है। यूरिक
0: यूरिक,
1: एसिड के कारण कई बार जोड़ों में दर्द की भी समस्या होती है
0: जी बिल्कुल होती है। यूरिक एसिड की वजह से
1: जी, तो
0: जोड़ों
1: ये
0: में
1: यूरिक
0: दर्द,
1: एसिड किस तरह से मतलब इकट्ठा हो जाता है थोड़ा सा बारे
0: यूरिक
1: में?
0: एसिड जनरली जॉइंटों में ये क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, और यूरिक एसिड अपनी किडनी थोड़ा सा उनको, ये एक्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट है तो उसको बाहर निकालती है। लेकिन अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में जॉइंटों के रूप में, जॉइंटों के बीच में जमा हो जाता है तो गाउट का रूप ले लेती है, और उसको अपन जॉइंटों में जो पेन होता है उसको गठिया का रूप कह सकते हैं यूरिक एसिड। और यही अगर किडनी में क्रिस्टल जमा हो जाते हैं उसके, तो उसको अपन यूरिक एसिड स्टोन कह सकते हैं। ये थोड़े हार्ड होते हैं और मुश्किल से निकलते हैं,
1: जी
0: और इसमें जो है कि अपने गुर्दे की पथरी का जो दर्द है वो अपने गुर्दे के पीछे की साइड में स्थित होगा। दर्द के साथ में आपको उल्टी भी हो सकती है, उसके साथ में आपको जी मचलाना, ये इस तरह का हो सकता है। कभी कभी पेशाब में जलन होगी, पेशाब रुक रुक कर आएगा, और
1: जी
0: पेशाब में कई बार ब्लड भी आ सकता है, खून भी आ सकता है, उसको अपन हिमेचूरिया कहते हैं। तो
1: जी
0: ये सारे लक्षण अगर आपको दिखे, पीठ के पीछे दर्द हो, और वो दर्द आगे शिफ्ट भी हो सकता है अपनी नाभि के आसपास, तो
1: जी
0: पीठ के पीछे दर्द होना, नाभि के आसपास दर्द होके फिर उल्टी होना, जी मचलाना, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब की शिकायत होना, थोड़ी मात्रा में पेशाब लगना, और इसके साथ में ये लक्षण हो तो अपने को डाउट कर लेना चाहिए कि भाई ये किडनी स्टोन हो सकता है। और
1: जी
0: फिर इसकी जांच के लिए अपने को ये है कि भाई इसका एक्सरे करवा सकते हैं अपन, भूखे पेट। उसका एक्सरे का नाम होता है KUB एक्सरे, जैसे किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, इनका एक्सरे अपन करवा सकते हैं। सोनोग्राफी से अपन पता लगा सकते हैं, पेशाब की जांच करके अपन पता लगा सकते हैं कि भाई स्टोन है क्या।
1: जी
0: और हमारे होम्योपैथिक में बहुत
1: डॉक्टर साहब,
0: अच्छी,
1: मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको यहाँ। जब हम लक्षणों की बात कर रहे हैं तो कई बार जो है वो पेशेंट को बड़ा तेज दर्द होता है इसकी वजह से, चाहे वो किडनी का स्टोन हो, चाहे वो गुर्दे का स्टोन हो, गुर्दे का हो चाहे वो गाल ब्लेडर का स्टोन हो, तो वो स्टेज आए उससे पहले ही क्या व्यक्ति किस तरह से मतलब प्रिकॉशन ले, क्या जागरूकता वो बरते कि वो जो भयंकर दर्द से पीड़ित हो उससे पहले ही वो अपने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दे, इसका उपचार शुरू कर दे?
0: जनरली तो एसिम्टोमेटिक होता है ये पेन जो होता है वो, कोई सडन होता है इसमें, कोई प्रिकॉशनरी अपन पहले अपन कह नहीं सकते कि भाई ये पेन होगा अपने को। या तो जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री हो स्टोन बनने की, तो अपने को एक जरूर आगाह हो सकता है कि भाई पास्ट हिस्ट्री अपने स्टोन, जिसको बन गया है तो उसको तो वापस पता लगेगा कि भाई वापस उसी सिचुएशन में वहाँ पर दर्द होगा। तो वो प्रिकॉशनर के तौर पे पेलेंटियो फ्लूड लें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर इंटेक करें, और साथ में नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी जैसे बादाम है, करेला है, पाइनएप्पल है, नारियल पानी है, दही छाछ है, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन मात्रा में करें तो गुर्दे के स्टोन, जो छोटी स्टोन्स हैं, वो आराम से पास आउट हो सकती है। 6 से 7 mm तक के स्टोन, 5 से 6 mm तक के स्टोन आराम से पास आउट हो जाती है।
1: जी
0: और बड़े स्टोन्स के लिए भी होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती है, उनसे वो ब्रेक डाउन होके और आराम से निकल जाती हैं।
1: जी कुछ हर चीज को लेकर मिथ तो हमारे यहाँ होते ही हैं, तो इस स्टोन को लेकर भी कुछ मिथ हैं हमारे, या वो मिथ हैं या सच्चाई है ये तो आप बताएंगे। कि
0: हाँ
1: जैसे एक तो ये कहा जाता है कि भाई जब आपके स्टोन की समस्या हो तो बीज वाली चीजें नहीं खाएं, उसमें टमाटर वगैरह ऐसे पालक वगैरह के लिए लोग कहते हैं, और एक और बात कहते हैं कि अगर आपका स्टोन की समस्या है तो आप बियर पियो, बियर पीने से आपका स्टोन रिमूव हो सकता है अगर छोटा स्टोन है तो वो कहा जाता
0: एल्कोहल
1: है?
0: का कंजप्शन वैसे नहीं करना चाहिए, इसमें स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए तो उसमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो के पानी होता है तो ऑक्जेलेट की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो जनरली अपने ये है कि भाई फॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर आपको यूरिन पास आउट ही करना है, अपने को यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है, तो दही छाछ पी के भी बढ़ा सकते हैं, नींबू पानी पी के भी बढ़ा सकते हैं। एल्कोहल का कंजप्शन अपने को नहीं करना है उसमें,
1: जी
0: ये सही नहीं है। इसमें एल्कोहल के अलावा भी आप, जैसे अपने को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, किडनी में सूजन आ जाती है कई बार, और बहुत सारे लक्षण होते हैं इसकी वजह से, स्टोन में एल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए जनरली।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब होम्योपैथी की बात हम करें तो अक्सर हम देखते हैं कि जो एलोपैथी में वो सर्जरी ही इसका इलाज मानते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इस तरह का क्या मतलब उपचार है उपलब्ध कि जो स्टोन है उसको बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के वो बाहर निकल जाए, उसके चाहे वो उसको क्रेक करके, पीसेस करके, चाहे वो घोल के, या चाहे वो छोटा है तो वो पेशाब के थ्रू निकल जाए, किस तरह की मतलब मेडिसिन इसमें होम्योपैथी में क्या उपचार है?

0: उसको अगर छोटा स्टोन है तो उसको पास आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ाने की दवाई दी जाएगी, अगर बड़ा है तो उसको क्रश करके निकालने के लिए दवाई दी जाएगी। और
1: जी
0: गाल बेडर स्टोन के लिए सबसे बड़ा मिथ है कि भाई ये विदाउट सर्जरी कैसे निकलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर्जरी से चलो मान लिया नहीं निकल, उसमें ये है कि भाई डिजोल्व तो हो ही सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की डाइट से ये बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल की डाइट से बनता है तो अपन मेडिसिन देके उसको डिजोल्व कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की डाइट अगर कम खाए, फैटी रिच फूड कम खाए और फैटी डाइट कम ले तो ये स्टोन फॉर्मेशन बनने की भी कैपेसिटी भी कम होगी। और गाल स्टोन जो है जनरली फीमेल्स को ज़्यादा होता है, मेल्स को कम होता है। अपने लीवर
1: जी
0: के नीचे छोटा सा एक पाउच जैसा होता है, उसको गाल बेडर
1: पित्ताशय
0: पित्ताशय होता है, उसमें पित्त स्टोरेज रहता है, 50 ml तक का पित्त उसमें स्टोरेज रहता है और वो अपने डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर वही पित्त जो है हाई कोलेस्ट्रॉल वाला हो और कोलेस्ट्रॉल की मतलब उसका फॉर्मेशन गलत तरीके से हो गया हो, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो वो स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। और
1: जी
0: अपनी होम्योपैथिक दवाई से ये है कि कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करके या उसको डिजोल्व करके हम उसको डिजोल्व कर सकते हैं।
1: जी
0: ये
1: यानी होम्योपैथी में भी जो उपचार है वो हर मरीज के लिए अलग अलग तरह की दवा है, उसके लक्षणों के आधार पर जो चिकित्सक है उसकी देखरेख में ही दवा का इस्तेमाल करना चाहिए,
0: जी
1: अपने स्वयं के मतलब सेल्फ मेडिकेशन नहीं
0: सेल्फ
1: करना चाहिए।
0: मेडिकेशन तो इसमें है ही नहीं,
1: जी
0: क्योंकि होम्योपैथिक इंडिविजुअलाइजेशन पर काम करती है।
1: जी
0: हम लोग जो है बीमारी के बजाय बीमार का इलाज करते हैं, रोग की
1: जी
0: बजाय रोग के लक्षणों पर आधारित ट्रीटमेंट करते हैं।
1: जी जी तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि ये जो स्टोन की समस्या है, पथरी की समस्या है, वो उसको लेकर जो भी आपके दिमाग में सवाल होंगे वो आप उनको यहाँ उत्तर आपको मिले होंगे, और आप एक अच्छी जीवन शैली अपनाते हुए इस पथरी की समस्या से निजात पा सकते हैं, और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में इसकी काफ़ी अच्छी दवाएं हैं, तो वो आप अवश्य उनको ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत गाल ब्लैडर की और किडनी की पथरी का होम्योपैथिक उपचार, इस विषय पर डॉक्टर श्रीराम शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। आइए अब सुनते हैं एक गैर फिल्मी गजल जिसे गाया है हरिहरन ने, और गजल लिखी है ताहिर फराज ने।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए गुलाम अली की गाई ये गज़ल, जिसे लिखा है मोहसिन नकवी ने।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी का ये सुहाना सफर तो यूं ही जारी रहेगा। साथ ही साथ आगाज कर दिया है हमने अपने कार्यक्रम फिल्म संगीत का, और आज का फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त रमा सोनी के साथ। तो स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

प्रियों श्रोताओं, अंदाज फिल्म में आप सुन रहे हैं किशोर कुमार को। इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म दिल तेरा दीवाना का शीर्षक गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने, और गीतकार हैं शैलेंद्र।

श्रोताओं, गाने पुराने ज़माने के कार्यक्रम में आगे आप सुनते हैं फिल्म आपके दीवाने का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने। संगीत राजेश रोशन का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

लीजिए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम में फिल्म मेरे सनम का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत से सजाया ओपी नैयर ने और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं मिलन फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है मुकेश ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गाने नए तराने नए, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हमने किया है फिल्म बजरंगी भाईजान से। इस गीत को गाया है विशाल ददनानी, नकाश अजीज और प्रीतम ने। गीत लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

ले बेटा सेल्फी ले ले रे, ये है, ये था गाना फिल्म बजरंगी भाईजान से। आइए अब सुनते हैं फन्ने खान फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार ने। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है अनिल त्रिवेदी ने।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आगे सुनते हैं फिल्म गब्बर इज बैक का ये गाना, जिसे गाया है अरिजीत सिंह, पलक मुच्छाल और चिरांतन भट्ट ने।

श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम में आगे सुनिए फिल्म गोरी तेरे प्यार में का ये गाना, जिसे गाया है मिक्का सिंह, ममता शर्मा और श्रुति पाठक ने। गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने और गीत लिखा है अन्विता दत्त ने।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए आप श्रेया घोषाल को आशिकी 2 फिल्म में। इस गीत को संगीत दिया है मिथुन ने और गीत लिखा है संदीप नाथ ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने नए, आकाशवाणी नागौर से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति, फिल्म ए दिल है मुश्किल से। इसे गाया है प्रीतम और अरिजीत सिंह ने। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने नए, FM 103.7 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं श्रोताओं, आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं अली सरदार के इस साथ आवाज जगजीत सिंह की।

पामेला जैन की आवाज में अभी आपने मदन मोहन महेश्वरी की ये रचना सुनी, संगीत दिया था कुमार मंजुल ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खेची धाम के गेट के नीचे खुल गया, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा, अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचिए अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
0: सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए एक पारंपरिक रचना, स्वर अली गनी का और संगीत भी अली गनी का ही है।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: ये आवाज थी जुबिन नौटियाल की। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और आप सुन रहे थे गालिब का कलाम। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे मधुशी का गाया ये पारंपरिक गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्री, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की

सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों आज विनोद खन्ना जाने माने अभिनेता, जी हाँ जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना का जन्मदिन है। हम सभी जानते हैं कि उनकी पर्दे पर एक शख्सियत अलग पहचान रखने वाली थी, है ना। उनकी आवाज, उनका व्यक्तित्व और अभिनय में एक खास ठहराव था और हर किरदार को वो यादगार बना देते थे। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उन्हीं को याद किया है उनकी फिल्मों के जरिए। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग। गीतकार फारूक केसर, संगीतकार बप्पी लाहिड़ी।

कार्यक्रम में आप सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाजी मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए सुनते हैं लक्ष्मण प्यारेलाल का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल, आवाज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और इंद्र सिंह की, फिल्म का नाम परवरिश।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम तुम और वो, जी हाँ, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे। स्वर आशा भोसले और विनोद वर्मा मलिक के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

0: बनकर
1: आज देख ले मेरा बनकर तुझे सिखा दूं प्यार।

0: बोले भरे भरे
1: हरे हरे
0: तू काहे डरे डरे
1: हरे हरे
0: आज थाले तुझा
1: राधे श्याम।
2: और आइए अब सुनते हैं साहिर के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन, आशा भोंसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजें। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गरम खून। इसे संगीत में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अनजान का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध की आवाज सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम खून पसीना।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिता चंदन रॉय के साथ।

0: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। गीतकार गुलशन बावरा हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में सुनिए। फिल्म का नाम है हेरा फेरी। इसे इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई।

0: साथ
1: बिल्कुल
0: और पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये देश।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज याद किया मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को, और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को भारी जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। फ्लीट सपोर्ट

0: भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों में से पहला है। स्टील कटिंग शुरू होने के 18 महीने बाद 43,500 टन वजनी ये जहाज बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। ये फ्लीट सपोर्ट शिप समुद्र में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को ईंधन, पानी और अन्य आवश्यक आपूर्ति प्रदान करेंगे, जिससे वे अधिक समय तक तैनात रह सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत कर रहे हैं। सिरसी रोड स्थित एक निजी कॉलेज में उन्होंने प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों से 900 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समारोह में सांसद राव राजेंद्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पंचायती राज संस्थाओं के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि धनतेरस पर्व को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। धार्मिक आस्था और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान की तारीख एक दिन पहले कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 22 और 28 अक्टूबर तथा 3 नवम्बर को होगा। पंच सरपंच के लिए 24 और 30 अक्टूबर तथा 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उप सरपंच का चुनाव 25 और 31 अक्टूबर तथा 6 नवंबर को होगा। श्री सिंह ने बताया कि शेष घोषित चुनाव कार्यक्रम यथावत रहेगा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी आदेशों की पालना 7 अक्टूबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने एक आदेश में कहा है कि चुनाव की घोषणा के साथ संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रक्रियाधीन भर्तियों में रिक्त पदों पर पदस्थापन के संबंध में भी शिथिलता दी गई है। राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श दिए जा चुके हैं। इसके जरिए लोगों को अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे बिना अपने आसपास से ही डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा मिल रही है। प्रदेश में आज मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसलमेर में एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षणार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने और चिंता तथा भय से दूर रहने का संदेश दिया गया। सवाईमाधोपुर में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्ति, नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। मनोचिकित्सक डॉक्टर गौरव चंद्रवंशी ने तनाव के कारणों और बचाव के उपायों की जानकारी दी। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और मृत्यु दर घटाने के लिए हर जिले की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग कार्य योजना लागू की जा रही है। परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने ये जानकारी सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने ब्लैक स्पॉट पर प्रभावी कार्रवाई करने, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और वाहन चालकों को नियमित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यार्थी और संबंधित विद्यालय 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। राजकीय संस्कृत निजी विद्यालयों, मदरसा बोर्ड के स्कूलों तथा मूक बधिर और दृष्टि बाधित स्कूलों के नियमित विद्यार्थियों के आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से भरे जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन।

0: ऑप्शन देखो।
1: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
7: श्रोताओं, आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था द ग्रेट गैम्बलर। हमारे श्रोता अपनी अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी टिप्पणियों के तरह से। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं मगर अपने पीछे भावनाओं की ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो वर्षों तक मन में ताजा रहती हैं। पहली मुलाकात की झिझक, आंखों में छिपी अनकही बातें, दिल की बढ़ती धड़कन और किसी अपने के साथ बिताए कुछ पल, इनमें एक पूरा संसार समाया होता है। कभी कोई मुलाकात प्यार की शुरुआत बन जाती है तो कभी किसी बिछड़े हुए शख्स से आखिरी मुलाकात जीवन भर की स्मृति। मुलाकातें जिंदगी की किताब के वे पन्ने हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात और बिछड़ना, फिर उसी मुलाकातों की याद में खो जाना, अगली मुलाकात तक प्रेमियों की तड़प आज के गीतों में है। एक श्रोता ने लिखा है कि पहली मुलाकात, प्यार की मुलाकात, यादगार मुलाकात और बिछड़ने के डर तक, ये सभी बातें इस मुलाकात में शामिल हैं। कुछ मुलाकातें पल भर की होती हैं लेकिन उनकी यादें उम्र भर दिल में रहती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी जिंदगी में अचानक कोई मिलता है और हमें पता भी नहीं चलता, वो मुलाकात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली है। पहली मुलाकात भी कितनी अजीब होती है ना, न कोई वादा न कोई रिश्ता, बस दो अजनबी होते हैं लेकिन जाने न जाने क्यों एक शख्स दिल को अपना सा लगता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुलाकात यानी दिलों का काव्यात्मक सफर, ये केवल सवाल जवाबों का सिलसिला नहीं बल्कि दो दिलों के

बुना हुआ एक नाजुक रेशमी पुल है। एक उत्सुक मन दूसरे समृद्ध मन की गहराइयों में झांकने का प्रयास करता है, तब शब्द और अर्थों के पर्दे एक एक करके आसानी से खुल जाते हैं और कोई नहीं कह पाता कि आज की मुलाकात बस इतनी। वाह क्या बात है, बहुत ही काव्यात्मक तरीके से आपने अपनी बात कही है और आगे आपने कल के कार्यक्रमों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने कहा है कि रिश्तों की गहराई समय की मोहताज नहीं होती बल्कि भावनाओं की सच्चाई पर टिकी होती है। अक्सर सफर के दौरान किसी बस ट्रेन या हवाई जहाज में पहली मुलाकात किसी ऐसी व्यक्ति से हो जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते। वो कुछ घंटों का सफर होता है मगर बातें करते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं और स्टेशन आते ही अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। शायद हम दोबारा कभी उनका चेहरा भी न देख पाए, न ही उनका नाम याद रख पाए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के दौरान मिली मुस्कान, उनकी कही कोई गहरी बात या उनका वो निस्वार्थ व्यवहार हमारे भीतर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। बहुत सुंदर। अगला गीत सुनने से पहले आपके लिए हम लाए हैं दो सवाल, बहुत प्यारे से और सीधे साधे से। आप अपनी जिंदगी को, अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को जब खंगालेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। हमारा पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आज तक आप नहीं भूले। सवाल एक बार फिर से कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज तक नहीं भूले। कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गहरी बात। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है। सवाल एक बार फिर कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है। खंगालिए अपनी यादों को, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपनी स्मृति को और याद कीजिए वो दिन जब आपको कोई ऐसा शख्स मिला, वो कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, है ना, कोई भी, या आपने किसी जगह पे जाकर प्रकृति से मुलाकात की हो, आपको लगा हो कि वाह क्या क्या सुंदर नजारा है। मुलाकात कहीं भी किसी से भी किसी भी रूप में हो सकती है। ये आप सोचिए कि आपकी वो पहली मुलाकात कौन सी थी जिसे पाकर आप धन्य हो गए या आपको आज तक याद है उनके कड़वे अनुभव। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन।

जी हाँ, तो पहली मुलाकात इतनी ही रोमांचक होती है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, उसका ही जिक्र आपको करना है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कितनी लंबी जुदाई, एक मुलाकात के लिए तरस रहे थे नैना, लेकिन जितनी लंबी जुदाई थी उतनी ही प्यार से सराबोर थी वो मुलाकात। अरे आपने इशारों इशारों में बात लिखी है, लिखते कुछ तो हमें पता चलता कि कौन सी थी वो मुलाकात। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गीतों को चुना गया है, मुलाकात जैसे शब्द को परिभाषित करने के लिए। वैसे तो मुलाकात कब, किससे और कहां, जीवन के किस मोड़ पर हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, परंतु कुछ मुलाकातें जीवन भर याद आती हैं। हाँ तो बताइए ना, कौन सी ऐसी मुलाकात थी आपसे जो जीवन भर से आपको याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें भी कितनी अजीब होती है, वैमनस्यता के सारे जख्म एक पल में सी देती है, न कोई शिकायत बचती है न कोई गिला, बस निगाहें झुकती हैं और दिल सब कह देता है। मुलाकातें भले ही चंद लम्हों के ऊपर, उनकी खुशबू उम्र भर यादों के गुलदस्ते में महकती रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें ही मोहब्बत की मंजिल मुकम्मल करती हैं, ये वो मंजर है जहां मिलकर महबूब और महबूबा एक दूसरे के मुखातिब होकर मानसिक मनोमालिन्य दूर कर मिलन के मधुर मर्म का संज्ञान लेते हैं। आपसी मतभेद और मनमुटाव दूर करने में मुलाकातें ही महत्वपूर्ण माध्यम है, वरना मोहब्बत के मारों को इस मोहब्बत में मृत तृष्णा भांति अतृप्तता ही महसूस होती है। और आगे आपने हमारी तारीफ में भी लिखा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सफर तो क्या, विविध भारती ने जिंदगी ही सुरीली कर दी है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने 36 साल पहले का वो दिन याद करा दिया, जब मैं अपने पहले और आखिरी प्यार से पहली बार मिली थी, यानी मेरे पति देव मुझसे मिलने आए थे, साथ में उनकी दीदी भी थी और हम पूरा दिन साथ साथ रहे, शॉपिंग की और फिर 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। ये मुलाकात एक बहाना है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला गाना यही आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुलाकात याद नहीं बनती, मगर कुछ मुलाकातें दिल में ऐसी उतर जाती हैं कि वक्त बीत जाता है पर उनकी याद कभी नहीं जाती। वहीं एक श्रोता का कहना है कि क्या जिस दिन हम विविध भारती से मिले उसे भी प्यारी मुलाकात कहा जा सकता है, पर हमें उस मुलाकात की न तो

तारीख याद है? नहीं दिन, बस इतना याद है जब पापा विविध भारती चलाते थे तब हम बहुत छोटे थे, हमें लगता था इसके अंदर कैसे रहते हैं लोग, कहाँ से आवाज आ रही है। बाद में धीरे धीरे समझ आया कि हम दीवाने हो गए इस विविध भारती के। क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही हाल हर बच्चे का होता है जब वो पहली बार रेडियो सुनता था कि भाई इसके भीतर कौन है, कहाँ बैठते हैं लोग। ये हर बच्चे के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ। वही एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की सालगिरह पर लाइव, अच्छा आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपकी बातों की तरह ही आप चुलबुली और प्यारी दिखती हो। क्या बात है, बहुत सुंदर, शुक्रिया, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि ये भी एक तरह से आपसे मुलाकात ही हो गई, रूबरू न सही पर हुई तो। हाँ बिल्कुल होती है आपकी और हमारी मुलाकात तो। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबादत मुलाकात पर आधारित है और आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। जी हाँ, देखिए हो भी गई। एक श्रोता ने कहा है कि बस कुछ टाइम से ही मैं कमेंट करने लगी हूँ और मैंने इस कार्यक्रम में अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, आपकी आवाज भी अच्छी लगती है। चलिए आपने शुरू कर दी है तो इस शुरुआत को अंत तक रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है, जब आप किसी से दिल से मिलना चाहते हैं और वो मुलाकात नहीं हो पाती तो यह अधूरी चाहत आत्मा को बहुत गहरी बेचैनी और तकलीफ दे जाती है। इसे ही शायद लोग इंतजार का दर्द या अधूरी मुलाकात की कसर कहते हैं। जब मन भावनाएं गहरी हो तो ये दूरी और भी ज्यादा भारी महसूस होती है और ये सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात नहीं होती, ये किसी से भी हो सकती है, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार। तो समय रहते मुलाकात करके गिले शिकवे दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अफसोस ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सुनते हैं ये गीत खानदान फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श लायलपुरी की रचना और खय्याम साहब की धुन। आप भी अपनी जिंदगी की वो मुलाकात बताइए जिसे आपको लगा ये मुलाकात तो बहाना था, असल में तो हमें मिलना था।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखी है, लेकिन इससे पहले हम सवाल दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज भी भूले नहीं। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए बहुत खास है। तो हमारी श्रोता लिखती है कि चेहरे की रौनक छीनने वाले से कभी मुलाकात न हो तो बेहतर है, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम किसी से मिलते हैं और सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करता, आपको ठेस पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो ऐसी मुलाकात कोई भी नहीं करना चाहता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी अनजाने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ यादों में बस जाती है और कुछ भूल जाते हैं। कभी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होती है तो ये दिल में बस जाती है और मिलने की चाहत बढ़ जाती है और हम सफर भी बन जाती है। आज उनसे पहली मुलाकात, ये जो गाने हैं इन्हें पसंद हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कोई मुलाकात कितनी अजीब होती है, न कोई तैयारी न कोई उम्मीद, न ये आभास की सामने आया ये अजनबी कभी इतना अपना हो जाएगा, बस कुछ पल में कुछ अनकही बातें आंखों के बीच ठहर गया, एक अनजान सा संवाद, कुछ रिश्तों की नियति साफ चलना नहीं, याद बनकर उम्र भर साथ रहना होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में बड़ी देर से मिलते हैं मगर उनसे मुलाकात दिल में ठहर जाती है, उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में उनकी जगह हमेशा से खाली थी। जिंदगी में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती न मुलाकातें, कभी कभी किसी विशेष से मुलाकात उस ईश्वर की मौन कृपा तरह है जो ये एहसास दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप किसी के लिए पूरी दुनिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, आपकी अंतिम पंक्ति ने दिल जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंदीदा प्रस्तुतकर्ता हैं आप। अच्छा, आज मैंने पहली बार कमेंट किया है, प्लीज आप पढ़िए, प्रोग्राम में रोज सुनती हूँ। देखिए हमने कर दिया, आपने कुछ लिखा नहीं, आप लिखती तो हम उसे भी पढ़ देते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा जॉब लग गया। दोनों घरों के बड़ों के द्वारा हमें पसंद करने के बाद मेरी होने वाली धर्म पत्नी और मुझे अजमेर के रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात कराई गई। वो जो नजरें झुकाए बैठी थी और मैंने मन में माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए मन में ठान लिया था कि बस यही है मेरे सपनों की रानी, बाद में अकेले में खूब बातें भी करी थी। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिख दें कि स्कूली जीवन में ट्यूशन पढ़ने के दौरान मेरी गलतियों पर मास्टर जी के डांटने पर उसकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, फिर नजरें झुका लेना, उफ पहली मुलाकात ऐसे ही मुस्कुराने पर कई महीनों तक चली, कुछ हुआ तो नहीं मगर वो मुस्कान बनी मुलाकात अभी भी दिल को कोरेद देती है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं जनाब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। अरे तो लिखते हैं, अगर आपको पहली एक तरफा प्यार हुआ था तो बताते कैसे हुआ क्या हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार नहीं होता, विश्वास होता है, बाद में प्यार होता है। ये अपने अपने अनुभव होते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सफर की हर मुलाकात यादगार बन जाती है और आपका साथ भी बहुत अच्छा लगता है, सुंदर गीत के साथ छोटी सी मुलाकात प्यार बन जाती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हमारी मुलाकात सुरीला सफर से हो जाती है तब किसी अन्य की मुलाकात की जरूरत होती ही नहीं है। जब आप किसी कमेंट्स को पढ़ने के बाद कहती हैं कि वाह क्या बात है क्या बात है, बस मजा आ जाता है, बस आपका ही सिलसिला बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। अरे आप लोग इतनी शानदार समीक्षाएं भेजते हैं, टिप्पणियां भेजते हैं, तो वो निकल जाता है मुंह से कि वह क्या बात है, दाद देनी पड़ती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी, याद है मुझे आज तक। अरे बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकात जीवन में ऐसी होती हैं जो भूल कर भी याद रहती हैं, कभी कभी

पहलों में वो मुलाकात यूं ही याद आ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें वक्त के दायरे से परे होती हैं, वो घड़ियों के सेकंड या मिनटों में नहीं बल्कि उस शिद्दत से नापी जाती हैं जिसे दो रूहें एक दूसरे को छू लेती हैं। वक्त का पहिया भले ही आगे निकल जाए पर दिल के किसी कोने में वो एक पल हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उन्हीं पलों की खामोशी में एक ऐसी आवाज होती है जो भीड़ में भी तन्हाई का एहसास नहीं होने देती और जिंदगी के लंबे सफर को एक मीठी महक से भर देती है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत गहरी बात आप लोगों ने लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी मुलाकात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, बहुत पुरानी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहब्बत जिंदगी है। सुना है इस फिल्म का नाम आपने, बताइएगा अगर सुना है तो। और इस फिल्म में कौन कौन थी ये भी बताइएगा। SH बिहारी के बोल हैं और OP नैयर की धुन।

तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही सुंदर विचार लिख रहे हैं कि क्या लिखा है, हाँ लिखा है कि नमस्कार, मुलाकात अजनबी से हो, पहचान वाले से, छोटी हो या बड़ी, समाज में चलता रहता है कुछ मुलाकातें तो सीने में याद बन जाती है, किसी से मुलाकात में डर भी लगता है और कोई मुलाकात प्यार में बदल जाती है और कई मुलाकातों से आपसी गलतफहमियां भी दूर होती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात फेस टू फेस नहीं बल्कि ऑनलाइन एक दोस्त से हुई और पहली बार ही एक विशेष प्लेटफॉर्म पर पता चला, पता नहीं क्यों उनके नाम के आगे रुकी और कुछ दिनों पश्चात ही उनका मैसेज आया और हमारी बात हुई। ऐसा लगा जाने कब से एक दूसरे को जानते हो पर आज तक कभी मिले नहीं हम, एक रिश्ता रूहानी था जहां देखने की कभी चाहत ही नहीं हुई। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात लिख दी आपने और आपके इस बेबाकी को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी बात, अपना दिल हमारे सामने रखा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो कहूंगी कि आदमी किसी से भी मिले तो कभी नहीं बिछड़े, मैं दो शख्स को हर दिन तलाशती हूं। पहली मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, नाम था उषा शाह, इन दिनों नहीं मिल रही हैं और मैं वो असम में थी और मैं भागलपुर में, दूसरे में जब मैं दिल्ली में थी तो वो मिली, सिर्फ ये पता कि वो उत्तर प्रदेश में थी। उनके लिए भी मेरे मन में बहुत बेचैनी होती है। आपने अपनी बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार नहीं लिखा इसलिए हमें पढ़ने में दिक्कत आई है। कुल मिलाकर ये पता चला कि आपकी दोस्त आपसे बिछड़ गई है जिसको आप ढूंढ रही हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी 3 अक्टूबर को इलारून जी से आपकी मुलाकात हुई, इससे पहले इलारून जी ने इस मुलाकात में मोरनी बागा नाचे पर सभी महिला उद्घोषकों को नृत्य करवा दिया जिसमें आपका नृत्य भी देखने लायक था। ये मुलाकात आपके लिए यादगार बन गई होगी। ऐसे ही कई मुलाकातें हैं मेरे साथ भी हुई। उन दिनों मेरी पोस्टिंग संसदीय ग्रंथालय में थी, वहीं पर लोकसभा टेलीविजन के स्टूडियो में भी थे जो अब भी है। चमड़े से बनी सफेद चप्पल पहने, सफेद पतली कटारीदार मूछें, सिर पर सारे सफेद बाल, सफेद रंग का ही कुर्ता पजामा पहने एक लंबी कदकाठी के व्यक्ति चले आ रहे थे। उनसे एक मुलाकात नाम से इंटरव्यू होना था। इस पूरे इंटरव्यू को मैंने स्टूडियो में बैठकर देखा। इंटरव्यू के बाद मैंने उनके पैर छुए और जलपान के बाद उन्हें छोड़ने गेट तक आए वो सफेद कुर्ता पजामा पहने शख्स थे, गीतकार गुलजार साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज मुलाकात पर सुरीला सफर चलेगा ये वाक्य याद आ गया। देखिए आपने अपने दिल को खंगाला ना, गाने तो आपने सारे गद्यांश में लिख ही दिए थे, इन मुलाकातों के बीच एक भूल के जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है पोस्ट कर रहा हूं। अच्छा आपने दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई। बहुत सारे कहते हैं मुलाकातों पर, है ना। और वहीं एक शख्स लिखते हैं कि अपने शहर में घूमते समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से अचानक मुलाकात हुई और पहली बार ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हुआ, पर पतिदेव ने कहा कि ये वही है जो हम सोच रहे हैं। फिर हमने उनके पास जाकर हाय हेलो किया और ये मुलाकात यादगार बन गई। बहुत सुंदर, आपने हमारे सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज जाते समय अक्सर मिल जाते थे, कॉलेज जाना क्या छूटा, मुलाकात होना ही बंद हो गया। अरे क्या बात है, ऐसी बात, चलिए क्या कहूं मैं आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ देर से पहुंचे हैं आपके कार्यक्रम में लेकिन आखिर मुलाकात हो ही गई है, विविध भारती से इतना प्यार जो है, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर से 12 किलोमीटर दूर गांव जामनिया खुर्द से कन्हैयालाल और कई लोग मिलकर आपकी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो ऐसा ही हम चाहते हैं। बहुत सुंदर, आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि जवाबी संदेश दिया आपने, यानी हमारे सवाल का जवाब दिया है कि टीचर की पोस्ट देनी थी, मुलाकात कहनी थी, कम शब्दों में दिल जीतने वाली बात, अनपेक्षित सवालों का आघात बन गई थी बुरी हालात, फिर भी न जाने कैसे मिल गई थी नौकरी की सौगात। बहुत सुंदर। और एक श्रोता कहते हैं कि उस जमाने में तो सब कुछ अरेंज करके ही किया जाता था इसलिए पहली मुलाकात भी प्री प्लान्ड ही थी, फिर दूसरी मुलाकात के बाद तो शादी हो गई पर उसके बाद की मुलाकात जो ही उसने अरेंज मैरिज वाले भाव को ही बदल दिया और रिश्ता जान पहचान से बढ़कर पक्का हो गया और उस मुलाकात के दम पर हमारे प्यारे रिश्तों की नींव पड़ी है और ये मुलाकात हमेशा के लिए यादगार बन गई है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कि जब आप पहली बार मिली होंगी और उसके बाद जब आपका ब्याह उसी शख्स से हो गया तो अब जिंदगी तो बस क्या बन गई, बहुत शानदार है ना। आइए सुनते हैं फिल्म पालकी का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद साहब की धुन। कभी ख्वाबों में आपकी भी मुलाकात किसी से होती है, बताइएगा।

तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। आपकी भी कभी ऐसी कोई मुलाकात हुई हो ख्वाबों में, सपनों में और अचानक, है ना? तो बताइएगा कम शब्दों में, बहुत कम समय हमारे पास है और श्रोता बराबर जवाब दे रहे हैं हमारे सवालों का। एक श्रोता लिखते हैं कि फेसबुक विविध भारती से जुड़कर बहुत सारी ऐसी सहेलियां मिल गई, पता नहीं इनसे मुलाकात कब होगी, पर ऐसा लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। हम फोन पर हमेशा दिल खोल कर बात करते हैं, तब नहीं लगता कि मुलाकात कोई जरूरी है। क्या बात है, आप फेसबुक से जुड़ गई हैं और एक परिवार बना लिया है आप सभी लोगों ने, तो जाहिर है सभी सखियां आपस में बात करती हैं, है ना? क्या बात करती हैं आप लोग बताइए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अभी पिछले महीने यूनुस खान जी इंदौर आए हुए थे और मैं पास में ही रहता हूं, पर यूनुस खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ा अफसोस हुआ। अरे कोई बात नहीं, वो जब दोबारा आएंगे तो पता करिएगा कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और आपको कहां मिलना है। कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी उनसे और आपका ये संदेश हम पहुंचा भी देंगे उन तक। वही एक श्रोता लिखते हैं कि धर्मेंद्र जी, और जो आपने पूछा था मोहब्बत जिंदगी है, ये फिल्म एक श्रोता ने देखी है और कहते हैं कि इसमें धर्मेंद्र और राजश्री थे। अच्छा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, वो मुझे देखने आए और बस बात गई, बन गई और शादी हो गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़की वालों ने मुझे देखने के लिए घर बुलवाया, लड़की के बड़े भाई ने कई प्रश्न किए, सभी के सही जवाब दिए। बाहर छोड़ने आए तब बड़े भाई ने कहा और कोई सेवा, तो मैंने जवाब दिया कि मेहरबानी बनाए रखें, तो बड़े भाई ने कह दिया कि अभी तो आगे सोच कर करेंगे। हम दोनों कंफ्यूज थे, शर्म भी आ रही थी, आगे चलकर एक मुलाकात रिश्ते में बदल गई है और जल्दी ही शादी भी हो गई है। क्या बात है, बधाई हो। एक श्रोता लिखते हैं कि यादगार मुलाकात तो हमारे शहर अजमेर में एक कार्यक्रम में महान संगीतकार आदरणीय आनंद जी आए हुए थे। क्या बात है, कल्याण जी, आनंद जी वाले आनंद जी। कार्यक्रम के बाद मैं उनसे मिला और मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, अरे आप सिंधी हैं? अरे भाई मैं भी सिंधी हूँ, कच्छ का रहने वाला हूँ, और वो मुझसे सिंधी में ही बात करने लगे, जैसे मुझे बरसों से जानते हो। ऐसे उनका मेरे लिए अपनत्व से बात करना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बिल्कुल, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी मुलाकात आनंद जी से हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिमला में एक पंजाबी फैमिली से मुलाकात हुई 2016 में, वो अच्छा बीकानेर से थे, उनके कई साल तक बात होती रही लेकिन एक दिन पता चला कि वो शांत हो गई और वो मुलाकात यादगार बन गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती मुझे बहुत पसंद है और 10 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ से जुड़ने की, कॉल करने की, लेकिन फोन नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो आप फोन करते रहिए, ऐसी क्या बात है। बहुत सारे लोग पता है बरसों बरसों से फोन लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे पतिदेव से जब पहली मुलाकात हुई तो वो बताते हैं, पर एक वादा करिए, हंसेंगी नहीं आप। अच्छा, नहीं हंसेंगे पर हमें आप लोगों के संदेश पढ़कर हंसी आ जाती है क्योंकि उसमें प्यार और अपनत्व और मिठास छुपी होती है, तो मैं हंसे बिना नहीं रह पाती। चलिए नहीं हंसूंगी, पढ़ तो दूं। आपने लिखा है कि कोई न आपके साथ सभी श्रोता भी हंसेंगे। अरे श्रोताओं मत हंसिएगा, है ना। वो लिखती है कि हम उनसे मिले जब हमने उन्हें वरमाला डाली, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें देखा ही नहीं था, इतने हम डरे हुए थे, नहीं बात की थी कभी, आज सोचते हैं तो हंसी आ जाती है। और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कैसा था पहले, हम तो ऐसा कभी नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आप खुद ही हंस पड़ी हैं और आप हमें हंसने के लिए मना कर रही हैं। बिल्कुल वो समय ऐसा था जब शादी होती थी माता पिता की बातों से, माता पिता की सहमति से, और लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, लेकिन वो डर, वो वो होता था दोनों तरफ, लेकिन लड़कियों में खास तौर से ज्यादा होता था। लेकिन आपके बच्चों ने सही कहा कि आज समय बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, मुलाकात करने के तरीके बदल गए हैं और बहुत जिंदगी का फलसफा भी बदल गया है। तो मुलाकात करते हुए हम यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ही फिल्म है लेडीज टेलर। इसके बारे में भी बताइएगा, आपने इस फिल्म को देखा था या इस फिल्म के गाने आपको पसंद है, कौन कौन से

0: जी हाँ, दो चाहने वालों की मुलाकात कैसी होती है, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अभी दिल खोलकर आपने लिखा नहीं है। चलिए फिर कभी किसी कार्यक्रम में दिल खोलिएगा और बताइएगा कि कभी किसी की मुलाकात क्या रंग लाई आपके जीवन में, चाहे वो मुलाकात सामने हुई हो, ख्वाबों में हुई हो, कहीं भी हुई हो, है ना। अब अगले किसी कार्यक्रम में आप दिल खोलकर अपनी बात रखेंगे। वैसे एक श्रोता लिखते हैं कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कई गाने जैसे आप ही गा रही हैं। अच्छा, मुलाकात तो हमारी अपने होने वाली धर्मपत्नी से हुई थी, वो बहुत शानदार थी, जो हमें हमेशा याद रखती है, रहती है, बहुत सुंदर, रहनी भी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हम एक बार बैंकॉक से पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, नागपुर के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, उसी समय मुझे पुराने महाभारत के श्रीकृष्ण यानी कि नितेश भारद्वाज अपने सामने बैठे दिखे। मैंने अपने पति के कान में धीरे से कहा और बाद में हम दोनों ने उनसे मिलकर फोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर, वो पल आपको बहुत याद होगा, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती से तो मुलाकात सबसे जब से होश संभाला है तब से हो गई थी, आज भी हो रही है, बिल्कुल होती रहनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर सपनों में मुलाकात की बात आप करते हैं तो हमें सपने तो बहुत आते हैं और कई दिन तक कई नए नए चेहरों से मुलाकात तो होती है, लेकिन सुबह उठकर फिर भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रहता, लेकिन नए नए चेहरे सपने में अगर आते ही रहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि युवाओं को बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं, तो ये बात सच है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबादत पर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, वैसे तो प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को हम विविध भारती के पेज पर देखते हैं, लेकिन एक तमन्ना है कि आप सभी से रूबरू मिलने की उम्मीद है और मेरी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी। क्या बात है। तो चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक अब आ गए हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म का नाम चरस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
0: हमें गुड नाइट नहीं कहना है अभी, तो हम रात को कहेंगे, अभी तो

तो दोस्तों, इस कार्यक्रम से अब हम भी जुदा होते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए कार्यक्रम में और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है पत्थर पर। सड़क किनारे पड़ा एक साधारण सा पत्थर शायद हमें बहुत सामान्य सा दिखाई देता है। हम उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही पत्थर जब किसी शिल्पकार के हाथों में पहुंचता है तो लगातार चोट और तराश के बाद एक सुंदर मूर्ति या बेशकीमती कलाकृति का रूप ले सकता है। यही पत्थर हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है कि मुश्किलें हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि कई बार वो हमें तराशने आती हैं। पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी दृढ़ता। वो धूप, बारिश और मौसम की मार सहता है,

एक पत्थर का महत्व उसकी मजबूती में छिपा होता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। रास्ते में आने वाली असफलताएं, आलोचनाएं, परेशानियां और संघर्ष हमें भारी लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं अनुभवों से हमारा व्यक्तित्व मजबूत होता है। जैसे पत्थर को तराशने के लिए छेनी की चोट जरूरी होती है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिस्थितियां हमें धैर्य, आत्मविश्वास और दुनियादारी की समझ सिखाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, लेकिन शायद हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई किसी नई क्षमता को सामने लाने का अवसर होती हो।

जिस पत्थर ने चोट सहना सीखा वही मूर्ति बनकर सम्मान पाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कठिन परिस्थिति को चुपचाप सहते रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आवश्यकता पड़ने पर सही लोगों से मदद लें, अपने गलतियों को स्वीकार करना सीखें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। सड़क पर पड़ा पत्थर किसी के लिए बेकार हो सकता है, लेकिन किसी कलाकार के लिए वही पत्थर अनमोल हो सकता है। इंसान की क्षमता भी ऐसी ही होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। चोटों से घबराना मत, हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती, कुछ चोटें तुम्हें तराशती हैं और वही तुम्हें एक दिन खास बना देती हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और

0: न स्लिप वे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मधुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मधुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु बेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है।
4: स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें

0: जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
1: अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
4: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
5: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
2: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
6: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के

0: जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
0: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे, उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हूतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हूतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: यह अवस्थी आशा भोंसले की और फिल्म का नाम था चौथवी का चांद।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में अभी आपने अनजान का लिखा ये दो गाना सुना। स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था जाली नोट।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काला बाजार का गीत, शब्दकार शैलेंद्र और संगीत OSD बर्मन का।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सदाबहार नगमे का अगला गीत सी रामचंद्र का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल। फिल्म का नाम है सरहद और आवाजें आशा भोंसले और सी रामचंद्र यानी चितलकर की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। पंडित भरत व्यास की बोल, एसएन त्रिपाठी की धुन, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजें। फिल्म का नाम है लाल किला।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी।

0: ठीक है, तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखी

0: को, सखियों सखियों को और आरती आपको भी नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार।
1: चंचल आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: तो भाई आज बहुत विषय हैं जिन पर हमारे जो फेसबुक से जुड़े श्रोता हैं उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन फिर भी हम विषय बताते हैं कि किन विषयों
1: जिससे
0: पर चर्चा
1: कि जिससे कि हम हमारे जो श्रोता उनको एक बार हम अपने मुंह से बता सके।
0: भाई हर श्रोता नहीं जो फेसबुक पर जुड़ा हुआ है, कई लोग सिर्फ रेडियो सुनने के लिए अपने आनंद के लिए भी सुनते हैं।
1: हाँ ये तो है।
0: तो भले वो हमें संदेश ना करें लेकिन उनके लिए भी क्या विषय है ये जानना जरूरी है। तो आज है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस, इसके बारे में बात होगी।
1: और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं संगीता देवी जी जो कि हैं संस्थापक दिया माटी की, और साथ ही हम लेकर आए हैं मुहावरों की दुनिया।
0: तो कौन सा मुहावरा है भाई, आज किस मुहावरे पर हम बातचीत करेंगे?
1: आज हम मुहावरे पर बात करने वाले हैं कि अक्सर जो हम लोग करते हैं ना काम, कि अब भाई हम करेंगे करेंगे करके ओखली में सर दे ही देते हैं कि चलो कर ही देते हैं, अब क्या है। तो अच्छा, ओखली में सिर देना,
0: ओखली में सिर देना हुआ एक मुहावरा, इसी को दूसरे मुहावरे के साथ भी जोड़ते हैं ना।
1: हाँ,
0: ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डर?
1: बिल्कुल, अब आपने उसमें दाल ही दिया है ना तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा अब।
0: जी, और कुछ हल्की फुल्की बातें भी होंगी, और ये हल्की फुल्की बातें भले हैं लेकिन बड़े काम की हैं, क्योंकि अब जो समय है त्योहारों का समय आ गया भाई, आ चला। और त्योहार आने का मतलब क्या?
1: त्योहार के नाम से ही मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि त्योहार मतलब बढ़िया खुशियां, एकदम चकाचौंध हर तरफ।
0: वो जो खुशियां और चकाचौंध है ये आती है थोड़ी सी साफ सफाई, सजावट घर की होती है,
1: काम करना पड़ता है।
0: त्योहार मतलब सजावट भी है, थोड़ी साफ सफाई भी है, थोड़ा सा घर में काम भी हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाएंगी ना सबके लिए, खाने के लिए, मेहमानों के लिए भी और घर के सदस्यों के लिए भी, तो वो भी एक काम होता है। और इन चीजों के लिए भाई खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी, वरना सजावट का सामान कैसे आएगा, घर में पकवान बनाने का सामान कैसे आएगा, तो खरीदारी भी
1: एक समझिए एक हमें आनंद का विषय है। खरीदारी करने जाना मतलब सच्ची में खरीदारी करने जाना है, मतलब सोच के भी इतना अच्छा लगता है कि अब जाएंगे जो मन करेगा देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें जो देखेंगे वो हम अपने बजट के हिसाब से खरीदेंगे।
0: जो त्योहारों का समय होता है ना, इसी उत्सुकता और उत्साह की वजह से जो विक्रेता हैं वो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑफर्स निकाल देते हैं लोगों को और लुभाने के लिए, ताकि लोग उनकी तरफ खरीदारी के लिए और आकर्षित।
1: बहुत सारी चीजें होती हैं और तरह तरह के ऑफर तो होते हैं, साथ में कई सारे और जो इस तरीके के विक्रेता होते हैं ना, तो कुछ जो लुभावने होते हैं इसमें वो ठगी का भी वो कर लेते चीजें, तो इससे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
0: ठगना भी नहीं है, अपना बजट भी नहीं बिगाड़ना है,
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम को संभालना है तो भाई गाने
1: गीत तो सुनना पड़ेगा।
0: जी

0: आरती बहुत खूबसूरत गीत था और इसके जो शब्द थे ना कि तन मन की शुद्ध बुद्ध गवा बैठी, कोई चीज जब दिल में समाती है, हमारे मन में बस जाती है ना, तो वो इतनी भाती है कि हमें शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। और इसी तरह से जब हम किसी काम को बहुत डूब कर करते हैं तो उसकी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती और ऐसा काम हमें सफलता भी देता है।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही हम एक महिला को लेकर आए हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो है संगीता देवी, जो कि संस्थापक हैं दिया माटी की। तो संगीता देवी की कहानी बिहार की सीतामढ़ी जिले के परिहार से जुड़ी हुई है। ग्रामीण महिलाओं की खेती और पशुपालन से जुड़ी रोजमर्रा की समस्याओं ने उन्हें ऐसा सामूहिक मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें महिलाएं केवल किसान या लाभार्थी बनकर न रहकर कंपनी की शेयर धारक और निर्णय लेने वाली सदस्य बने।
0: तो उन्होंने जो निर्णय लिया ना आरती, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि ग्रामीण महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जोड़ना जो ज्यादा तकनीक के बारे में नहीं जानती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका जो काम है वो खेती से जुड़ी है, पशुपालन से जुड़ी है, तो उन्हीं के काम को लेकर उन्हें आगे बढ़ाना। और संगीता देवी की कहानी जो आज हम बता रहे हैं, इसकी सबसे खास बात यही है कि ये केवल एक कंपनी की स्थापना की बात नहीं है, ये उस सोच की कहानी है या उस सोच की बात है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को मदद पाने वाली महिलाओं से निर्णय लेने वाली उद्यमी महिलाओं को बदलने का प्रयास किया गया। यानी कि वो महिलाएं जो अब तक सिर्फ दूसरों से मदद मांग रही थी,
1: सही बात है,
0: वो उठकर इतनी सशक्त बनी कि वो उद्यमी बनी और दूसरों की मदद करने के काबिल भी बन सकी। और इस कंपनी की नींव गांव की महिलाओं ने, जो कि रोजमर्रा की जरूरतें होती है ना, बस वहीं से पड़ गई।
1: बिल्कुल, इससे ये भी हमें पता चलता है ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो या हम बहुत सारी पूंजी इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू करें। अगर हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास कोई हुनर है, तो हम छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब देखा गया कि किसान बीज, खाद और पशुपालन से जुड़ी हर छोटी जरूरत के लिए बाजार और बिचौलियों पर निर्भर है, तब लगा कि अगर महिलाएं मिलकर अपनी कंपनी बनाएं और खुद फैसले लें तो वो सिर्फ अपनी आय ही नहीं बढ़ा पाएंगी बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकेंगी।
0: आरती, और आरती देवी की यात्रा हमें बस यही तो बताती है कि गांव की जो महिलाएं हैं उसके पास संसाधन बहुत सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी सामूहिक सोच है, यानी कि सब मिलकर जब वो किसी बात पर विचार करती हैं, सोच करती हैं, उसे अंजाम देती हैं, या प्रशिक्षण उनके पास जो है, जो बाजार की जो समझ है और नेतृत्व का अवसर अगर उनको मिल जाए, तो ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली एक उद्यमी महिला भी बन सकती हैं।
1: बिल्कुल, और इस कंपनी की कहानी में असली माटी जो है, अगर कहा जाए दिया माटी माटी क्या है, तो माटी जो है वो गांव की है और उसकी असली दिया है वो महिलाएं जो मिलकर अपने भविष्य को रोशन करने की कोशिश कर रही हैं। 28 जुलाई 2023 को दिया माटी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई और शुरुआत 10 ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनसे हुई थी।
0: और हर

0: शायद से 3 महिलाओं को इसके लिए प्रमोटर बनाया गया और इस तरह से करीब 30 महिलाओं ने इस कंपनी की नींव रखी। और कहें कि शुरुआत करना इस चीज के लिए बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने ना पहले कभी कोई कंपनी बनाई थी, शेयर्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये शब्द उन्होंने ना सुने थे ना ऐसा कोई काम किया था। तो इस टीम ने गाँव गाँव बैठकों का आयोजन किया और महिलाओं को ये समझाया कि वो किसी भी सरकारी योजना की लाभार्थी नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना जहाँ इन्होंने ये जब ये सब नए नए शब्द थे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के सिवा या गांव की खेती के सिवा कुछ नहीं देखा था, कुछ समझा नहीं था, वहाँ उनको इतना सशक्त बना देना, इतना ऊपर तक ले आना बहुत बड़ी बात है। और उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। और सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं का भरोसा जीतना था। कंपनी और शेयर जैसे विषय उनके लिए बिल्कुल नए थे, तो उनको समझाया गया कि उनकी अपनी कंपनी है।
0: और आरती, जब उन्होंने देखा कि हर फैसला बहुत पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि उनसे छुपाकर कोई भी चीज नहीं की जा रही है और उनकी राय को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कंपनी की तरफ जो उनका जुड़ाव था वो भी बहुत मजबूत हुआ। और उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल खेती करना नहीं था बल्कि किसानों की सामूहिक बाजार शक्ति है उसको बढ़ाना था।
1: बिल्कुल, और कंपनी के माध्यम से महिलाओं को बीज, खाद और खेती से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी उपज को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और साथ ही बकरी पालन भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना, यानी कि आप समझ लीजिए जो भी कुछ गाँव में होता है सभी चीजों को बाजार का एक प्रोडक्ट की तरह से उन्होंने प्रयोग किया। और स्थानीय महिलाओं के लिए बकरी पालन आय का प्रमुख साधन था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण होता है पशु आहार होता है और बाजार तक पहुंच, ये कुछ समस्याएं थी।
0: बिल्कुल, अगर आप किसी भी तरह का कोई पशु पालन कर रहे हैं तो अपने पशु को भी स्वस्थ रखने के लिए जो उसका आहार है उस पर खास ध्यान देना होता है। और इसी संदर्भ में उनकी कंपनी ने दमदार दाना इस नाम से एक पशु आहार विकसित किया। इसके बाद संगीता देवी के मन में विचार आया कि भाई जब कपड़े और दूसरी आवश्यक जरूरतें ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं, तो क्यों ना ये जो पशु आहार है, बकरी का आहार है, इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और इसी सोच के साथ जो उन्होंने जो दमदार दाना जो लॉन्च किया था उसको सही दिशा में पहुंचाने का काम शुरू हो गया।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए हर चीज आज एक क्लिक के ऊपर में मिलती है, तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज करना चाहें तो हम अपने घर से भी इसमें ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता और डिजिटल बाजार के बीच एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मॉडल का एक बड़ा बदलाव ये है कि महिलाएं बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यवसाय संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय हुई। कुछ महिलाएं ग्राम सभा जैसे स्थानीय मंचों पर भी अपनी बात रखने लगी
0: और कंपनी भविष्य में पशु सप्लीमेंट्स, हरा चारा, जैविक उर्वरक, कृषि इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण, इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है और दमदार दाना को बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें कहीं भी रुकना नहीं होता है, हम ये कभी ना सोचे कि हम में ये कमी है या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए
1: अभी समय हो गया एक छोटे से
0: अंतराल का।
1: हाँ।

0: तो ये गाना सुना और इस गाने को सुनने के बाद ना मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत खनक थी इस गीत में और मुझे भी बहुत पसंद है।
1: है
0: और
1: भी अच्छा।
0: अब बात करते हैं एक मुहावरे की, जो है ओखली में सिर देना। यानी बहुत बार क्या होता है ना, इंसान मुसीबत में फंसता नहीं बल्कि मुसीबत को देखकर खुद ही कहता है कि आइए आपका स्वागत।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे मौकों के लिए ही हिंदी में बड़ी मजेदार कहावतें मुहावरे हैं, जैसे एक तो है भाई आ बैल मुझे मारो, और एक है ओखली में सिर देना, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। यानी कि किसी भी परेशानी में जानबूझकर पड़ना और फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। और जब ओखली में सिर देंगे तो मुसल तो पड़ेंगे ना भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, पड़ोसी ने कहा भाई साहब मेरी शादी की तैयारियों में बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आपने कह दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो करूंगा। तो और 5 मिनट बाद आप फूल सजा रहे हैं, कहीं पर आप कुर्सियां लगा रहे हैं, और आधे घंटे बाद आप मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, और शाम होते होते दूल्हे की सेहराबंदी भी आपके जिम्मे। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे भैया जरा उससे डीजे वाले से कह दो कि जरा और दूसरा गाना लगा दे। तो मतलब एक से लेके पूरा 10 तक सारे काम आपके जिम्मे।
0: बिल्कुल। यानी आपने कहा था कि भाई कोई ठीक है मदद चाहिए तो हमें भी बताना, बाद में आपको लगेगा कि भाई क्यों इस ओखली में सिर दे दिया हमने। और जब धनाधन धनाधन मुसल पड़ते हैं तब ये बात ध्यान में थी क्यों दिया था हमने ये सिर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो और हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में?
1: बिल्कुल, श्रोता भी हमारे बहुत कुछ कह रहे हैं। और हमारे एक श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना मतलब आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को न्योता देना जो खुद के साथ साथ घर परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओखली परिवार और समाज में खलबली मचा सकती है। सच बात है,
0: सही बात है। और एक अन्य संदेश में श्रोता ने कहा है कि ये लोकप्रिय हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम मोल लेना। और ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना, इसका अर्थ है कि जब एक बार कठिन काम करने का निश्चय कर ही लिया है तो आने वाली जो भी बाधाएं हैं समस्याएं हैं उनसे डरना नहीं है। तो हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ में।

0: तो भाई मन का बावरा पंछी डोल रहा है और हमारे जो संदेश हैं वो भी आ रहे हैं। और ओखली क्या है इसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि ओखली वो भारी बर्तन है जिसमें अनाज को डालकर मूसल से कूटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना सर रख दे तो चोट लगना तो तय है। इसीलिए कहावत का सीधा सीधा संदेश यही है कि कठिन परिस्थितियां जोखिम को चुना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना तो व्यर्थ है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो भी कुछ कहना चाहते हैं और लिखते हैं कि हिंदी मुहावरा यानी कि ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम को मोल लेना। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि आगे चलकर भारी परेशानी नुकसान या संकट आने वाला है स्वयं अपनी मर्जी से किसी कठिन काम को हाथ में लेता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।
0: और भी संदेश है इसके लिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ओखली में सिर देना ये वाक्य जीवन के साहस और दृढ़ता को भी दिखाता है। यदि अपनी स्वेच्छा से कोई चुनौतीपूर्ण रास्ता चुन लिया जाए, जैसे कोई भी कठिन परीक्षा है, नया व्यवसाय है, तो अब उसके संघर्षों से डरने का कोई फायदा नहीं बल्कि डट कर उनका सामना करना है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना तो मूसल से क्या डरना बड़ा रोचक है। अगर गाना चला दें तो विविध भारती को ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मतलब डर। इनका कहना है कि नए गाने आए चाहे पुराने गाने आपको सुनना है ऐसा भी नहीं है।
0: एक हमारे श्रोता जिन्होंने अपना संदेश साझा किया है ये बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम घर की जो महिलाएं हैं चाहे वो पत्नियां हैं बहनें उनको करना पड़ता है। हमारे पापा का पोस्टमार्टम तो भीलवाड़ा में करवाया गया और इन्होंने अपनी कुछ घटना लिखी है कि पुलिस वालों के साथ में कुछ इस तरह की बातचीत इनकी हुई तो फिर मुनीम को के जरिए वो काम करवाया गया, तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि इस तरह का कार्य जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज मैं दांतों के डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर कुछ ने जब चेक किया तो उसने कहा कि कुछ जो दांत हैं वो खराब हो गए हैं तो इन्हें नया लगवा लीजिए उसको निकलवा के। तो मैंने कहा लगा दीजिए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया पर मैंने यही सोच लिया कि अब ओखली में सिर दिया है तो डरना कैसा, यानी कि अब दांत निकलेगा तो दर्द तो होना ही होना है, उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा।
0: यानी कि सिर्फ दिखाने गए थे और दांत का ट्रीटमेंट चालू हो

हर हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम।

आरती, ये खूबसूरत गीत था ब्लफ मास्टर फिल्म का, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: बिल्कुल
0: और हम बातों के साथ
1: और संदेशों के साथ में और ओखली हमारी चल रही है तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। तो मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से पछतावा कैसा। फिर हम दोनों हंस देते हैं और अगर उस समय बच्चे बैठे हों तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई फिर से डरना क्यों है, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ में उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है भाई आरती? मिठाई
1: आती है, तरह तरह के पकवान,
0: रिश्तेदार नहीं सबसे पहले शुरू होता है भाई, चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने भी।
0: और पता है घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहारों में पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल,
0: और कई बार तो होता ही है कि साल भर जो सामान अलमारियों में पड़े रहते हैं उनकी हमें याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई ये काम की चीज नहीं तो इसे निकाल दिया जाए या काम का है तो रख लें, कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज, भाई नहीं रख दो काम की चीज है।
1: बिल्कुल, और वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी इसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारत फैमिलीज होती हैं उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज़ हम उसको खराब नहीं करते। अगर कोई डिब्बा है तो उसको खाली, चलो उसको धो के रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी।
0: चीजों के साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात कोई ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पे मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या जंग लग के खराब हो गए, लेकिन उस चीज से जो जुड़ाव उसकी वजह से भी हम
1: उस चीज से क्या उसकी यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते हमें कोई पुराना फोटो मिल जाए बस
0: एल्बम
1: फिर क्या हो गया काम, फिर तो सफाई बंद यादें शुरू। अरे ये फोटो देखो वो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था या कितनी पतली थी, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो, नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला,
0: और इतने सारे ऑफर भी उन पे डाल दिए जाते हैं। और घर से जब हम निकलते ना खरीदारी के लिए तो एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है या फला फला चीज लेनी है, लेकिन जब बाजार पहुंचते हैं तो बस वो जो कहते हैं कि लुभावने अवसर जो होते हैं, जो ऑफर होते हैं उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं, जूते भी लेने हैं, सबकी चीजें भी ले लो, तो कुछ मिठाई भी ले लो, मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो, और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है, तो कई बार क्या करता है मैं
1: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो,
0: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो ताकि बहुत सारी चीजें और खरीद ले।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सजी जो दुकानें होती हैं, जो सामान होता है, इतना सजावट भरा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है तो मन ही नहीं करता वहां से हटें, अच्छा ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में, लेकिन उसे उठा लाते हैं।
0: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए, कोई एक कहते हैं कि लाइट लगानी है हमें, तो एक लेनी होती है साथ में दो और लेते हैं, ये वाला झूमर भी ले लें, ये वाली कंदील भी ले लें, ये वाली लड़ भी ले लें, इस तरह से वो सामान बढ़ता चला जाता है और बजट पर भारी हो जाता है।
1: बिल्कुल, और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े लेते हैं ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का उत्साह तो ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं, है ना,
0: बस वो इंटरनेट पर देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि नए नए डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहां सजावट देखी बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लगना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा लगता है। और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने सिर्फ कहते ना दिखाने के लिए काम करता है, कुशन को उठाया यहां से वहां रख दिया, ये उठाई चीज वहां से वहां रख दी, जो काम जिसे ना करना वो काम के बहाने भी इस तरह से,
1: बिल्कुल छोटी छोटी चीजें रखी, अच्छा ये चीज वहां है वहां रख दी, काम कर रहे दिख रहा है कि देखो हम काम कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा, क्योंकि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा।
0: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल

0: सच में जो बहारों की जो रुत आ रही है यानी कि त्योहारों की रुत आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहां सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार आ रहे हो और घर में साफ सफाई ना हो ये असंभव है, और पतिदेव के पॉकेट की भी सफाई ना हो ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की खरीदी वैरायटी से भी भरी बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है, इसके सामने पतिदेव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
0: और अब सबसे पहले जो त्योहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं तो जो साज सज्जा होती है उसमें कपड़ों के, गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है। बाजारों में बहुत धूम मची हुई है।
1: बिल्कुल, इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वहीं विंडो शॉपिंग और तोल मोल करना, ये सब अपना ही एक अलग मजा होता है इन चीजों का।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ सफाई करने में काफी दिक्कत आती है, सफाई भी बहुत काफी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से ही सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहता हूँ, फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
0: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है, ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्योहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी बेकार है। इसीलिए असली मजा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहां एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बड़ा बेमिसाल मुद्दा है। त्योहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियाँ, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती हैं, अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती हैं। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता, नहीं देते थे लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई

0: करती हैं और जाले भी साफ करती हैं, फिर माँ सब्जी बना देती हैं और उसके बाद बहन रोटियां बेल देती हैं। सफाई तो नजाकत से बहन करती ही हैं। मतलब चीजें हैं कि देखिए साफ सफाई घर में होनी चाहिए बहुत सारी, जो ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो जाती
1: और
0: है।
1: और इसका पूरा सीधे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका भी ही है, क्योंकि सीलन की बदबू हो चुकी होती है घरों में और सीलन से कई बार खराब हो चुकी होती है बारिश के बाद में। फिर जब ये त्योहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं मकड़ियों के, उसकी साफ सफाई हो जाती है और पूरा घर, कई बार जब हम लिपाई पुताई भी करवाते हैं तो जो कोनों में कीड़े मकौड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और पुरानी चीजें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकालकर घर में जगह बना दी जाती है। और आरती त्योहारों का असली मजा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसी के घर भी कई बार हम मिठाइयां पहुंचाते हैं उनसे ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सबके साथ मिलकर ये खुशियां बांटना ये बात ही अलग होती है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी, सजावट, सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है, मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जो जितने भी कबर्ड हैं, अलमारी हैं, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है, क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीजें मुझे मिलती नहीं है और श्रीमती जी को इससे बाहर रखना पड़ता है और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीजों में मेरी जो चीजें वो मैं ही रखता हूं, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है, मतलब त्योहार में ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना कि जब त्योहार में सफाई होती ना तो मेरे सामान कहाँ चले गए, वो मिल नहीं रहे। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है ना बहुत खतरनाक होती है कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहाँ रख दिया। तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने घर, अपने कमरे की सफाई, अपने सामान की सफाई खुद करें ताकि हमें अपने जो हमें मालूम होगा कि हमने कहाँ रखा है वो सामान।
1: तो हम बात कर रहे हैं कि अपने घर की अपनी चीजों की सफाई कैसे रखनी, इसके साथ छोटा सा एक काम हम ये भी कर लें कि मन को भी साफ करें। हम कई बार अपने मन में लोगों के प्रति जो भावनाएं रखते हैं उनको भी साफ कर सकते हैं और घर को साफ करने के लिए भी नई चीजें खरीदी, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं जो कई बार तकरार हो जाती है और मन में हम मुटाव लेकर बैठ जाते हैं और बुरी भावनाएं लेकर बैठ जाते हैं, उनकी भी सफाई करिए और बिल्कुल सारी गिले शिकवे भुलाकर त्योहारों में उनसे भी गले मिलिए।
0: बिल्कुल। एक हमारे जो साथी हैं वो इसी बात को कहते हैं जो आपने कहा है कि सफाई, सजावट और खरीदारी त्योहारों की केवल बाहरी तैयारियां हैं, इनका असली उद्देश्य हमारे भीतर संतोष और प्रेम का संचार करना है। जब घर का हर कोना साफ और जगमगाता है तब मन में भी खुशियां, जो खुशियां उसकी एक नई रोशनी जल उठती है।
1: बिल्कुल। घर भी सजाइए लेकिन रिश्तों में भी थोड़ी सी रोशनी लगाइए, क्योंकि त्योहार की असली रौनक बाजारों में नहीं या सजावट की दुकान में नहीं मिलती, वो तो अपनों के साथ मिलकर बैठती है जब उनके साथ मिल बैठकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए हम भी एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो हमारा प्रोग्राम भी अब आगे चल रहा है और हम बता दें कि आज बहुत एक खास दिन है जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस। और आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है, कुछ भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील विषय है और समाज को प्रेरित भी करती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो इस तरह के मरीज होते हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं, उनको खास तौर पर हमारे प्रेम की बहुत जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, और वैसे भी सेरेब्रल पॉलिसी है ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित कर सकती है। ये मस्तिष्क के विकास से जुड़ी क्षति या असामान्य विकास के कारण होती है
0: और ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें मांसपेशियों का तनाव और अकड़न बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक और इसका प्रकार है जिसमें हाथ पैरों और हथेलियों के कुछ मामलों और चेहरों और जीभ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जो मरीज है उनके लिए।
1: बिल्कुल, और साथ ही ये एक तरीके की ऐसी भी होती है जिसमें कि मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे चलने में अस्थिरता आ सकती है और सटीक जो नियंत्रण होती है उसकी आवश्यकता वाले कामों में कठिनाई हो सकती है।
0: बिल्कुल, किसी को चलने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है आरती, तो किसी को बोलने या फिर रोजमर्रा के जो काम है उनमें किसी भी तरह का सहयोग लेना पड़ता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं और किसी को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती, किसी को थोड़ी कम होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति की शारीरिक कठिनाई को देखकर हम उसके लिए अपनी सीमाएं तय कर देते हैं। यहीं से सोच बदलने की जरूरत है। कोई किसी से ये ना कहे कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि ये कहे कि आपको ये काम करने के लिए किस तरह की मदद चाहिए।
0: और बस यही अंतर होता है सहानुभूति में और सम्मानजनक सहयोग में। तो हम सहानुभूति ना दिखाएं, उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को भी समझें, और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल, और इस वर्ष के लिए इस दिवस का मुख्य विषय भी चुना गया है जो कि है यूनिक एंड यूनाइटेड, यानी कि अद्वितीय और एकजुट है, जो व्यक्तिगत आवाजों और सामूहिक एकता की ताकत पर जोर देता है।
0: तो चलिए अब सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो हम ले रहे थे अपने किस तरह से श्रोता बता रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई करते हैं, सजावट करते हैं त्योहार की।
1: संदेश आने बंद ही नहीं हो रहे हैं।
0: हाँ तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इन सब तामझाम के बीच में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब काम खत्म करके पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठता है और चाय की चुस्की, पुरानी यादें ताजा करी जाती हैं, रिश्तेदारों की खिंचाई की जाती है और हंसना हंसाना ही त्योहार को सच में त्योहार बनाता है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि गणपति पर हमारे यहाँ बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे किसी ने भेजे थे और इन चॉकलेट के डब्बों में हमने मक्खन रख लिया। तो आपने सही कहा कि काम करते करते कई बार एक एल्बम भी मिल गई तो सफाई धरी की धरी रह जाती है, यानी कि हमारी जो बातें हैं उनसे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे जो श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयां और गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें और बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर भी विंडो शॉपिंग और तोल मोल करने का अपना ही अलग मजा है।
1: तो चलिए अब एक गाने सुनने का भी अलग मजा होता है, सुन लेते हैं गाना।

0: तो भाई इस गीत के साथ में घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि
1: हम भी
0: सयोनारा कहने का
1: हम भी सयोनारा कहते
0: हैं। कल फिर आएंगे सखी सहेली लेकर, ये वादा करते हैं,
1: लेकिन कोई और और इसी के साथ में हमें अनुमति दीजिए यानी कि आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से, बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ, आज वहाँ पर बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई हैं जिनको मैं अक्सर प्रोग्रामिंग हेट के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज़ सुनता था मेरे सारे, अभी मतलब मैं थोड़ा सा खोया हूँ क्योंकि एक साथ कई सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं और मुझे पता नहीं मैं कौन सा शेयर करूं, कैसे बात करूं।
1: नहीं, आप दिल खोल के हर एक याद शेयर कीजिए, हम उसी के लिए है ताकि हमारे सुनने वालों तक आपके दिल की बातें पहुंचे, सबसे ज्यादा जरूरी। और आपके पसंदीदा गीत हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, वो भी आपको शेयर करने। और रेडियो में जैसे हम आए, विविध भारती से जुड़ी बहुत सारी यादें आपने शेयर की है हमारे।

0: बिल्कुल
1: तो विविध भारती किस तरह से आपकी जिंदगी से जुड़ा और उसकी कुछ यादें वो हमें जरूर बताएं, वहां से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने वाला हूं। और बचपन मेरे बड़े खूबसूरत रहे हैं, सबके होते हैं बहुत खूबसूरत, बस उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो से मैं कैसे जुड़ा, हम इसकी बात करते हैं। पहले तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम लोग अगर कभी टीवी देखना भी होता था तो भाड़े पे बैटरी लेकर के आते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, तो 12 रुपये या 15 रुपये में भाड़े पे मिलता था 2-3 दिनों के लिए। तो उसमें हम सैटरडे, फ्राइडे और संडे को फिल्में आती थी। फ्राइडे को आई थिंक रात के 9:30 बजे से, फ्राइडे को, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से, और संडे को शाम 4:30 बजे से आता था।
1: हाँ, 4 या 5 बजे
0: हाँ जी,
1: शायद।
0: हाँ जी, हाँ
1: हाँ
0: जी।
1: जी,
0: तो यही हमारा एक फिल्म देखने का साधन हुआ करता था। लेकिन पिताजी ने एक रेडियो 2 सेल का लेके आया था, उन्होंने, हम बच्चे ही थे, और बाकी मेरे गांव के लोग जब रेडियो सुनते थे तो मुझे भी लगता था मुझे भी रेडियो चाहिए। और मैंने जब रेडियो लगाया, और मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम एक दिन विविध भारती आया, मुझे एग्जैक्ट वो एज तो नहीं पता, बट उस दिन से मुझे लत लग गई। और कमाल की बात ये बताऊं मैम आपको कि मेरे पिताजी अभी रिटायर हुए हैं, 1 महीना पहले मैंने पापा को एक रेडियो गिफ्ट किया है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: क्या बात है।
0: क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर वो रेडियो नहीं दिए होते तो आज मैं अभिनेता नहीं होता, क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही मुझे अभिनेता बनना है ये ख्याल आया। और उसकी तैयारी कैसी की जाए, मुंबई कैसे जाया जाए, कहाँ से थिएटर की जाए, वो सब मुझे विविध भारती में जो आप लोग इंटरव्यू लेते थे, है ना, आज के
1: जी।
0: फनकार हुए, चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में, तो वो सब सुन सुन के सुन सुन के। या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे,
1: जी।
0: तो वो सब सुन सुन के मैं अपने आप को तैयार किया। और पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा।
1: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से विविध भारती मेरे जिंदगी में आया। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूं, मैं कई बार लोगों से शेयर किया हूं
1: जी।
0: कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है या फिर मैं जो चंदन हूं, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आसपास का संस्कार अगर मेरे अंदर है, तो 50% विविध भारती का भी है। विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए, और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए,
1: जी
0: है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना। क्योंकि एक बाल्य मन में जिसको कुछ भी वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से वो पूरी दुनिया को देख रहा है, तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना
1: क्या
0: चाहता
1: बात
0: हूं,
1: है।
0: है
1: ये
0: ना।
1: हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज्यादा उन पर असर, उनकी जिंदगी पर असर करती है विविध भारती। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत
0: बिल्कुल,
1: धन्यवाद इसके लिए।
0: शुक्रिया।
1: बचपन की जैसे बात की आपने,
0: हाँ जी,
1: तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए,
0: हाँ जी,
1: क्या
0: हाँ
1: वो इस
0: जी।
1: चीज से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी चीज, बचपन को जिया है शायद आपने, जैसे सही मायनों में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप बचपन में।
0: बिल्कुल, अरे वाह। एक तो जहां पे, मतलब क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, रात्रि सेवा भी सुनता था, अगर मेरी आंखें खुल गई हों 2:30-3 बजे तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था, और गाने चल रहे होते थे, मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी। तो जहां मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहां अगर मैं ये कहूं कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा। करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे।
1: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे।
0: नहीं, कभी भी नहीं, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा,
1: अच्छा।
0: है ना, बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से। अब हो सकता है ये फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वाले को ऐसा ही देखा है। तो बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा।
1: अच्छा।
0: तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा फिल्म में भर्ती होगा, तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल, और पहली बार लगा कि अरे यार ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊं मैं।

0: बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब विद्यार्थी ने हौसला दिया कि देख सपना है अगर तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
1: और
0: कोई
1: सपनों की
0: और
1: नगरी में आना ही है
0: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे,
1: जी।
0: तुम्हारा है तुम लड़ो।
1: बचपन में कैसे थे, नटखट थे,
0: अरे बहुत
1: किस तरह
0: ज्यादा,
1: के आपने बचपन को जिया है जैसे,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: किस
0: जी
1: तरह से जिया है, वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे, भाई बहनों के बीच
0: बिल्कुल
1: आप ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
0: हाँ, मतलब शरारती तो था ही। कमाल की बात यह कि जहां मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है,
1: अच्छा।
0: नदी से इसीलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूं, और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहां पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहां पे तीन तीन पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन,
1: अच्छा।
0: और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा गांव, तीन पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो लेकिन कई बार
1: कोई ना
0: मुझे
1: कोई
0: लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो
1: जी,
0: और सब कुछ लिखा हुआ होता है,
1: बिल्कुल।
0: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपनी आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाए, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में सभी घर में सभी माँ चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी, हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए। और मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी पांच भाई थे और उनमें से तीन भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में है, कोई बीएसएफ में है, वहां एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, बट मैं सोचा कि नहीं मुझे तो जाना है मुंबई। तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था। कई बार मुझे ये लगता है थोड़ा सा फिलोसफी वाली बातें हो जाएंगी, बट ये जो हैप्पीनेस है मेरे लिए ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, और ये सॉफ्टवेयर बचपन से इंस्टॉल होकर के आया है मेरे पास,
1: बिल्कुल।
0: मैं बेवजह खुश हो जाता हूं कई बार।
1: वो खुशी कहीं ना कहीं अंदर ही है, जिसे
0: हाँ
1: हम बाहर तलाशते हैं।
0: जी, और यही वजह है कि मुंबई भी मुझे लगा कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मैं तो जाऊंगा मुझे काम मिलेगा,
1: बिल्कुल,
0: यही एटीट्यूड था मुझे। कभी भी
1: क्या
0: शक
1: बात।
0: नहीं हुआ कि अरे भाई ये लड़का से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे।
1: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
0: हाँ
1: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। कौन
0: वाह,
1: सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
0: बहुत प्यारा गीत है, गाने का बोल है, जब हम जवां होंगे जाने कहां
1: क्या
0: होंगे।
1: बात है, क्या बात है। बेताब फिल्म का ये गीत हम सुनवा अपने सुनने वालों को।

0: बात चली है चंदन रॉय से, तो
1: अच्छा
0: बचपन की बातें तो बहुत सी आपने की है, अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी, देखिए पढ़ाई में तो

0: वैसे मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से। मैं भूल जाता था चीजें, जैसे तारे जमी पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
1: अच्छा
0: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूं, कभी दीर्घी लिख दूं, किसी हिंदी में भी। तो था ये, मैं चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार, तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस लिवाओ।
1: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ
1: उस
0: जी,
1: तरफ रुझान शुरू से था।
0: हाँ। और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल है, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, वो मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके करके आ रहे हो, है
1: बिल्कुल
0: ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया।
1: अच्छा
0: अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ,
1: जी
0: बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
1: ये आपने पटना से किया
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जी।
0: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूंगा और थोड़ा जागरूक भी रहूंगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये
1: बिल्कुल
0: सब मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा उसके लिए।
1: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
0: हाँ
1: आ गया
0: जी,
1: था,
0: हाँ जी, हाँ
1: इसीलिए
0: जी, हाँ
1: वो
0: जी,
1: फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये अब महसूस करता हूं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है एक अभिनेता के लिए।
1: अभी
0: तो
1: आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं,
0: देखो,
1: सुनाइए।
0: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीजें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूंगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूंगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूं, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लारा दत्ता की फिल्म थी।
1: जी।
0: अरब

0: अच्छा, हम आते हैं इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन। तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूँ, मैं भूल ना जाऊं। मेरे यहाँ ना वही जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख चुका हूँ। बोले नहीं, फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था।

0: और इवनिंग शो तो चला गया, बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ रही है कि भाई 1, 2, 3, चौथा बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया, उसमें वो एक बांधा गया चोंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं
1: अच्छा
0: मिले तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था, और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई, और तब तक 12 12:30 हो चुके थे, और मेरे, जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको। मेरे सारे दोस्तों भाग गए, और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने, मुझे बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आए। मुझे लगे यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया, हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई, बट उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, 1 2 महीने के बाद फिर से क्योंकि पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता था,
1: जी,
0: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्मों की।
1: रच बस गया था सिनेमा।
0: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है। ये कहानियां आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़ के देखता हूं तो यही सब शरारतें मुझे याद आती हैं
1: जी
0: आज,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का।
0: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था तो मुझे ये था कि यार जब मैं मुंबई जाऊंगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे, तो मैंने ना 1 से 12 15 सवाल तैयार करके रखा था। यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
1: वो मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं।
0: यस, और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है, मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूं मैं। ये बहुत मुश्किल है, जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
1: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
0: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा
1: ये
0: चादर।
1: उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे
0: बिल्कुल
1: नहीं सपने देखने से,
0: हाँ,
1: और जो चाहेंगे वो होगा,
0: हो जाएगा।
1: बस वो मेहनत की जरूरत है
0: एक ही
1: और
0: जिंदगी मिली है
1: शिद्दत।
0: ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जिएंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता, असफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव
1: जी,
0: है ना,
1: मन की
0: और
1: खुशी।
0: मन की खुशी है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार लोग लगते हैं कि अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा।
1: जी
0: नहीं, वहां भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीचिका, मरीचिका जो होता है ना वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है। होता कुछ नहीं है वहां, लोगों
1: बिल्कुल
0: को लगता है अरे ये सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूं। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूं माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या बताऊं आपको। मैं इसके लिए मुंबई में हूं, ना कि
1: बिल्कुल
0: मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला गाड़ी घोड़ा। अरे नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूं, एक कमाल की एनर्जी में होता हूं। ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा
0: ओ
1: है,
0: हो,
1: कहीं आपने कही है ये बात, एक्शन और कट
0: बिल्कुल
1: के बीच का
0: बिल्कुल
1: लम्हा।
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस, जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस
1: जी,
0: बिंदु पे रहते हो। अब इन्हें भी
1: मेडिटेशन,
0: बिल्कुल,
1: ध्यान।
0: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूं और समझता हूं कि उस लम्हे को जी लूं, उस पल को जी लूं। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं।

0: हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते, बट कोशिश होती है उसके आसपास भी चला जाऊं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहाँ पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा।
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है, ये दिल आशिकाना

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुंचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुंचे थे। तो वहां थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी कॉलेज में।
1: चूंकि मैं बिहार से हूं तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना लोड लेने की चीज नहीं है, इसको खेलना है। नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको एंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे, और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक,
0: जी
1: कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो।
0: जी
1: मैं उसमें बाल्य कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मजा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया
0: जी
1: करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे। और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे,
0: अच्छा,
1: गांधी मैदान में।
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी,
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता है यार ऐसी जिंदगी तो नहीं जीऊंगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी, मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूं कि क्राफ्ट सीख लूं, तरीका सीख लूं, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था। हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोलें कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लग रहा था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत, मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली करेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें,
0: जी
1: है ना, करेक्टर कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज खत्म करने के बाद पटना मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहां पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए। साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार चूंकि मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था,
0: बिल्कुल
1: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
0: बिल्कुल
1: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा, है ना, और इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी अब तो नहीं।

0: पाऊंगा। और
1: अच्छा
0: मैं उस एक महीने में राग दरबारी एक प्ले था, श्री लाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीजें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय।
1: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: बिल्कुल।
1: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े,
0: हाँ
1: और उसके
0: जी,
1: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
0: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप चार भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
1: बिल्कुल।
0: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगू। तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में, IMC में जाने का एक ही था उद्देश्य कि मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहां पर मुझे 11,800 रुपया मुझे मिलता था, और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा, क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मेरे पूरे पैसे नहीं आते थे, है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी
1: बिल्कुल डेट याद है
0: हाँ जी,
1: एकदम।
0: उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
1: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में,
0: हाँ
1: उसकी याद, वो जो पहला दिन था,
0: हाँ
1: उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूं, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते आप, मुंबई के पहले दिन को।
0: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम, जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कुछ भी आइडिया नहीं था। आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता, क्या हिम्मत था उस लड़के में। आज का चंदन तो नहीं आता, है ना।
1: जी
0: 50 चीज़ें सोचता, उस समय कुछ भी नहीं सोचा था। मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीज़ों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन, वहाँ उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूँ तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ।
1: अच्छा
0: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए हैं, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया ताकि कोई देख न ले कि ये क्या कर रहा। फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ, जो होगा अब आपके हवाले, आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस
1: बिल्कुल
0: जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
1: जी
0: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो एक दो दिन, 3 दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
1: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
0: हाँ जी
1: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मजेदार था आपके लिए,
0: मजेदार तो
1: ये
0: बिल्कुल
1: जीवन,
0: था, बिल्कुल था।
1: है
0: वो
1: ना? उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं
0: कभी
1: लेते।
0: भी नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी जिंदगी में
1: जी
0: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, या मुंबई में हूं, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूं,
1: जी
0: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता।
1: जी
0: तो वो दिन बहुत जरूरी थे, वो
1: बिल्कुल
0: अनुभव बहुत जरूरी था। तभी तो आज जब चीजें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज्यादा उड़ता नहीं हूं, उछलता नहीं हूं, क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था
1: अच्छा
0: क्योंकि वहां भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए,
1: जी जी
0: है ना। और जाता क्या था, एक दो दिन रुक ही जाता था मैं वहां।
1: ओके
0: कि 2-3 दिन में जितना भरपेट खा लूं

0: ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊं तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए, पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था, वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहां से सात बंगला होते हुए, चार बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहां से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यशराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था और
1: अच्छा
0: सब पैदल, क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे मेरे लिए हो जाते थे। तो
1: बिल्कुल
0: मैं पैदल ही निकलता, कहीं पसीने से तरबतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था, और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात ये है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे, पुराने थे। अच्छा, मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि
1: नहीं
0: ये चीजें मैंने देखा है, भोगा
1: जी
0: है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं,
1: जी
0: इसलिए ये सब चीज आपसे शेयर कर रहा हूं, आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूं कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे।
1: अच्छा
0: तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था, उसमें
1: अच्छा
0: तो मैंने दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है, मैं रोज 12 से 15-20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए, तो और ऐसा दो कि वो ऑलरेडी गंदा ही दिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो वो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया, उसमें
1: अच्छा
0: सोल वगैरह कुछ नहीं था, तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं।
1: अच्छा
0: तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई तेरे जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के 2-3 जूते मुझे दिए जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो,
1: अच्छा
0: तो उन्होंने मुझे 2 जूते दिए थे, तो वही 2 जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया। फिर 1-1.5-2 साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं आज यहां बैठा हूं ना, तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
1: आशीर्वाद है
0: आशीर्वाद है। अगर वो
1: बिल्कुल।
0: लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
1: चलिए यहां सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: ओके,
1: कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
0: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना, तो एक गाने का बहुत ज्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना, मैं
1: बिल्कुल
0: सारे बचपन के सारे गाने
1: बिल्कुल
0: लेके
1: सुनवाते हैं
0: हाँ जी,
1: गीत।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को

0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी में मैं हूं आपका आज के इस प्रोग्राम का होस्ट और आपका दोस्त सोम कबिया, लेकर हाजिर आपका पसंदीदा प्रोग्राम। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आज की बात के अंतर्गत बात करेंगे युवा और फिटनेस संस्कृति, जिसमें जिम संस्कृति बनाम योग और देसी अखाड़े के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। साथियों, आज के समय में युवाओं के जीवन में फिटनेस और स्वास्थ्य का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। पढ़ाई, नौकरी, तकनीक और व्यस्त जीवन शैली के बीच शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखना एक बड़ी आवश्यकता बन गया है। इसी कारण युवाओं में जिम, योग, दौड़, खेलकूद तथा पारंपरिक अखाड़ों के प्रति रुचि बढ़ रही है। फिटनेस केवल शरीर को आकर्षक बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि शारीरिक क्षमता, मानसिक संतुलन, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने का साधन है। आधुनिक युवाओं में जिम संस्कृति काफी लोकप्रिय हुई है। जिम में विभिन्न प्रकार के व्यायाम, मशीनों और प्रशिक्षकों की सहायता से शरीर के अलग अलग अंगों की कसरत की जाती है। वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, स्ट्रेचिंग और अन्य व्यायामों के माध्यम से शक्ति तथा सहन शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जिम का एक प्रमुख लाभ यह है कि यहाँ व्यायाम को व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। प्रशिक्षक सही तकनीक समझा सकते हैं और व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास कर सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि से शरीर सक्रिय रहता है और दैनिक जीवन में ऊर्जा तथा कार्यक्षमता बढ़ सकती है। हालांकि जिम संस्कृति के साथ कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। केवल बाहरी रूप या शरीर की बनावट को लक्ष्य बनाकर अत्यधिक व्यायाम करना उचित नहीं है। बिना सही जानकारी के भारी वजन उठाना या गलत तरीके से व्यायाम करना चोट का कारण बन सकता है। इसलिए उचित तकनीक, पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और प्रशिक्षित मार्गदर्शन को महत्व देना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी प्राचीन परंपरा योग की। भारत की प्राचीन परंपरा में योग का विशेष स्थान रहा है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि शरीर, श्वास और मन के बीच संतुलन स्थापित करने की एक व्यापक पद्धति है। विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान व्यक्ति को अपने शरीर और मन के प्रति जागरूक बनाने में सहायता कर सकते हैं। आज के तनावपूर्ण जीवन में योग युवाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। नियमित योगाभ्यास से लचीलापन, शरीर की गतिशीलता, संतुलन और एकाग्रता पर सकारात्मक

प्रभाव पड़ सकता है। प्राणायाम और ध्यान जैसी विधियां शांत मन तथा बेहतर मानसिक एकाग्रता के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा आत्म अनुशासन और संतुलन पर जोर दिया जाता है। इसलिए फिटनेस को केवल शारीरिक शक्ति के रूप में देखने के बजाय संपूर्ण स्वास्थ्य के रूप में समझने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारे देश में देशी अखाड़े की परंपरा भी प्रचलित है। देशी अखाड़े इसी परंपरा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं कि भारत में व्यायाम और शारीरिक प्रशिक्षण की एक समृद्ध परंपरा रही है। अखाड़ों में कुश्ती, दंड बैठक, मलखंभ तथा अन्य पारंपरिक अभ्यासों के माध्यम से शरीर को मजबूत और सक्रिय बनाने की परंपरा रही है। अखाड़े केवल व्यायाम करने की जगह नहीं होते, बल्कि वे अनुशासन, गुरु शिष्य परंपरा, आत्मसंयम और खेल भावना से भी जुड़े रहे हैं। मिट्टी के अखाड़े में अभ्यास करने से युवाओं में परिश्रम और निरंतर अभ्यास की भावना विकसित हो सकती है। देसी व्यायाम की विशेषता यह है कि इसमें शरीर के अपने भार का उपयोग करके अनेक अभ्यास किए जाते हैं। दंड बैठक जैसे पारंपरिक अभ्यासों को लंबे समय से भारतीय शारीरिक संस्कृति का हिस्सा माना जाता रहा है। आधुनिक समय में भी अखाड़ों की परंपरा को सुरक्षित रखने हुए उसे वैज्ञानिक प्रशिक्षण और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि संतुलित फिटनेस किसे कहेंगे। दोस्तों, आज सोशल मीडिया ने फिटनेस को एक प्रदर्शन का रूप भी दे दिया है। युवाओं को यह समझना आवश्यक है कि स्वस्थ शरीर का अर्थ किसी विशेष दिखावट या शरीर के आकार से नहीं है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। फिटनेस का वास्तविक उद्देश्य स्वस्थ रहना, अपनी शारीरिक क्षमता को विकसित करना और आत्मविश्वास के साथ सक्रिय जीवन जीना होना चाहिए। फिटनेस के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ पर्याप्त नींद, पौष्टिक और संतुलित भोजन, पानी का उचित सेवन तथा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। युवाओं को किसी भी प्रकार के अत्यधिक व्यायाम या असुरक्षित तरीके अपनाने के बजाय प्रशिक्षित विशेषज्ञ की सलाह और अपनी क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने आज की बात में बात की युवा और फिटनेस संस्कृति के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा स्पेशल सेगमेंट जो है आज का, वो है फोन करें गीत सुने। तो देखते हैं सबसे पहले किसकी फरमाइश हमें मिली है। हमें मैसेज मिला है, कॉल किया गया है मनीषा राठौड़ी कुआ नागौर से। आप सुनना चाहती हैं फिल्म बॉर्डर का ये प्यारा सा नगमा, संदेशे आते हैं।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: कार्यक्रम युवाणी के अंतर्गत फोन करें, गीत सुने के आए। अंतर्गत हमें फोन किया है रेखा जी ने, डीडवाना बाईपास से। आप सुनना चाहती हैं फिल्म उपकार का, मेरे देश की धरती, ये गाना।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित
4: कार्यक्रम में अगली पसंद है छोटू सिंह की। बासनी चौराहा नागौर से हमें कॉल किया है, फिल्म क्रांति का ये गीत सुनना चाहते हैं।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में

0: रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फोन करें, गीत सुनेगी अगली पसंद। सरस्वती राठौड़ी कुआ नागौर से हमें फोन करती हैं और आप सुनना चाहती हैं फिल्म सुल्तान का जग घूमया थारे जैसा ना कोई, ये गीत।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का ये स्पेशल सेगमेंट फोन करें गीत सुने के साथ ही हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम भी समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से अपने रेडियो दोस्त सोम कविया को दें इजाजत, करते हैं नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ, महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त बबीता सोनी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हर साल 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सेरेब्रल पाल्सी दिवस के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस स्थिति से प्रभावित लोगों की उपलब्धियों और अनुभवों को सम्मान देना तथा उनके लिए एक समावेशी समाज का निर्माण करना है। सेरेब्रल पाल्सी एक स्थिति है जो व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों, मांसपेशियों के नियंत्रण, संतुलन और शारीरिक मुद्रा को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इसका प्रभाव हर व्यक्ति में अलग अलग होता है और उचित सहायता से कई लोग स्वतंत्र और सक्रिय जीवन भी जी सकते हैं। सखियों, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस केवल एक जागरूकता दिवस नहीं, बल्कि ये सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित लोगों, उनके परिवारों, देखभाल करने वालों, डॉक्टरों और सामाजिक संगठनों को एक साथ लाने का वैश्विक अभियान भी है। इसका उद्देश्य समाज में फैली गलत धारणाओं को दूर करना और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, परिवहन, सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगजनों की समान भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की शुरुआत वर्ष 2012 में एक वैश्विक आंदोलन के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना सेरेब्रल पाल्सी अलायंस ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड सेरेब्रल पाल्सी अमेरिका ने मिलकर की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य दुनिया भर में सेरेब्रल पाल्सी के प्रभावित लोगों, उनके परिवारों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों को एक ऐसा मंच प्रदान करना था जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकें और प्रभावित समुदाय के लिए बेहतर सुविधाओं का और तथा समान अधिकारों की मांग कर सकें। सखियों, इस पहल में 100 से अधिक देशों के लोगों और संगठनों ने भाग लिया। धीरे धीरे यह अभियान एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, जिससे सेरेब्रल पाल्सी प्रभावित लोगों को अपने विचार व्यक्त करने और समान

समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। सखियों, अब बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी क्या है। सेरेब्रल पाल्सी जिसे हिंदी में मस्तिष्क पक्षाघात कहा जाता है, ऐसी स्थितियों में ये एक ऐसी स्थितियों का समूह है जो व्यक्ति की गतिविधियां, मांसपेशियों के नियंत्रण, संतुलन और शारीरिक मुद्रा को प्रभावित करता है। ये आमतौर पर मस्तिष्क के उन हिस्सों को असामान्य विकास या क्षति के कारण होती है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। यह स्थिति अधिकतर गर्भावस्था के दौरान या जन्म के आसपास विकासशील मस्तिष्क में होने वाले बदलावों से संबंधित है। कुछ मामलों में जन्म के बाद बचपन के शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क को गंभीर चोट या संक्रमण होने से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी एक आजीवन स्थिति है। यह अपने आप में लगातार बदलने वाली बीमारी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मस्तिष्क में हुई मूल क्षति आमतौर पर आगे नहीं बढ़ती। हालांकि व्यक्ति के बड़े होने के साथ साथ मांसपेशियों की जकड़न, जोड़ों की समस्या या दैनिक गतिविधियों से जुड़ी कठिनाइयां बढ़ भी सकती है। कुछ लोग सेरेब्रल पाल्सी के साथ स्वतंत्र रूप से चलने, पढ़ने, काम करने और सामाजिक जीवन में भाग लेने में सक्षम होते हैं, जबकि कुछ लोगों को चलने, फिरने, बोलने या दैनिक कार्यों के लिए नियमित सहायता की जरूरत होती है। सेरेब्रल पाल्सी व्यक्ति की क्षमता पर डिपेंड करता है। सखियों, हर वर्ष सेरेब्रल पाल्सी की एक विशेष थीम रखी जाती है। साल 2026 की थीम यूनिक और यूनाइटेड, अद्वितीय और एकजुट, जो इस स्थिति के साथ जीने वाले लोगों के विविध अनुभवों का जश्न मनाता है और एक समावेशी दुनिया के लिए सामूहिक ताकत पर जोर देता है। सखियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। अब आपको लिए चलते हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: सखियों, प्रत्येक राष्ट्र या समाज की पहचान वहां पर रह रहे लोगों से की जाती है। ये आवश्यक है कि उस राष्ट्र का हर व्यक्ति जिम्मेदार और अच्छा नागरिक हो। हम एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसे सवालों के आपके पास कई जवाब हो सकते हैं। सखियों, दुनिया में कई देश हैं और सभी देशों के लोग अलग अलग होते हैं। वो सभी उस विशेष राष्ट्र के नागरिक कहलाते हैं जहां वो रहते हैं। वो सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा ही उसकी पहचान उन्हें पहचान मिलती है। राष्ट्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति उसके राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य और दायित्व होते हैं। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर समाज के लिए अच्छे कार्य करने से ही उस राष्ट्र के अच्छे नागरिक के रूप में उसे पहचान मिलती है। सखियों, दुनिया में किसी भी देश का नागरिक उस राष्ट्र की असली संपत्ति होता है। प्रजातांत्रिक देशों में प्रत्येक नागरिक को समान महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम अपने भारत की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए प्रत्येक नागरिक अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक नागरिक के रूप में प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक राष्ट्र के प्रति कुछ दायित्व होते हैं। ऐसा नागरिक जो देश के लोगों के हित में उनकी सेवा के लिए कार्य करता है और जीवन में हर नियमों और कानूनों का भी पालन करता है, ऐसे व्यक्ति को एक अच्छे नागरिक के रूप में माना जाता है। दुनिया का हर व्यक्ति अपने देश का नागरिक होता है, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अच्छे कर्म और समाज के प्रति अपने अधिकारों की परवाह करने की भी आवश्यकता होती है। सखियों, जो लोग अपने कर्मों से अच्छे होते हैं वह व्यक्ति एक अच्छा नागरिक होता है। जो व्यक्ति एक अच्छा समाज और राष्ट्र बनाने में अपना पूर्णतया योगदान भी देता है उसे देश का अच्छा नागरिक कहा जाता है। एक अच्छे नागरिक में कुछ महत्वपूर्ण गुण भी होते हैं, जैसे कि अधिकार और स्वतंत्रता का समझदारी से पालन करना। राष्ट्र के नागरिक के रूप में हर किसी को अपनी स्वतंत्रता और उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जन्म के साथ ही हमें देश के नागरिकता के रूप में प्राप्त होते हैं जो हमारे राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए होते हैं। एक अच्छे नागरिक को अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की सीमा समझनी चाहिए, कभी भी इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रति सम्मान भाव का भावना होनी चाहिए। एक अच्छे नागरिक के में समाज के हर व्यक्ति के लिए सम्मान होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो। उसे समाज के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए और अपने कठिन समय में उनकी मदद भी लेनी चाहिए। उसे सबके प्रति विनम्र भाव रखना चाहिए। उन्हें अपने ताकतवर होने या किसी वजह के कारण भी कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, इसलिए एक अच्छे नागरिक के तौर पर समाज के हर सांस्कृतिक धर्म और उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके कारण कोई भी हिंसा हो या किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचे। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। हम जिस भी राष्ट्र में पैदा हुए हैं हम उस राष्ट्र के नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। किसी भी राष्ट्र के नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वहां के जरूरतमंद नागरिकों की मदद करें, अपने स्तर पर करें। जब हम दूसरों की जरूरत में मदद करते हैं तो वो सभी हमारी जरूरतों में मिलकर हमारी मदद करते हैं। ये हमें समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में पहचान दिलाता है। सखियों, स्वस्थ राजनीति में भाग लें। एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें देश में चुनाव के दौरान वोट जरूर देना चाहिए। हमारे लोकतंत्र के लिए एक एक वोट बहुत कीमती होता है। ये हर एक व्यक्ति और विचारों को भी दर्शाती है। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व उनके नागरिकों के कारण ही होता है, इसलिए एक अच्छे नागरिक का ये दायित्व होता है कि वह देश की राजनीति, सामाजिक और न्यायिक गतिविधियों में भाग ले। एक नागरिक किसी भी विशेष पार्टी, लोगों के समूह का समर्थन करने के लिए वोट नहीं करता, बल्कि वो पूरे देश और देश के लोगों के कल्याण के लिए अपना वोट देता है। और सखियों, एक अच्छे नागरिक को राष्ट्र द्वारा बनाए गए सभी नियमों और विनियमों का सही ढंग से पालन करना चाहिए। उसे किसी भी नियम और कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए या उसके विरुद्ध जाकर कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। उसे राष्ट्र के न्यायपालिका और कानून के महत्व को समझना चाहिए। अपने टैक्स इत्यादि का भुगतान अवश्य ही करना चाहिए। उसे किसी भी अपराध या अन्याय के खिलाफ न्याय पाने के लिए न्याय प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करना चाहिए। सखियों, एक अच्छा और सच्चा नागरिक वही होता है जो हमेशा देश की भलाई के बारे में सोचे। उसे बेकार की गतिविधियों में लिप्त होने के बजाय कुछ नए विचारों और तरीकों के बारे में सोचना चाहिए जिससे राष्ट्र के लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। उसे लोगों में जागरूकता लाने और अभियानों के जरिए लोगों के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक अच्छे नागरिक के तौर पर लोगों को शिक्षा के महत्व और उनके कार्यों को समझाना भी चाहिए। तो सखियों, हम बात कर रहे थे एक अच्छे और सभ्य नागरिक कैसे बने उसके बारे में। बातें तो यूं ही आगे चलती रहेगी। अब आपको लिए चलते हैं हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सखियों, अपना बच्चा खोने के बाद आपको दुख, डिप्रेशन और गुस्सा महसूस हो सकता है। इस समय आपको ऐठन और दर्द भी होता है, वहीं कई महिलाएं तो डिप्रेशन तक में चली जाती है। कुछ महिलाएं इस बात को लेकर भी डरी रहती है कि अब वो आगे कैसे प्रेग्नेंट होगी। गर्भपात के बाद इस तरह की फील होना नॉर्मल बात है, लेकिन आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा होना आपकी गलती नहीं है। अब आपको अपने शरीर को पहले से ज़्यादा स्ट्रांग करना है ताकि आगे आपको प्रेगनेंसी या कंसीव करने में कोई परेशानी नहीं आए। उचित देखभाल से काफ़ी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। सखियों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा और संतुलित आहार लें। आहार में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सूखे मेवे, अदरक, तिल और दूध को शामिल करें। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड,

हो सकती है, इसलिए कब्ज से बचने और हाइड्रेट रहने के लिए गर्म पानी पिए, बॉडी मसाज करवाएं। शरीर की आरामदेह मालिश एक अच्छा विकल्प है। आखिरकार आप इतने दर्द से गुजरी हैं और आपको शांत और तनाव मुक्त रहने की जरूरत है। सखियों, मालिश सुखदायक हो सकती है। सरसों या तिल के तेल का प्रयोग गर्भपात के बाद होने वाले दर्द या ऐठन को कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए दर्द को कम करने और शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए विशेष रूप से अपने पैरों और हथेलियों की मालिश करें। हॉट कंप्रेशन कर सकता है आपकी मदद। गर्भपात के बाद आपको ऐंठन और दर्द होता है, इसलिए गर्म पानी का बैग दर्द कम कर सकता है। इससे आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। सखियों, इसी के साथ गर्भपात के बाद तुरंत बाद गर्भधारण से बचें और अपना मेडिकल चेकअप नहीं छोड़ें। आपका गर्भपात हो चुका है तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने चिकित्सक को शरीर में किसी भी असामान्य परिवर्तन की रिपोर्ट करें, जैसे खून की कमी, चक्कर आना, मतली महसूस करना या उल्टी हो सकती है। विशेषज्ञ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें जिससे आप जल्दी ठीक हो सके। सखियों, अब आपको लिए चलते हैं हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

अभी आप सुन रहे थे महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले फौरन रोकने की भी अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
2: कांग्रेस के

0: प्रथम परिवार जिसने पिछली चार पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
1: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म सड़क के इस गाने के साथ, जिसमें आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पाकीज़ा से अगला गीत, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम और साथियों की। इस गीत को लिखा है कैफ भोपाली ने और संगीत से सजाया है गुलाम मोहम्मद ने।

खून की धारा।

इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चेयरमैन चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे बीना कुमावत को।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

अभी आप बीना कुमावत को सुन रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का माटी का स्वर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: और अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। छोटे और मझोले उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड भी स्वीकृत। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। जैसलमेर, बीकानेर और सलोम्बर जिलों की कुछ पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उर्वरकों के वितरण की सुचारू और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जयपुर में संपन्न। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती जीडीपी और परिवहन आवश्यकताओं को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए एक नई शीर्ष संस्था ITLA की स्थापना की जाएगी। ये प्राधिकरण सड़क, रेल, बंदरगाह, नागरिक उड्डयन और जलमार्गों के विकास के लिए लंबी अवधि की एकीकृत योजनाएं तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये फंड एमएसएमई को विस्तार के लिए इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगा। ये फंड सेवा, प्रौद्योगिकी, नवाचार आधारित क्षेत्रों और रणनीतिक मूल्य श्रृंखला से जुड़े उद्यमों को भी सहयोग देगा।
1: 10,000 करोड़ रुपीज का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करना ये इस ग्रोथ फंड का मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रोफेशनली मैनेज होगा, जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल हो जिन एमएसएमईज में, उन एमएसएमईज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस इंडस्ट्री बॉडीज प्लस बैंक्स, इन सब का इनपुट लेके एमएसएमई ग्रोथ फंड को संचालित किया जाएगा, इसको फंक्शनल किया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा काल के 25 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर उन्हें बधाई दी। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। वे वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। सरकार के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के 25 साल कल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में कल से सेवा सेतु अभियान के तहत विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर 16 अक्टूबर तक चलेंगे। इन जोनवार और वार्डवार शिविरों के माध्यम से नागरिकों के लंबित कामों का समाधान किया जाएगा। भारत ओडीओपी संगम कल से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक

0: व्यापार विभाग DPIIT की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम 11 अक्टूबर तक भारत मंडपम में होगा। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और सह विक्रय कार्यक्रम में देश भर की 600 से ज्यादा इकाइयां और प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों के 38 ODOP उद्यम अपने विशिष्ट उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इनमें रत्नाभूषण, मार्बल, हस्तशिल्प, वस्त्र और परिधान शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार पहले, दूसरे और तीसरे चरण की मतदान प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। चौथे चरण के चुनाव का शेड्यूल यथावत रखा गया है। इन तीनों चरणों की मतदान प्रक्रिया को एक एक दिन पहले करना तय किया गया है, यानी पोलिंग पार्टियों के रवाना होने, मतदान केंद्र तक पहुंचने और नामांकन दाखिल करने तथा मतदान के कार्य पूर्व निर्धारित दिन से एक दिन पहले होंगे। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर और सलूम्बर जिलों की चुनिंदा पंचायत समितियों के विभिन्न चरणों की समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि 6 नवंबर को धनतेरस पर्व होने के कारण जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक अपने अपने क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। इसके अलावा दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी सुगम मतदान के इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर निगरानी की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने किसानों की मांग के अनुसार DAP और यूरिया का सुचारू और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने को कहा है। वे आगामी रबी सीजन 2026-2027 के लिए आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स की बैठक में बोल रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि रबी बुआई के समय में प्रदेश में खाद की किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी और आपूर्तिकर्ता कंपनियां आपसी समन्वय से काम करें। बैठक में कृषि और उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि प्रदेश में उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यूरिया का 373,000 मीट्रिक टन और DAP का 1,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का भंडार है। साथ ही प्रदेश में 744 उर्वरक निरीक्षकों के माध्यम से खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और दक्षिण पश्चिम कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज राज्य युद्ध पुस्तक और नागरिक सैन्य समन्वय समिति की भी बैठक हुई। इसमें राज्य की सुरक्षा तैयारियों, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक मुस्तैदी को बनाए रखने के लिए नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य युद्ध पुस्तक को अपडेट करने और रक्षा भूमि मामलों के जल्द निपटारे पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सेना के अधिकारियों ने ड्रोन, जैमर और काउंटर ड्रोन प्रणाली का प्रदर्शन किया। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से होने वाली अवैध गतिविधियों और तस्करी की रोकथाम के लिए इस प्रणाली का उपयोग करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में इस क्षेत्र में शांति, विकास और संपर्क व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आया है। एक रिपोर्ट।
1: अष्टलक्ष्मी राज्यों यानी पूर्वोत्तर भारत में पिछले 12 सालों में सड़क, रेल और हवाई यातायात के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। वहीं बीते 12 सालों में 12 से ज्यादा शांति समझौतों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे विवादों का समाधान हुआ है। 10,800 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा का रास्ता अपनाया है। उग्रवाद में कमी आने से नागरिक हताहतों की

0: संख्या में भी 86% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उत्तर पूर्व क्षेत्र में विकास और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट की नीति के माध्यम से पूर्वोत्तर को व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन, कृषि और बागवानी, डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भरता, आर्थिक गलियारे के विकास, खेल तथा हस्तशिल्प प्रोत्साहन के माध्यम से पूर्वोत्तर को देश का प्रमुख विकास इंजन बनाया जा रहा है। समाचार कक्ष से सलेहा गाजी।
1: वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये अदालत लगाई जाएगी। इसमें समझौता योग्य दीवानी और फौजदारी मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जाएगा। इनमें बैंक धन वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम मामले, ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद और अन्य संबंधित विवादों का निस्तारण किया जाएगा। लंबित मामलों की संख्या कम करने और विवादों के जल्द समाधान के लिए लोक अदालत लगाई जा रही है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के कारण इसके आयोजन की तारीख 12 सितंबर से बदलकर 10 अक्टूबर की गई है। 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आज जयपुर में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में देश भर से आए युवाओं ने हिस्सा लिया। समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज योग को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में दुनिया भर में नई पहचान और मान्यता मिली है। योग शारीरिक व्यायाम के साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर और जीवन पद्धति भी है।
2: हमारे छोटे से छोटे बच्चे और युवा योग को केवल एक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतियोगिता के रूप में भी अपना रहे हैं। योग हमारी प्राचीन संस्कृति और ऋषियों की वह अनमोल धरोहर है जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ, संयमित और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाई है। इस प्रतियोगिता में इन बच्चों की एकाग्रता, अनुशासन और कौशल इस बात का प्रमाण है कि हमारी आने वाली पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी सशक्त हो रही है।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का आज से आगाज हो रहा है। पहला मैच लखनऊ में खेला जाएगा। एकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। छोटे और मझोले उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड भी स्वीकृत। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। जैसलमेर, बीकानेर और सलुम्बर जिलों की कुछ पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उर्वरकों के वितरण की सुचारू और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जयपुर में संपन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आकाशवाणी जयपुर समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। जिले में पिछले दिनों नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हुए। कम बारिश के कारण बीसलपुर बांध में पानी की आवक और खरीफ फसलों की स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स कार्यशाला और प्रबल कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व में देश विदेश के कलाकारों ने भाग लिया। नगर निकाय चुनाव के तहत जिले की 10 नगर निकायों में मतगणना पूरी कर परिणाम घोषित किए गए। 7 निकायों में भाजपा और 3 में कांग्रेस के अधिक पार्षद चुने गए। टोंक नगर परिषद के 59 वार्डों में कांग्रेस के 32, भाजपा के 19 और निर्दलीय प्रत्याशी 8 वार्डों में विजयी रहे। मालपुरा में भाजपा के 22, कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 12 प्रत्याशी जीते। डिग्गी में भाजपा के 14, कांग्रेस के 10 प्रत्याशी विजयी रहे। लांबा हरी सिंह में भाजपा की 11, कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 3 प्रत्याशी जीते। निवाई में कांग्रेस के 9, भाजपा के 18 और निर्दलीय 3 प्रत्याशी विजयी रहे। पीपलू में भाजपा के 10, कांग्रेस के साथ निर्दलीय तीन प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। टोडा राय सिंह में भाजपा के

0: 28 और कांग्रेस के 7 प्रत्याशी जीते। देवली में भाजपा के 17, कांग्रेस के 8 और निर्दलीय 10 प्रत्याशी विजयी रहे। दूनी में भाजपा के 12, कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 2 प्रत्याशी तथा उनियारा में कांग्रेस की 11, भाजपा के 5 और 4 निर्दलीय प्रत्याशी जीते। जिले में इस बार कम बारिश के कारण बीसलपुर बांध पूरा नहीं भरा है। 15 जून से पहले अब तक जिले में 443.30 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मॉनसून से पहले बांध में 313.49 आरएल मीटर पानी था, जो बढ़कर सिर्फ 313.95 आरएल मीटर हुआ है। बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। बीसलपुर बांध से टोंक के अलावा जयपुर और अजमेर को भी पेयजल मिलता है। बांध में पर्याप्त पानी नहीं आने से आने वाले वक्त में पेयजल व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी कम रह सकती है। जिले में कम बारिश के कारण खरीफ की फसलों पर भी असर पड़ा है। पानी की बचत और जल स्रोतों की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत बताई जा रही है। टोंक में 20वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व क्रेयोंस का आयोजन हुआ। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में रूस और नेपाल सहित देश के 18 राज्यों से करीब 250 चित्रकार और मूर्तिकार शामिल हुए। कलाकारों ने चित्र और मूर्तियों के माध्यम से अपनी कला प्रस्तुत की। समापन समारोह में विभिन्न वर्गों के कलाकारों को कला रत्न सम्मान दिए गए। स्वतंत्र चित्रकार, मूर्तिकार और विद्यार्थी वर्ग की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए। निवाई के रीको औद्योगिक क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम ने एक ऐसी इकाई पकड़ी जहां अलग अलग कंपनियों के नाम और डिजाइन वाली घी की पैकेजिंग तैयार की जा रही थी। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इकाई से कई कंपनियों के 1.5 लाख से अधिक नकली रैपर बरामद किए गए। करीब 20,000 टीन और पीपे भी मिले। इसके अलावा पैकिंग मशीनें, कलर फ्रेम और डाई भी बरामद की गई। पुलिस ने 1 लाख रुपए नकद और एक कार भी जब्त की। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठी नाथमाम में ब्लॉक स्तरीय प्रबल कार्यक्रम हुआ। टोंक ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के 60 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। विद्यार्थियों ने 21वीं सदी के कौशल विकास से जुड़ी 14 गतिविधियों में प्रस्तुतियां दी। बालक वर्ग में अरनिया केदार विद्यालय के आनंद टाटावत और बालिका वर्ग में कोठी नाथमाम विद्यालय की फिजा पहले स्थान पर रही। देवली के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में इनोवेशन विथ रोबोटिक्स विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। विद्यार्थियों को रोबोटिक्स और नई तकनीक से जुड़े प्रयोग कराए गए। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को समस्याओं के समाधान खोजने और नए विचारों पर काम करने के बारे में बताया। राज्य के 639 पीएम श्री विद्यालयों की बाल वाटिकाओं में साल में 2 बार ECCE डे यानी बाल मेला आयोजित किए जाएंगे। इनमें टोंक जिले के 16 विद्यालय शामिल हैं। मेलों में बच्चों के लिए खेल, रचनात्मक गतिविधियां और सीखने से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इसी के साथ टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण बनावंडरी मंजूरी दीनी। नाना और मझला कारोबार रा विकास सारू 10,000 करोड़ रुपया रो ग्रोथ फंड ही मंजूर करीचियो। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज चुनाव रो नुओ कार्यक्रम जारी कीनो। जैसलमेर, बीकानेर और सलूम्बर जिला रे कुछ पंचायत समितियां रा चुनाव कार्यक्रम माए बदलाव। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास खाद मुहैया करावन री साफ कोई सागर व्यवस्था तय करण रा हुक्म दीना। और 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जयपुर माए पूरी भी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण बनावन री मंजूरी दीनी है। आज नई दिल्ली में भी कैबिनेट री मीटिंग पाछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे कहो कि देश री बढ़ती जीडीपी और परिवहन जरूरतान ने व्यवस्थित तरीकाओं पूरी करण सारू नवी संस्था ITLA बनाई जावेला। उपराधिकरण सड़क, रेल, बंदरगाह, नागरिक उड्डयन और जल मार्गों का विकास सारू लंबी मियादरी एकीकृत योजनावां बनावेला।

0: 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करना ये इस ग्रोथ फंड का मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रोफेशनली मैनेज होगा, जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल हो जिन एमएसएमईज में, उन एमएसएमईज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस इंडस्ट्री बॉडीज प्लस बैंक्स, इन सब का इनपुट लेके एमएसएमई ग्रोथ फंड को संचालित किया जाएगा, इसको फंक्शनल किया जाएगा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल नाना और मझला उद्यम इक्विटी निवेश सारो 10,000 करोड़ रुपया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड बनावन री मंजूरी दीनी। श्री वैष्णव बतायो कि वो फंड एमएसएमई रो कारोबार बधावन सारो पूंजी मुहैया करावेला। ये फंड रे जरिए सेवा प्रौद्योगिकी नवाचार आधारित हलका और रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं जुड़िया कारोबार में आई मदद दी जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जनतारी सेवा करता 25 साल पूरा फेवन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रस्ताव पास कर अरवान बधाई दीनी है। श्री मोदी 7 अक्टूबर 2001 ने पहली दफा गुजरात रा मुख्यमंत्री बनिया है। वह साल 2014 में देश रा प्रधानमंत्री बनिया। ई भांत सरकार रा मुखिया रा तौरों वारा कामकाज रा काल 25 साल पूरा फेर रिया है। इस सिलसिला में राज्य में काल 16 अक्टूबर ताई सेवा सेतु अभियान रा तहत खास शिविर लगाया जावेला। आ जोन वार और वार्ड वार शिविरा में जनता रा न्यारा न्यारा काम निपटाया जावेला। भारत ओडीओपी संगम काल नई दिल्ली में शुरू भेला। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT रियो रून लगाई इनमें देश भर री 632 इकाइयां और प्रदर्शक शामिल फैला। नुमाइश में प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला रा हीरा जवाहरात गहना मार्बल भाटा हाथ री कारीगरी बनिया सामान और कपड़ा लत्ता समेत 38 ODOP उद्यम वाना सामान रो दर्शाव करेला। राज्य निर्वाचन आयोग आवता पंचायती राज चुनाव रा कार्यक्रम माय फेरबदल किन्नो है। नुआ कार्यक्रम रे मुजब पहला दूजा और तीजा दौर री मतदान प्रक्रिया माय बदलाव करी जियो है, जबकि चौथा दौर रा चुनाव कार्यक्रम माय कोई बदलाव नहीं करी जियो है। पहला तीन दौर री मतदान प्रक्रिया एक एक दिन पहली करनु तय करी जियो है, जिणु पोलिंग पार्टियां ने रवाना भेवन मतदान केंद्र तई पूगण और वोट देवन रा काम पहली तय करी जी तारीख हूँ एक दिन पहली वेला। जैसलमेर बीकानेर और सलूमर जिला में कुछ पंचायत समितियां माए फेवन वाला न्यारा न्यारा दौर रा चुनाव रा कार्यक्रम माए बदलाव करी चियो है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो कि 6 नवंबर ने धनतेरस रो त्योहार भेवन जनता री भावनावा न ध्यान रखता थका वो फैसलो करी चियो। इ बीचे पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव शांति सग निपक्ष तरीकाओं करावन सारू सगला जरूरी इंतजाम करिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी और SP आप आपरा हलका रा संवेदनशील और घना संवेदनशील मतदान केंद्रा रो दौरो कर और व्यवस्थावां रो जायजो ले रहा है। मतदान केंद्रा माथे दिव्यांगजन और बुजुर्ग मतदातावां सारोई खास व्यवस्थावां करी जा रही है। इस आगे चुनाव आदर्श आचार संहिता री पालना करावन बाबत ही निगरानी करी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास किसाना कान्यू मांग रहे मुजब DAP और यूरिया खाद साफ गोई सागे बांटनु तय करण बाबत कहो है। वह रबी सीजन 2026-27 रे बारा माए आज जयपुर माए राखी जी राज्य स्तर री फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स री मीटिंग माए बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो कि सियाणु साखा री बुआई री बगत राज्य में खाद री कमी नहीं भेवनी चाहिए। वह एड़ो तय करण सारू सगला संबंधित अहलकारा और खाद री पूर्ति करण वाली कंपनियां बीच जरूरी तालमेल रखन बाबत ही कहो। मीटिंग में कृषि और उद्यानिकी विभाग री प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल बतायो कि प्रदेश में 3,73,000 मीट्रिक टन यूरिया और 1,00,000 मीट्रिक टन उबत्तो DAP खाद रो भंडार है। मुख्य सचिव

0: தஸ்கரி ரி ரோக்தாம் சரோய் சிஸ்டம் ந காம்லிவன் ரி ராய் தீனி. राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज जयपुर में राष्ट्रीय इंडियन हेयर एंड ब्यूटी कॉन्फ्रेंस रो उद्घाटन कीनो. इ मौके वे इंसान ने रूपाला बतावण रा कारोबार बत्तों बत्ता नौजवाना ने जोड़बा सारू कहो. राज्यपाल कहो कहीं रहतेत मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल और उद्यमिता विकास ने बधावो दियो जावणो चाहिए. श्री बागड़े सौंदर्य प्रसाधन और सैलून कारोबार में देशी बाजार री जरूरत र मुजब विकास री संभावनाओं जुड़िया काम करण री जरूरत बताई. वे कहो कि सौंदर्य हलको आयुर्वेद री भारत री संस्कृति हुई विकसित फियो है. 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आज जयपुर में पूरी हुई. इरा समापन जलसा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि योग न एक खेल होड़ रात दौर दुनिया में नुवी पिछाण मिली है. वह कहो कि योग शरीर री कसरत सागे भारत री संस्कृति री जूनी अनमोल धरोहर और जीवन रो तरीको ही है.
1: हमारे छोटे से छोटे बच्चे और युवा योग को केवल एक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतियोगिता के रूप में भी अपना रहे हैं. योग हमारी प्राचीन संस्कृति और ऋषियों की वह अनमोल धरोहर है जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ संयमित और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाई है. इस प्रतियोगिता में इन बच्चों की एकाग्रता अनुशासन और कौशल इस बात का प्रमाण है कि हमारी आने वाली पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी सशक्त हो रही है.
0: ई साल री तीजी राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अक्टूबर न लगाई जावेला. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर लगाई जावन वाली ई लोक अदालत में समझौता लायक दीवानी और फौजदारी मामला ने आपसी सहमति निपटाया जावेला. लोक अदालत में बैंक धन वसूली मोटर दुर्घटना दावा मामला ट्रैफिक चालान मजूरी जुड़िया झगड़ा टंटा और दूजा मामला रो निपटारो करो जावेला. पहली आ लोक अदालत 12 सितंबर न लगाई जावनी ही पर प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव रे कारण लोक अदालत 10 अक्टूबर न लगाई जावेला. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 3 नुवी रेलगाड़ियां चलावन री मंजूरी दीनी है. आम आए भुज बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस वाया कोटा सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी और भरतपुर हरिद्वार ओखा एक्सप्रेस वाया अलवर जयपुर अजमेर आबू रोड और हरिद्वार वेरावल एक्सप्रेस वाया अलवर जयपुर अजमेर और आबू रोड गाड़ियां शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में देश रा उत्तर पूर्वी राज्य में सगला रा विकास ने बधावो दियो जा रियो है. लाडला 12 साल में ई हलका में शांति विकास और संपर्क व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव नजर आवन लग्यो है. पेश है एक रिपोर्ट.
2: अष्टलक्ष्मी राज्यों यानी पूर्वोत्तर भारत में पिछले 12 सालों में सड़क रेल और हवाई यातायात के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व क्रांतिकारी बदलाव आए हैं. वहीं बीते 12 सालों में 12 से ज्यादा शांति समझौतों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे विवादों का समाधान हुआ है. 10,800 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा का रास्ता अपनाया है. उग्रवाद में कमी आने से नागरिक हताहतों की संख्या में भी 86% की गिरावट दर्ज की गई है जिससे उत्तर पूर्व क्षेत्र में विकास और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है. एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट की नीति के माध्यम से पूर्वोत्तर को व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके अलावा पर्यटन कृषि और बागवानी डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भरता आर्थिक गलियारे के विकास खेल तथा हस्तशिल्प प्रोत्साहन के माध्यम से पूर्वोत्तर को देश का प्रमुख विकास इंजन बनाया जा रहा है. समाचार कक्ष से
0: सालेहा गाजी. भारत और वेस्ट इंडीज बीच 5 T20 क्रिकेट मुकाबला री सीरीज रो पहलो मैच आज लखनऊ रा इकाना स्टेडियम में खेलो जावेला. वो मुकाबलो अब थोड़ी देर पछे 7 बजे शुरू फैला. आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो. केंद्रीय नाना और मझला कारोबार रा विकास सारू 10,000 करोड़ रुपया रो ग्रोथ फंड ही मंजूर करी चियो. राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज चुनाव रो नुवो कार्यक्रम जारी कीनो. जैसलमेर बीकानेर और सलूम्बर जिला ने कुछ पंचायत समितियां रा चुनाव कार्यक्रम में बदलाव. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास खाद मुहैया करावन री साफ कोई सागर व्यवस्था तय करन रा हुकम

0: बिना और 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जयपुर मायपुरी भी इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो चावेला नमस्कार
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। शाम के 7 बजे हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
7: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
6: वो कैसे?
7: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
6: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
8: किसान वाणी सुन बड़ा सब काश्तकार भाई लोगों ने, महेश भाई को राम राम और विशाल भाई आपने भी राम राम।
9: हाँ राम राम महेश भाई और सगला किसान भयान घना घना राम राम सा नून प्रणाम।
8: देखो विशाल भाई, आपने जगह किसान भाई ही वह देखो फसल निकाल ली, अनाज दाने ने साफ सुथरो कर लियो, ठीक है, भेड़ो कर लियो और बोरिया कमाए भर भी लियो, तो उपज को जो अपना किसान भाई ने चोखो मूल्य मिल जावे, इसके लिए कुछ जरूरी बात भी हो तो कोई दो चार काम की बात बताओ।
9: देखो सा, आपने जो कटाई पहली कटाई जो थे बता रहे हो, कटाई तो कर ली और बोरियां भी भर ली, तो अब अपन कहीं जो दाणन छाण साफ कर और बिन सुकार बोरियां भर मंडी में लेर जानू है, जिसू आपने किसान भैया ने चौक की भी का दाम मिल सी।
8: और जगह गोदाम ही बाकी साफ सफाई करनी है, जैसे अपन ने अपनो अनाज दाना रखना है, दरार ने बंद करके 50 मिली लीटर जबकि 50 मिली महिला थियान 50 इसी दवाई को 10 लीटर पानी में घोल मिला के दीवार पर आप छिड़काव कर सका। मसाला फसल की बात करा तो खलियान का माए फसल ने आप पॉलीथीन शीट या पक्का फर्श पर सुखा कर बिकी गहाई कर दिया, और उपज ने 2 से 3 दिन छाया में सुखाने के बाद में फिर जगह बार आप देख रहे हैं तेज तावड़ो पड़ रहे है, तो तेज धूप कमाए सुखावा और बिना पलटता भी रहेगा।
9: देखो सा, धूप में सुखाणु जहाँ कोई भी मगर जीवाणु विषाणु जो भी हुए वे भी नष्ट हो जावे, और देखो सा भंडारण के दौरान अपन कीटनाशक का उपयोग अपन बचनु है, और स्वच्छ हवादार और नमी रहित भंडार गृह में अपन भंडारित करनु है, क्योंकि अगर नमी रह वाली तो अपनी जगह मसाला फसल

0: जो है वह अपना खराब भी हो सके है। हैर बोरिया के जगह लकड़ी का फंटा है या फिर पॉलीथीन सीट बिछार दीवारों 1 फीट दूर पर रखकर बाको भंडारण करना है।
1: बिल्कुल, नमी भी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए और ठीक प्रकार से आप भंडार गृह में अपना जो को अनाज है अपनी फसल है बिन्ने सुरक्षित रख देवा। तो विशाल भाई, जो फिर जब बाजार में चोका भाव हुए मंडी का, आजकल अपना किसान भाई ऑनलाइन भाव भी देख सकें, तो भी टाइम अपनी उपज ने किसान भाई बेच दी।
0: जी
1: फल सब्जी की जब बेचान की बात आवे तो कुछ जरूरी बातें हैं कि भी कटाई और तुड़ाई से ठीक पहले अपने भारी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। कीट रोग नियंत्रण के लिए जो को जैविक कीटनाशी है भी कोई उपयोग करना चाहिए।
0: और देखो साहब, बाजार मांग के अनुसार ही फल सब्जियां की तुड़ाई पकना से पहला करनू चीज है। और फल सब्जियां ने साफ पानी धोर रंग और आकार के अनुसार ही ग्रेडिंग कर बाजार में अगर बेची अगर अपना किसान भाई तो बाने बाको उचित मूल्य मिलसी। हैर अपने रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव पहला तैयार फल सब्जियां भी तोड़ लेनु है। ए किसान
1: हाँ
0: भाई अगर अपनी अगर बात ध्यान रख ला तो फिर बाने उचित मूल्य जरूर मिलसी।
1: बिल्कुल, फल सब्जी की तुड़ाई पहली कर लेनी चाहिए कि बाबा काल आपा स्प्रे कर रहे हैं कुछ छिड़काव कर रहे हैं, तो पहली फल सब्जी ने तोड़ लेवा ताकि भी पर दुष्प्रभाव न हो। और परिवहन की भी बात है कि फल सब्जी ने तुड़ाई कर ली आपा ग्रेडिंग कर ली तो टेम से जो कहे बाजार कमाए पहुंचा देवा ताकि आप मैंने चोखा दो पिसा मिल जाए, उपज को सही मूल्य मिल जाए। विशाल भाई, थोड़ा सा आपा देखो जागरूक रहवा तो अपनी जो फसल है बिको चोको अपने मूल्य मिल जाए किसान भाई ने।
0: आ
1: और
0: बात तो सही है। और देखो सा, अब आपने डॉक्टर श्री राम करीर जी से आपा जानकारी लेशा रोगा सु बचाव हेतु पशुओं की देखभाल
1: बहुत ही काम की जानकारी है तो किसान भाई ने आपा दिलवाया जानकारी।
0: लियो सा।
2: कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर विषय विशेषज्ञों को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और उनसे ली हुई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीराम करीर। आप पशु चिकित्सा अधिकारी संयुक्त कार्यालय सीकर में पदस्थ हैं और आज हमें बताने वाले हैं पशुओं में रोगों से बचाव के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो हमारे घरेलू पशु हैं, दुधारू पशु हैं, ये जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं, उनको रोगों से कैसे बचाया जा सकता है, क्यों आवश्यक है रोगों से बचा के रखना?
3: जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि अपने जो किसान भाई है पशुओं को पालते हैं तो उनको रोगों से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि जो पशु है वो हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ साथ हमारी आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन है।
2: जी जी
3: जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी हो गई, भेड़ है, इन सबसे क्या है, हमें दूध तो मिलता है, साथ में ऊन भी मिलती है, मांस भी मिलता है और भी अनेक अनेक टाइप के उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं इनसे। इसलिए पशुओं का स्वस्थ रहना न केवल पशुओं के लिए बल्कि पशुपालक परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत जरूरी है।
2: जी जी
3: अक्सर क्या होता है कि पशुपालक भाई बीमारी होने के बाद में उपचार पर ध्यान देते हैं, जबकि यदि हम बीमारी से पहले ही बचाव के उपाय कर ले तो पशुओं को बीमारी से बचाया जा सकता है, उपचार का खर्च भी कम किया जा सकता है और उत्पादन में होने वाली कमी से भी बचा जा सकता है।
2: तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या ऐसे ध्यान रखें कि हमारे जो पशु हैं, घरेलू पशु हैं, दुधारू पशु हैं, वो बीमारी ना पड़े?
3: जी देखिए, जैसे कुछ बातें हैं जिनका पशुपालक भाइयों और किसान भाइयों को जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। जैसा पहला है कि पशुओं का नियमित रूप से उनको टीकाकरण करवाना चाहिए।
2: जी, जी।
3: दूसरी बात है कि उनका जो आवास है उसका अच्छे से प्रबंधन होना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से। तीसरा है उनको जो उनको खाना दिया जाता है वो संतुलित आहार के रूप में दिया जाना चाहिए। एक है उनके जो बाहरी और आंतरिक जो परजीवी रहते हैं जो कि सामान्यतः हर पशु पर रहते हैं तो उनको बचाव बहुत जरूरी है।
2: जी आपने क्रमवार बताया कि टीकाकरण, उनका आवास प्रबंधन और उनको संतुलित आहार, साथ ही परजीवी का भी उसमें नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। एक एक कर हम जानना चाहेंगे आपसे कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है और किन पशुओं में किस तरह से टीकाकरण होता है?
3: जी देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बीमारी से जो बचाव है वो उपचार से बेहतर होता है, तो जो टीके पशु को लगाए जाते हैं वो पशु को बीमारियों से बचाव ही करते हैं।
2: जी जी
3: देखिए, इसके लिए क्या है कि गाय भैंस जो होती है पहला टीका

0: हो गया गलगोटू रोग के लिए, जिसको HSV बोलते हैं।
1: जी
0: ये टीका क्या है, साल में एक बार लगता है और मानसून स्टार्ट होने से जस्ट पहले लगता है।
1: जी
0: दूसरा है लंगड़ी बुखार, या
1: जी
0: इसको ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं।
1: जी
0: ये टीका भी साल में एक बार लगता है और मानसून शुरू होने से पहले लगता है। तीसरी बीमारी है खुरपका और मुंह पका बीमारी,
1: जी
0: इसको FMD भी बोलते हैं।
1: जी
0: ये इसका टीका जो है साल में दो बार लगेगा। कब कब लगेगा? एक तो मानसून शुरू होने से पहले लगेगा,
1: जी
0: और एक जब सर्दियां होती है, दिसंबर जनवरी का
1: जी
0: महीना होता है, उस
1: जी
0: समय लगता है।
1: जी
0: चौथा रोग है गिल्टी रोग,
1: जी
0: जिसको एंथ्रेक्स भी बोलते हैं। इसमें इसका टीका साल में एक बार लगता है और ये मानसून जब शुरू होता है उससे पहले लग जाता है।
1: जी
0: एक पांचवी बीमारी है ब्रुसेलोसिस, उसके लिए भी पांचवा टीका लगता है। वो जीवन में कभी भी लगवा सकते हैं, एक बार लगता है और किसी भी समय उसको लगवा सकते हैं।
1: जी तो ये टीकाकरण है, जैसे कुछ टीके ऐसे हैं जो कि साल में दो बार लगाए जाते हैं, कुछ टीके साल में एक बार, और कुछ जिंदगी में एक बार लगाए जाते
0: जी
1: हैं
0: जी
1: पशुओं की।
0: बिल्कुल
1: तो इनका समय समय पर टीकाकरण जो हम करवाते हैं,
0: जी
1: यदि कभी किसी कारण से किसी समय में चूक जाते हैं टीका देने से, तो
0: जी
1: क्या समय निकलने के बाद भी वो टीकाकरण हो सकता
0: जी देखिए, किसान भाई को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए,
1: है?
0: यदि यह वह टीका लगवाने से चूक गए हैं तो पशु चिकित्सक से तुरंत परामर्श लेनी चाहिए।
1: जी
0: और पशु चिकित्सक उस समय निर्धारित करता है कि वहां पे अभी टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या
1: जी
0: उसके सही टाइम पे आने पे लगाना चाहिए।
1: जी
0: तो एक बार पशुपालक भाइयों को पशु चिकित्सक से जरूर परामर्श लेना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी जी अच्छा, इसके अलावा अगर हम पशुओं की साफ सफाई की बात करें या उनके रहने की बात करें, तो
0: जी
1: उनके
0: जी
1: आवास के प्रबंधन में क्या विशेष ऐसे ध्यान रखे जाएं जिससे कि वो उन्हें बीमारियां नहीं हों?
0: जी देखिए, कई बार क्या होता है कि पशुपालक भाई जो है पशुओं के आवास व्यवस्था को नजरअंदाज कर देते हैं, और उचित आवास ना मिलने से पशुओं के उत्पादन में कमी हो जाती है और उसका जो प्रोडक्शन मिलता है वो उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है उसका। देखिए, अधिक गर्मी होती है या फिर ज्यादा सर्दी होती है तो पशु उस वातावरण से जूझने लग जाता है, जिससे क्या होगा, उसका दूध देने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। तो इसका सीधा सा आर्थिक नुकसान पशुपालक भाई को ही झेलना पड़ता है।
1: जी
0: तो अब दूसरा है, एक जो पशु का जो गृह है या जिसको पशुशाला अपन बोलते हैं, वो क्या है, ऊंचे स्थान पर बनी होनी चाहिए, ताकि वहां से क्या पानी का निकास आसानी से हो जाए, तो
1: जी
0: वहां गंदगी इकट्ठी नहीं रहेगी और थोड़ी पशु को आरामदायक लगेगा और वहीं पे स्वच्छ वातावरण बना रहेगा। एक है कि जो पशु की जो छत है या पशुशाला की जो छत है उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखनी चाहिए कभी भी। 2.5 मीटर तो मिनिमम रखनी चाहिए, उससे ऊपर ही रखनी चाहिए, ताकि क्या है कि तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है आसानी से।
1: जी
0: यदि पशुशाला का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो उस पशुशाला में रहने वाले अधिकांश पशु मलचक्र में नहीं आ पाते हैं,
1: जी
0: और मलचक्र में नहीं आ पाते हैं तो उनका ब्यांत पीरियड या ब्यांत का जो टाइम है वो भी बढ़ जाता है।
1: जी
0: इससे क्या है, किसान भाई को नुकसान उठाना पड़ता है। एक है, यदि पशुशाला की जो छत है वो पक्की छत बनी हुई है तो उसके ऊपर क्या है, घास फूस हो गया, पराली हो गई, ये डाल के पानी का छिड़काव कर सकते हैं अपन गर्मी के मौसम में, ताकि क्या है गर्मी से राहत मिल सकती है। एक है, पशुशाला जो है उसके आसपास अपन बड़े जो छायादार पेड़ है वो लगा सकते हैं, ताकि पशु को ज्यादा गर्मी का सामना ना करना पड़े।
1: जी
0: पशु गृह की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, ताकि क्या है कि पूर्वा और पछवा दोनों हवाओं का फायदा पशु आराम से उठा सके। और सर्दी के मौसम में क्या है कि एक दो खिड़की को छोड़ के बाकी सारे खिड़की सारे दरवाजे ये बंद कर देने चाहिए, ताकि पशु को सर्द हवाओं से सामना ना करना पड़े रात के समय में। जो फर्श है वो कठोर और फिसलन रहित तो होना चाहिए, ताकि क्या हुआ है, और पानी को सोखने वाला होना चाहिए, ताकि पानी,
1: पानी का मतलब निकासी अच्छी होनी चाहिए
0: हाँ
1: उसमें
0: जी हाँ
1: से,
0: जी बिल्कुल,
1: पानी ठहरे
0: पानी
1: नहीं।
0: पानी वहां पे ना रुके तो अच्छा रहेगा, हाइजीन बनी रहेगी या स्वच्छ वातावरण बना रहेगा। पशु गृह में लगभग 2.5 से 4 वर्ग मीटर छाया और 7 से 8 वर्ग मीटर खुले स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक जो पशु है वो अपने आराम से घूम फिर सके, आराम से विश्राम कर सके। एक है, जो जो खड़े होने के स्थान के पीछे लगभग 35 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी नाली होनी चाहिए, ताकि जो पशु का मल मूत्र है वो आसानी से उस नाली के थ्रू बाहर निकल जाए,
1: जी
0: उसका निकास
1: जी
0: हो जाए,
1: जी
0: ताकि
1: जी
0: वहां पे स्वच्छता का वातावरण बना रहे। दूसरा है पशुओं को नहलाने की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए पशुशाला के अंदर। इससे देखो ऐसा होता है कि दुधारू पशु को यदि ग्रीष्म काल में अपन दो बार नहलाते हैं सुबह और शाम को, तो जो दूध

0: उत्पादन होता है उसमें 5% की बढ़ोतरी देखी गई है।
1: जी जी
0: और नहलाने का समय दोपहर में यदि धूप लगा हुआ है पशु को तो बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए, उसको सुबह के टाइम में नहलाना चाहिए और शाम को थोड़ा देर शाम तक नहलाना चाहिए। और पशुशाला की जो सफाई है उसका विशेष कर ख्याल रखना चाहिए पशुपालक भाई को या किसान भाई को, क्योंकि संपूर्ण पशुशाला जो पशु आवास है वो उसी में पशु रहता है और उसका समय समय पर जीवाणु रहित करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु है वो वहां पे पनप नहीं पाएंगे, वो पनप नहीं पाएंगे तो पशु का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा, वो बीमार नहीं होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, ये आवास प्रबंधन आपने बताया, टीकाकरण आपने बताया कि इनसे बीमारियों से बचा जा सकता है, इसके अलावा पशु को स्वस्थ रखने के लिए आहार भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो पशुओं का आहार संतुलित हो इसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं या पशुपालक हैं वो क्या कर सकते हैं?
0: जी देखिए, जो पशु का आहार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पशु है उसको जितना अपन जैसा आहार देंगे वैसा ही उसका उत्पादन वो हमें प्रोवाइड करेगा या प्रदान करेगा। अच्छा खाना देंगे तो अच्छा दूध का उत्पादन करेगा, अच्छा खाना देंगे, अच्छा पानी पिलाएंगे तो उससे जो मांस का है वो भी अच्छा उत्पादन देगा। तो देखो, संतुलित आहार से पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा पशुपालक भाइयों को कि संतुलित आहार होता क्या है। संतुलित आहार का मतलब होता है कि ऐसा आहार जिसका 2/3 हिस्सा चारे से बना हो और 1/3 हिस्सा बाटे से मिलके बना हुआ हो, साथ ही उसके अंदर क्या है पर्याप्त मात्रा में मिनरल मिक्सर पाउडर हो, विटामिन्स हो और नमक उसके अंदर उपस्थित हो। अब जो चारा है उसमें भी 2/3 हिस्सा तो सूखे चारे का होना चाहिए और 1/3 चारा जो हरा चारा है उसका होना चाहिए। अब जो पशु को जो बाटा देते हैं वो मिश्रित प्रकार का होना चाहिए, जैसे कि क्या है कपास की खली हो गई, मूंगफली की खली हो गई, सरसों की खली हो गई, चना चूरी हो गई, मूंग की चूरी हो गई और अरहर की चूरी हो गई। ये जो चूरी है वो क्या करती है, पशु की जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती है। और बाटा जो है वो हमेशा भिगो के ही देना चाहिए। बाटा भिगो के देने से क्या होगा कि जो बाटे की जो स्वादिष्टता है वो भी बढ़ जाएगी और उसकी जो पशु की पाचन करने की क्षमता है वो भी उससे बढ़ जाती है, वो आसानी से पाचन हो जाता है उस बाटे का। और अपन देखो मोटे तौर पर देखें तो एक जो गाय या भैंस है उसको 1 दिन में 4 किलो सूखा चारा दिया जाना चाहिए, 1 किलो बाट दिया जाना चाहिए और 20 किलो हरा चारा, साथ में क्या 50 ग्राम खनिज मिश्रण पाउडर दे दे, 30 ग्राम नमक और 40 से 50 लीटर स्वच्छ ताजा पानी उसको 1 दिन में दिया जाना चाहिए। और यदि वो पशु दूधारू है, मतलब वो दूध दे रहा है इस समय, तो क्या है कि जो गाय है उसको 2.5 किलो दूध पर 1 किलो बाटा अतिरिक्त देना चाहिए और भैंस है उसको 2 किलो दूध पर 1 किलो बाटा अतिरिक्त देना चाहिए। अब देखो, यदि अच्छा या अच्छा खाना दिया जाता है पशु को, जो नवजात है यदि 6 माह की बछड़ी है उसको उच्च गुणवत्ता का जो संतुलित आहार दिया जाए तो वो क्या है कि 2 से 2.5 वर्ष तक अपनी पूर्ण उसका विकास हो जाता है, उसके जो प्रजनन अंग है वो भी अच्छे से विकसित हो जाते हैं और वो गर्भाधारण करने के सक्षम बन जाती है। इससे क्या होता है कि पशुपालक भाई को सीधा सीधा नुकसान न होके फायदा होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, संतुलित आहार और आवास प्रबंधन के साथ में कई बार हम देखते हैं कि गाय या भैंस है या हमारी बकरियां हैं जिन्हें हम रखते हैं, उनके शरीर पर छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो लग जाते हैं, ये जो पिस्सू हो जाते हैं या चींचड़े जिनको हम कहते हैं, तो ये जो परजीवी हैं जो शरीर के अंदर भी होते हैं और शरीर के बाहर भी होते हैं, तो ये इन परजीवी का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?
0: जी देखिए, पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि परजीवी क्या है। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने खाने या पानी के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वो खुद अपना खाना पानी नहीं बनाते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का मतलब है कि जो पशुओं के शरीर के बाहरी शरीर पर चिपके हुए रहते हैं या त्वचा पर चिपके हुए रहते हैं और वहां से क्या करते हैं, खून चूसते हैं उनका और खून चूसते पशुओं को बिल्कुल कमजोर बना देते हैं। जो पशुओं की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं वो भी कमजोर कर देते हैं, तथा जैसे अब प्रतिरक्षा तंत्र भी उनका कमजोर हो गया और उसका जो उत्पादन है वो डेफिनेटली कम होना ही होना है, क्योंकि यदि वो परजीवी उसका सारा का सारा खून चूस रहे हैं, उससे जो भी पोषण जा रहा है अंदर वो परजीवी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जाना शरीर उसके, मतलब वो जो है पोषण है वो पशु को जाना चाहिए लेकिन पशु नहीं ले पाता उसका फायदा, उसका फायदा वो परजीवी उठा लेते हैं।
1: जी, जी।
0: तो जे अब दूसरा मैंने बताया कि अंतः परजीवी क्या है। अंतः परजीवी वो होते हैं जो शरीर के अंदर की तरफ होते हैं, जैसे पेट के कीड़े हो गए या फिर थिलेरियोसिस बीमारी होती है उसके जो उत्तरदायी जीव है, बबेशियोसिस बीमारी है उसके लिए उत्तरदायी जीव है, या फिर अपन यूं कहें तीबरसा एक बीमारी होती है ऊँटों में, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीव है वो अंतः परजीवी होते हैं
1: जी।
0: अब ये क्या करते हैं, पशु पोषण का उपयोग खुद कर लेते हैं। जो अपन ने जो संतुलित आहार की भी बात की है, वो पेट के अंदर यदि वो कीड़े हैं तो जो संतुलित आहार जाएगा वो पशु के पास ना पहुंच के, पशु के शरीर में न जाके,
1: पोषक तत्व उसमें से परजीवी,
0: वो पोषक तत्व सारे के सारे वो परजीवी ले लेते हैं। तो अपन को लगता है अपन खाना भी बढ़िया दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या है, वो परजीवी जीव उत्तरदायी है, तो उन परजीवी जीवों को अपने को उनसे हटाना ही पड़ेगा अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो अंतः परजीवियों से छुटकारा पाने के लिए क्या होगा, प्रत्येक पशु को डीवर्मिंग करवानी चाहिए। डीवर्मिंग का मतलब है पेट के कीड़े की दवाई होती है, तो पेट के कीड़ों की दवाई है वो हर 3 महीने में जो वयस्क पशु उसको देनी चाहिए, ताकि क्या है उसके पेट के सभी कीड़े बाहर निकल जाए पेट से, और जो भी जो अपन जो पोषण दे उसको उसका सारा का सारा फायदा पशु को पशु ले सके।
1: जी, और बाह्य परजीवियों के लिए क्या किया जाना चाहिए?
0: देखिए, बाह्य जो परजीवी है उनसे बचाव के लिए पशु चिकित्सक से हमेशा संपर्क करना चाहिए, और कुछ दवाइयां जैसे कि मार्केट में अवेलेबल है, साइपरमेथ्रिन हो गई, डेल्टामेथ्रिन हो गई, इनका क्या है एक पानी के साथ घोल बनता है और उस घोल को पूरे शरीर के ऊपर छिड़का जाता है और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो घोल अपन ने लगाया है वो एक तरीके का जहर होता है, तो वो जानवर चाट ना पाए, तो 24 घंटे तक जानवर की निगरानी रखनी होती है, उसके बाद में उसको साफ पानी से जानवर को नहला दिया जाता है।
1: जी जी। अच्छा, अब पशुओं में हम रोगों से बचाव की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर हम कहें तो नवजात जो पशु हैं या छोटे पशु हैं वो ज्यादा बीमारी से ग्रसित होने वाले होते हैं, तो नवजात पशुओं का कैसे ध्यान रखें, कैसे उन्हें बीमारियों से बचा सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। जो नवजात बछड़ा है वो नया नया एकदम वातावरण में आता है, तो वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ब्याने के बाद में बछड़े या बछड़ी को जितना जल्दी हो सकता है उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिसको देसी भाषा में खीस बोलते हैं या फिर कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। खीस में क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक कारक होते हैं जो कि बछड़े की आंतों से शुरुआती 48 घंटे तक ही अवशोषित हो पाते हैं, उसके बाद में बहुत कम मात्रा में अवशोषित होते हैं। क्योंकि नवजात बछड़े या बछड़ियों के जन्म के 48 घंटे बाद में क्या है कि आंतों के जो छेद है या जो कोशिकाएं हैं जिनके बीच में छेद होते हैं वो भर जाते हैं, तो वो वहां पे पहुंच नहीं पाते हैं शरीर के अंदर। इसलिए क्या है कि 48 घंटे शुरू के जो 24 घंटे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खीस उसमें बहुत मात्रा में खीस पिलाना चाहिए। अब जो खीस है वो कैसे पिलाए, कितना पिलाए, उसकी मात्रा के लिए जो गाय या भैंस के जो बछड़े हैं उनको शरीर के वजन के 10वें हिस्से के बराबर एक दिन में खीस पिलाना चाहिए
1: जी।
0: और जो बकरी है, बकरी या जो भेड़ का बच्चा है उसको अपने वजन के 6वें हिस्से के बराबर खीस पिलाना चाहिए
1: जी,
0: ताकि उसका क्या स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहे, उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास हो सके
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने आज पशुओं में रोगों से बचाव के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर बातचीत के साथ। आपसे चाहते हैं इजाजत, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना।
6: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
5: वो कैसे?
6: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
5: कॉल 1800 1234।

0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
1: विशाल भाई
2: जी,
1: देखो डॉक्टर श्रीराम करीर बहुत चौकी जानकारी अपना किसान भाई ने दी कि भी रोगों से बचाव हेतु पशुओं की देखभाल चूंकि जानकारी ही, और किसान भाई चूंकि इसी जानकारी को लाभ जरूर लेवंगा अपना।
2: अरे अब देखो जानकारी कैसा कैसा गया, अब एक सुनशा चौको सो गीत
1: सुना दे सर।

0: विशाल भाई, परवीन मिर्जा की आवाज में लोकगीत तो आप बहुत चोको सुनाए, उड़ उड़ रे मारा काला कागला। और देखो, कागला की बात करता करता है अब घड़ी की सुइयां इशारे कर दिया है कि भाई किसान वाणी कार्यक्रम को समय पूरा हो चाले है। तो महेश भाई ने और
1: विशाल भाई ने दियो आज्ञा,
0: करा राम
1: राम
0: राम
1: राम सा।
0: सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
0: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
2: जी।
0: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
2: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
0: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
2: जी।
0: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखण्ड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
2: पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
2: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
0: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
2: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
0: तो चलिए श्रोताओ, आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था

0: बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
1: श्रोताओं, उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
0: जी।
1: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
0: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
1: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ, लेकिन श्रोताओं, अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
0: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था। लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
1: और इसी क्रम में श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
0: क्या हुआ था अजीत जी?
1: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी, जबकि वे जीवित थे
0: जी।
1: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
0: जी, क्या छपा था?
1: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
0: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी।
1: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
0: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
1: और श्रोताओं, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
1: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ।
0: जी
1: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
0: वो कौन सी अजीत जी?
1: वो यह है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
0: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओ, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
1: तो श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
0: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
1: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
0: जी
1: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
0: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए और हमारा सवाल है,
0: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
1: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है।
0: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
1: जी
0: तो श्रोताओ, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो

0: एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए।
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
3: अरे मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
4: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
3: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
4: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
3: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
4: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
5: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
4: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
5: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
4: क्या कहा?
5: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
4: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
2: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
5: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
3: नहीं, अरे ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
6: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
5: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ

0: जाती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
1: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
2: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
1: तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना कठिन है।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
4: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
5: नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
6: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
7: त्रेता युग में आरुणी उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
8: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थीं। एक दिन,
9: कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
10: जो आज्ञा आचार्य।
9: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रख।

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।
4: बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
5: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़।
6: ओह, पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
5: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
7: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है।
0: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
1: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
6: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
0: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
5: श्वेत केतु,
6: अष्टावक्र, मुझे
5: प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते हैं। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
6: हाँ,
5: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
6: कब चलना है?
5: बस अभी तुरंत।
0: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
8: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
5: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं, कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
1: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास

0: पास ले जाया गया।
1: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
2: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
3: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है।

0: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है, जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता, और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
1: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता, और नदी वेग से बहती है।
0: अत्यंत सुंदर।
2: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
0: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं, मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
1: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
3: मिथिलेश की जय हो। मिथिलेश की
4: जय हो।
5: जय हो।
6: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
1: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
2: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे।
0: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं?
1: आप सब अपने आप को महान समझते हैं, और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है, परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
0: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
1: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है, आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
0: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी। वाक द्वंद्व का अंतिम दिवस है आज। वाद विवाद करने के लिए मैं इन होनहार बालकों को यज्ञ मंडप में महापंडित बंदी से मिलने की अनुमति देता हूं। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्दालक के शिष्य अष्टावक्र और दूसरी वेदी पर राज पंडित बंदी।
7: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक, और इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
8: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
7: मुकुल सिंह,
8: वीरेंद्र
7: और हमारी आज की विशेषज्ञ
8: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे एल्बम सॉन्ग्स, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के एल्बम से कुछ सॉन्ग। लीजिए सुनिए पहला ये गीत।

जिंदगी तू ही तो है। काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से एल्बम सॉन्ग्स। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के कुछ चुनिंदा सॉन्ग्स। लीजिए सुनिए अगला ये एल्बम सॉन्ग।

इसी गीत के साथ हमारा आज का ये एल्बम सॉन्ग्स का प्रोग्राम यही खत्म होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से ही बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम घूम।

जगत में।

0: बोले भाई रूपा दे।
1: घेवरचंद टेलर की आवाज में अभी आपने ये सुना, इसलिए लोग संगीत के इस कार्यक्रम घूमर में अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 8:45 हो रहे हैं संध्या के। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित, विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतकम में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजी नगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
3: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
4: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक कोड है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ।
2: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान

0: श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
1: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
0: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं गजलों का प्रोग्राम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं गुलाम अली को।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली को। लीजिए सुनिए अगली गजल।

0: इसी गजल के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचनों से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:25 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कल्पना कीजिए, साल 2001 का कच्छ, चारों तरफ धूल, मलबे का ढेर और अपनों को खोने का सन्नाटा। उसी राह के ढेर से जब एक नए नेतृत्व ने जन्म लिया तो उसने कंक्रीट के पत्थरों में केवल इमारतें नहीं बल्कि भारत का आत्मविश्वास चुनना शुरू कर दिया। समय बदला, पन्ने पलटे और कच्छ के मलबे से उठा वही संकल्प जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचा तो नए भारत की नई सौगात दिखने लगी। गुजरात के स्वर्णिम संकुल के प्रशासनिक कमरों से शुरू हुई ये सोच आज नर्मदा के तट पर 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर बादलों को छू रही है। वैश्विक आर्थिक मंचों पर भारत की ढाक जमाने वाला भारत मंडपम और यशो भूमि के झिलमिलाते कांच में आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक और स्मृति वन से अपनी साहसिक, सांस्कृतिक और संवेदना की जड़ों को सींचा गया है तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और कैंपागोड़ा T2 तक बिछते नए रनवे कह रहे हैं ये नया भारत है जो अब किसी की ओर देखता नहीं, दुनिया को राह दिखाता है। और यही वो एहसास जगाता है जो नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम चर्चा करेंगे नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर। और इस विकास गाथा के पन्नों को एक एक कर खोलने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर केजी सुरेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और शिक्षाविद, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: सुरेश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारत की सार्वजनिक पहचान की बात करते हैं तो बीते एक दशक के दो बड़े स्तंभ यशो भूमि और भारत मंडपम, चाहे G20 का आयोजन हो, ब्रिक्स का आयोजन हो, AI समिट का आयोजन हो, G20 में हमने देखा यशो भूमि जो कन्वेंशन सेंटर बना है, एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, कई तरह के एक्सपो एग्जीबिशन वहां लगे होते हैं। आपसे मैं जो समझना चाह रहा हूँ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, जो नई तरह की संस्कृति डेवलप हो रही है, उससे भारत को वैश्विक पहचान बनाने में कैसे मदद मिल रही है?
3: बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की एक पहचान जो रही है वो एक औपनिवेशिकतावादी एक पहचान रही है। कोई भी अगर पर्यटक भी आता है तो वो इंडिया गेट जाएगा, राष्ट्रपति भवन जाएगा या लाल किला, जो आप देखेंगे कि मुगल कालीन है। भारत कहाँ है, भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ है, अक्सर कई लोग पूछते हैं कि इसमें भारतीय कहाँ है। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हमारी अपनी पहचान, आज हम एक उभरते हुए विश्व शक्ति है, एक विकासशील देश है जिसके बारे में 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। आज वैश्विक मंच पर हमारा नेतृत्व है, चाहे वो G20 का रहा हो जिसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम का देह दिया था, या ब्रिक्स का नेतृत्व रहा। ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधिमंडल, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष जब वे आएंगे तो उनको आधुनिक भारत की छवि, जिसमें आधुनिक भारत तो है ही लेकिन साथ में एक प्राचीन सभ्यता की झलक भी मिले, ऐसे क्या सभागार हो सकते हैं क्या, ऐसा क्या जगह हम बना सकते हैं क्या? देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि काफी वर्षों तक नैम समिट मुझे याद है, छोगम मुझे याद है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये सब हुआ था विज्ञान भवन में। लेकिन विज्ञान भवन का एक समय आज के जो आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जबकि उसको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है उसमें कई कमियां दिख रही थी। तो ऐसे में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में आज भारत मंडपम हो या यशोभूमि हो, आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व में लोग एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि भारत के पास भी एक ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और मैंने कई विदेशियों का ब्लॉग देखा है जिसमें, या वीडियो ब्लॉग्स देखते हैं उनमें, जिसमें ये दिखाते हैं कि क्या आप ये देख रहे हैं, ये क्या भारत में हो सकता है क्या। मैं पड़ोसी मुल्क में लोग जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो फोटो दिखाते हैं वहां के नागरिकों को, वो पूछते हैं ये किधर का होगा, तो कोई सिंगापुर कहता है, कोई हांगकांग कहता है, फिर वो यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं ये भारत में है। तो यानी कि इससे भारत की जो छवि उभर कर आई है पूरे विश्व में स्थापित हुई है। और साथ साथ मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके का अर्थव्यवस्था में आज हमारा जीडीपी विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में हम खड़े हुए हैं, जिस तरीके से आज विदेशी निवेश भारत में हो रहा है, जिस तरीके से जो है वहां के पूंजी निवेश यहाँ कर रहे हैं, निवेशक यहाँ आ रहे हैं, उनको भी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ प्रदर्शनियां करें, बैठकें करें, सम्मेलन करें, संगोष्ठियां करें। तो मैं समझता हूं कि ये दो जिनका आपने जिक्र किया है, ये हमें बहुत गौरवान्वित करती है। और साथ ही साथ जो नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसका उसमें जो है हमने समाहित किया है, जिससे आज विश्व स्तर में जब बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स की जिक्र होती है तो उसमें जो है इन दोनों का नाम भी शुमार।
2: मदन जी, अगर इतिहास के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटे, चूंकि हम प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत गुजरात से हुई, वहां महात्मा मंदिर का निर्माण हो, स्वर्णिम संकुल हो, या फिर कच्छ के भूकंप के बाद जो स्मृति वन बना और फिर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की नर्मदा के तट पर, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। तो जब शुरुआत गुजरात के इन बड़े और भव्य इमारतों के साथ हुई तो सोच बदलने लगी थी। उस सोच को बदलने की कहानी आपसे समझेंगे, क्योंकि 2001 से के अगले 10 वर्षों में ये सब कुछ होने लगा था, घटित होने लगा था। कैसे देखते हैं उस फेज को, क्योंकि नए भारत की नींव उस समय बननी शुरू हो गई थी।
4: देखिए, आपने गुजरात का जिक्र किया, उससे पहले मैं एक रोचक इंसिडेंट बताऊंगा। ये करीब 2018-19 की बात होगी, मैं कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, स्पेन गया था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा तो मुझे, मेरे दिमाग में पहली बात यह आई कि ऐसे हॉल, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे देश में क्यों नहीं। ये बात तब तक है, तब तक मैं गुजरात नहीं गया था, स्पेशली मैं जो गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया वो मैंने नहीं देखा था। उसके 6 महीने बाद ही मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और तो मैं देख के दंग रह गया कि हमारे देश में ऐसा हॉल पहले से मौजूद है। जब मैंने महात्मा मंदिर देखा और उसका जो स्टाइल देखा, जिस प्रकार से वहां पर सारे सिस्टमेटिक है, वही चीजें भारत मंडपम में और यशोभूमि में भी है। विज्ञान भवन में वो चीजें नहीं है, विज्ञान भवन बहुत पहले का बना था और एक सीमित कैपेसिटी का हॉल था और हमारे पास तब ले देखे दिल्ली में विज्ञान भवन ही हुआ करता था और सारी कॉन्फ्रेंस उसी में सीमित होती थी। और अगर मुझे ये भी याद है कि एक 2006-07 के आसपास कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूसा में हुई थी, और वहां पर क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और हमारे पास कोई हॉल नहीं था और विज्ञान भवन से काम नहीं चल रहा था या वहां पर कोई बिजी था, तो बाहर टेंट लगाया गया था, एक बहुत बड़ा टेंट जैसे पब्लिक रैलियों में लगाया जाता है, पॉलिटिकल रैलियों में लगाया, उस तरह का एक टेंट लगाया गया था। तो जब 2019 या 20 में मैं दोबारा महात्मा मंदिर में गया और मैंने वहां देखा कि मैंने कहा इतना शानदार हॉल गुजरात में बन सकता है और उससे 4-5 साल पहले वो बन चुका था, तो फिर ऐसे हॉल दिल्ली में क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें चलते रही, दिल्ली में बनी, यशोभूमि तैयार हुआ और G20 का हमने सफल आयोजन देखा, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ पहल है और एक ये सोच जो थी कि भारत एक विकासशील देश है या एक गरीब देश है, एक सोच बनी रहती, जब भी कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता वो लगता था कि भारत भाई एक विकासशील देश है या गरीब देश। भारत एक विकासशील देश जरूर है, लेकिन वो एक विकसित देशों की ओर बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और उसकी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात अभी सर ने बोली, तो जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लक्ष्य हमने रखा है 2047 का, वो हम पारित, वो वहां तक हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो उसी की दिशा में, उस दिशा में ये जो, चाहे वो महात्मा मंदिर हो, चाहे वो यशोभूमि हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो, इसका भी निर्माण हाल ही में हुआ है, और सेंट्रल विस्टा का जिस तरह से तेजी से विस्तार हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने जो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसको काम करने के लिए जब तक हम बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे और उसको हम एक वर्ल्ड क्लास का नहीं बनाएंगे और उसको मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी जरूरतें हों, चाहे वो फायर सेफ्टी की जरूरतें हों, चाहे वो एक ह्यूज कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत हो, जब तक हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे तब तक हम जो अपने लक्ष्य हैं, जो अपने बड़े लक्ष्य हैं, तो उसमें भी शामिल कैसे होंगे। अगर सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत अच्छी तरक्की करे, तो मुझे उसे बेसिक संसाधन, बेसिक सुविधाएं उसे देनी पड़ेंगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे उसे कपड़े देने होंगे, अच्छे जूता पहनाना होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझें कि सड़क और एयरपोर्ट, ऑफिस भी अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होना चाहिए, अच्छी पार्लियामेंट भी होना चाहिए, एक सरकारी दफ्तर है तो वहां पर हमारा फास्ट इंटरनेट भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये हम लगातार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कई चीजें बेहतर होंगी।
2: जी सुरेश जी, हमने यशु भूमि का जिक्र किया, हमने गुजरात के कुछ संस्थानों का जिक्र किया, तीन और ऐसी पृष्ठभूमियां हैं, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। इसमें जो खास रहा, राज से कर्तव्य की ओर बढ़ना और सत्ता से सेवा की भाषा को बदलना, कैसे देखते हैं आम जनमानस के नजरिए से और इसे प्रशासनिक सुधारों के भी नजरिए से, जो राज था वो कर्तव्य बन गया, जो सत्ता था वो सेवा की भाषा बन।
3: बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब पहले पदभार संभाला 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक, वहीं से ये यात्रा शुरू होती है। तो अपने आप को सत्ता का अहंकार की जगह सत्ता में जो विनम्रता आनी चाहिए कि सत्ता जो है वो लक्ष्य नहीं है, वह एक माध्यम है, सेवा का माध्यम, वह जो है एक साधना है जिसके माध्यम से हम दीनदयाल जी का जो अंत्योदय की जो बात कही थी, या गांधी जी ने दरिद्र नारायण की जो बात कही थी, उनको वहां से उठाकर उनको जो है एक विकसित भारत में, जहां विकसित भारत सिर्फ अधोसंरचना नहीं है, वहां हर व्यक्ति को अपना जो है जो हक है उसका अधिकार है वह प्राप्त होगा और सही मायने में हम स्वतंत्र होंगे। याद रखिए, हम स्वाधीन जरूर बने 1947 में, लेकिन स्वतंत्र, हमारा अपना, हमारे सड़कों का नाम विदेशियों के नाम पर होता था, हमारे भवन जो है विदेशियों का बनाया हुआ था, हमारा अपना क्या। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की जो यात्रा है, और खासकर अमृतकाल में जो हमने 1947 से लेकर 2022 तक जो हमने जो 75 वर्ष और अमृत महोत्सव बनाया, और वहां से शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है, वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसमें यह बहुत आवश्यक है कि हमारा जो है न सिर्फ हमारे अधिकारों की बात हो, साथ साथ हमारे दायित्व बोध भी हमें, ये बहुत आवश्यक है। एक नागरिक को दायित्व बोध, और नागरिक कोई नहीं, सत्ता में जो बैठा है उसको भी। इसलिए राजपथ जो है कर्तव्य पथ बना, कि कर्तव्य पर जोर है, हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहे हैं हमेशा, तो राइट सेंट्रिक जो एक आख्यान रहा है उससे हटकर हम जो है दायित्व बोध पर केंद्रित, हर नागरिक अपना योगदान दे और उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी सेवा तीर्थ, अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखते हैं, क्योंकि ये सेवा का जो है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सारा नीति निर्धारण होता है, तो अगर वही सेवा तीर्थ हो गया तो आप समझिए कि क्या संदेश नीचे तक पूरे प्रशासन कि हम यहां सत्ता भोगने नहीं है, सत्ता को सेवा का एक माध्यम बनाकर हम आए। तो इसलिए हम सेवा तीर्थ में भी वही संकल्प को हम देखते हैं, परिलक्षित होते हुए देखते हैं, हम उसी संकल्प को हम देखते हैं जब आप कर्तव्य भवन जो देखें। अब आप कर्तव्य भवन को देखिए, उनका निर्माण देखिए, आधुनिक सारी सुविधाएं, लेकिन भारतीय विरासत और विकास दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखता है, जगह का कितना सदुपयोग हुआ है और उनमें इतनी ऊर्जा है, वो इकोनॉमिकली ही नहीं, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के दृष्टि से भी, उसमें कई, चाहे वो सौर्य ऊर्जा को लेकर हो, उसमें कई व्यवस्थाएं की गई है ताकि वो विश्व के आधुनिक भवनों में से उनकी गिनती होती है, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से आधुनिक इंटरनेट और नेटवर्क और सभी सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें आप देखेंगे, मुझे कहते हुए ये है कि अफसरों के कमरे जो बड़े बड़े होते थे, आज उतना ही समय जो फंक्शनल जिसको कहते हैं कि आपको कमरे की आवश्यकता है, कमरा है जहां से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पब्लिक को बैठने की जगह, जहां लोग मिलने जाते हैं उनको बैठने की जगह, बाकी जो जन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध किया गया है, बहुत सोच समझ कर, एक जनता को केंद्र में रखकर इन भवनों का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन सबके मध्य में जो है वह अंत्योदय में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वह लोक दरिद्र नारायण है, जिसके सेवा के संकल्प को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का प्रयास किया है।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने पर विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में ये विशेष एपिसोड। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर, और हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं, प्रोफेसर केजी सुरेश और मदन जेड़ा जी। मदन जी, ये सब कहानियां भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में की जा रही हैं, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संपर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। एविएशन सेक्टर और क्षेत्रीय संपर्क की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु का केम्पागोड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गुवाहाटी का नया टर्मिनल और आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी लोकप्रिय है, ये तीन अलग अलग रणनीतियों को दर्शा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर हब के रूप में उभरेगा। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पूर्वोत्तर को एशियन देशों के साथ अष्टलक्ष्मी एक्सप्रेस वे के रूप में जोड़ रहा है। आपसे समझना चाहते हैं कि सार्वजनिक अवसंरचना का ये क्षेत्रीय संतुलन भारत के आर्थिक नक्शे को किस तरह रीडिजाइन कर रहा है।
4: देखिये, दो तीन चीजें हैं, हमें ये देखना होगा पिछले कुछ सालों से। एक तो हमारा जो एयर पैसेंजर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बहुत तेजी से एयर पैसेंजर बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जो कार्गो है, एयर कार्गो है, वो उसकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का भारत की तरफ रुझान है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हो, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की वजह से आ रहा हो, चाहे वो गोवा या एक उत्तराखंड में जो हिल एरिया का टूरिस्ट है उसकी वजह से आ रहा हो, तो कई कारणों से टूरिस्ट भारत आता है, इलाज से लेकर पर्यटन तक और धार्मिक कारणों से, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

0: मुझे डाटा अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप डाटा देखेंगे तो लगातार तीनों सेक्टर में टूरिस्ट बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हो और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं उनको बेहतर बनाया जाए और उनको एक नई पहचान दी जाए। अगर आप बेंगलुरु का टर्मिनल 2 अगर देखें तो बेंगलुरु एक आईटी का बहुत बड़ा हब है और इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि वहां पर एक किस प्रकार से सारी दुनिया की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका में हमारा कितना ही स्टेक है आईटी का, तो उसका जो ड्राइवर है की ड्राइवर एरिया है वो बेंगलुरु है। तो वहां पर एक जो लगातार एक पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बड़ा है, लगातार बड़ा है। तो उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उसी के पीछे यही रणनीति है कि वहां पर वो व्यवस्था आसान हो और दुनिया के जो बड़े आईटी हब हैं और जो औद्योगिक हब हैं या जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं उन शहरों को बेंगलुरु से डायरेक्ट जोड़ा जाए, और जोड़ा भी गया है और बेहतर जोड़ा गया पहले से। तो इसलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट का अगर उसका हम लोकल पहचान देखें तो वहां पर उस एयरपोर्ट की खूबी है कि वहां पर पेड़ बहुत लगाए गए हैं। तो उसकी जो थीम है वो एक गार्डन बेस्ड थीम बनाई गई है, तो एक भारत की एक अलग पहचान दी गई है। भारत एक वनों का देश है, भारत में वनस्पतियां बहुत सारी हैं। इसी प्रकार जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है तो उसको भी ये इसी तरह की पहचान दी गई है। वहां पर करीब 100 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनके 1,00,000 से ज्यादा पेड़ वहां पर लगाए गए हैं। वो उसको एक सुंदरता के लिए, उसकी क्षेत्रीय पहचान देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट हमारा काफी एक रिच कल्चरल और हैबिटेशन का रिच एरिया है, तो उसकी वजह से वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी ये चीज नजर आएंगी। जहां तक गुवाहाटी एयरपोर्ट की बात है तो गुवाहाटी एयरपोर्ट वैसे तो आज नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें सिविल एयरपोर्ट भी है और जो डिफेंस पर्पज के एयरपोर्ट है उनकी संख्या भी बढ़ी है। जो पुरानी एयर पट्टियां थी उनको लगातार डेवलप किया गया है और वहां पर जो बड़े प्लेन है, चाहे वो डिफेंस के हो चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, वो कनेक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन गुवाहाटी चूंकि एक मेन एरिया है और वहां पर कहें कि नॉर्थ ईस्ट का वो द्वार है और वहां पर हमें ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत थी और वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए उस एयरपोर्ट को डेवलप करने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को बेहतर करना, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट जा रही है, अगर वो गुवाहाटी उतरती है तो गुवाहाटी से फिर वो हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन से आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए गुवाहाटी एयरपोर्ट भी रणनीतिक तौर पर उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उससे दिल्ली से बेहतर हुई है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट में एक है और लंबे समय से बात चल रही थी, और मुझे तो आश्चर्य है कि 2001 में पहली बार ये बात शुरू हुई थी कि हमें जेवर में एक एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन वो लटकते रहा। आखिरकार 2018-19 में इस पे काम शुरू हुआ और ये 2026 की शुरुआत में वो एयरपोर्ट चालू हो पाया। तो ये भी एक सवाल है कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ, ये पहले बन जाना चाहिए था। जब 2000 से बात चल रही थी तो पहले इस पे क्यों फैसला लिया गया। तो जहां पर इस एयरपोर्ट से एक लॉजिस्टिक हब राजधानी एनसीआर में कनेक्ट हो रहा है और जो ये प्लान है फ्यूचर में कि जो लॉजिस्टिक प्लेन है उनको जेवर में उतारा जाए ताकि जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पर पैसेंजर प्लेनों को ज्यादा उतारा जाएगा, तो इससे एक बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर। और कई बार हम सुनते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट आती है कि लैंडिंग के लिए इतना टाइम पालमपुर लग रहा था कि 1 घंटे हवाई जहाज हवा में चक्कर काटता रहा क्योंकि लैंडिंग के लिए उसे रनवे खाली नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर होगी और जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से वहां पर एक लॉजिस्टिक हब धीरे धीरे बन रहा है और आने वाले समय में सारे अगर कार्गो प्लेन वहां पर लैंड होते हैं तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का तो विकास होगा ही, बाकी जो दिल्ली के एयरपोर्ट हैं उनका जो लोड है वो काफी कम होगा। और अभी रिसेंटली अगर हम एक एग्जांपल दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, तो जब किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनकी पर्सनल कार सामान तमाम कमांडो उनके पहले आ जाते हैं, दोनों पहले। तो दो बड़े बड़े प्लेन उनके जब आए तो वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि जब दो बड़े प्लेन अगर वो पालमपुर उतरते तो वहां पर वो 2 दिन खड़े रहते तो वहां पर उतने पार्किंग का स्पेस की प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो अगर ब्रिक्स में रिसेंटली जो ब्रिक्स हुई तो उनके प्लेन 2 दिन वहां पर खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फायदा है कि इस तरह की कभी स्थिति आती है तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इनके।
1: सुरेश जी कहते हैं कि एक राष्ट्र केवल भवनों से नहीं बनता, अपनी स्मृतियों और शहीदों के सम्मान से भी बनता है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण करवाया गया हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर अनगिनत शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, और जब एक देश का युवा जाकर उन शहीदों के नाम को स्पर्श करता है तो एक अलग अनुभूति होती है। साथ ही साथ नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बनाया गया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये स्थल देश के आम नागरिक में कैसे देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं और विकसित भारत बनाने की दिशा में इनकी क्या भूमिका है।
2: निश्चित ही इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, हम सब इंडिया गेट में जाते रहे हैं, अमर जवान ज्योति है वहां, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति स्वयं जाके वहां श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन याद रखें कि वो अंग्रेजों ने बनाई थी और उसमें विश्व युद्ध में जो भारतीय या भारतीय सेना में उस वक्त जो अंग्रेजों के अंतर्गत था उन लोगों के नाम जो है वहां जोड़े गए हैं। भारतीय थे, इसमें कहीं कोई भी फौजी का जब शहीद होता है तो वो सम्मान के पात्र है। लेकिन भारत का अपना, भारत ने इतने युद्ध लड़े 47, 48 में, 62 में, 65 में, करगिल में, उनको भी तो सम्मान देना जरूरी है। तो वो लोग जिन्होंने नए भारत के लिए अपना प्राण निछावर किए, जो शहीद हुए, जिनके वजह से हम लोग हैं आज चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्या उनको एक श्रद्धांजलि, एक ऐसा एक उपयुक्त स्थल आवश्यक नहीं था क्या नवीन भारत में? बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जो वार मेमोरियल बना है उस दिशा में हमारे अंदर न सिर्फ एक स्वाभिमान का भाव जगाता है, अपितु हमारे फौजियों के प्रति, हमारे सिपाहियों के प्रति, जवानों के प्रति हमें एक सम्मान पैदा होता है और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं देश के लिए, कि मैं भी इतिहास में अपना एक जगह पाऊं, कि मैं इन वीरों ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उस कारण जो है आज हम आजादी का जो है चैन की सांस ले पा रहे हैं। उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। जलियांवाला बाग, मैं अभी भी अमृतसर गया था, जलियांवाला बाग में जो है मैं समझता हूं कि हमारे सबसे खूनी अगर अध्याय हमारे इतिहास में रहा तो वो वहां रहा। बेकसूरों को मार दिया गया गोली मारकर, और क्या उनके लिए एक ऐसा स्मृति स्थल आवश्यक नहीं था क्या? बिल्कुल, वो उपयुक्त हो। पहले भी मैं गया हूं वहां तो बड़ा मायूस होकर मैं लौटा कि एक ऐसे जगह जहां कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं, उन जनसाधारण का, जिनको मात्र इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वे भारतीय हैं, इसलिए उनको भून दिया गया, क्या उनके बलिदान को क्या हम कम आंके? तो मैं समझता हूं उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, हमारे पुलिस कर्मी दिन रात 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, क्या उन पुलिस कर्मियों के लिए, और याद रखें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, अर्धसैनिक बल भी पुलिस में ही शामिल होती है, और उन्होंने चाहे वो BSF हो या ITBP हो, इन लोगों ने भी बहुत शहादत दी है हमारे सरहदों, तो उनके लिए क्या जरूरी नहीं है? वो एक उत्तर पूर्व में एक आलेख है जो उनके वहां लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया, दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो, क्या उनको हम लोग सम्मान करें, उनके स्मृतियों को सम्मान करें, उनके परिवारों को एक जगह मिले जहां जाके वो अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं? क्या ये कोई भी देश एक कृतज्ञता ज्ञापन होता है कि उन लोगों के लिए, ये नहीं कि वो जो है उन्होंने अपना कर्तव्य किया, क्या हर आदमी ऐसा कर्तव्य कर सकता है क्या? तो उस पराक्रम को पहचानना, उसको सम्मान देना, और वहां जब हमारे राष्ट्रीय नेता जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उन पुलिस कर्मियों को बता भी रहे हैं जो वर्तमान में भी है कि पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है। ये संदेश बहुत आवश्यक है और ये नए भारत की पहचान है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उनका वो भारतीय दृष्टिकोण है कि उन्होंने जो है इन चीजों को भी उतना ही महत्व दिया जितना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सभागार निर्माण करने के लिए दिया हो, उतना जितना उन्होंने नए भवनों के लिए और नए संसद के लिए दिया हो, वही महत्व जो है उन्होंने इस बिल्कुल संजीदगी की जहां जरूरत है, संवेदनशील जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी उन्होंने उतना ही दिया।
1: इसी चर्चा को मदन जी अगर थोड़ा आगे लेकर चलें तो स्मृति वन जो लगभग 470 एकड़ में है, और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब कच्छ में भूकंप आया था उसके बाद इसका निर्माण वहां पर करवाया गया, उसमें मेमोरियल के साथ साथ अर्थक्विक म्यूजियम और डिजास्टर अवेयरनेस कंपोनेंट्स भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये भारत में मेमोरियल को लिविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की नई प्रवृत्ति का एक शानदार उदाहरण है?
0: निश्चित रूप से है, क्योंकि इसलिए है कि भुज में जो भूकंप आया था तो उसकी त्रासदी, उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और काफी लोग उसमें मारे गए थे, तो मुझे लगता है कि ये देश में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। तो एक जब कोई भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है कुछ समय तक राहत कार्य चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फैसले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो घटना भूल जाते हैं लोग, फिर उसके बाद फिर कोई भूकंप आता है तो फिर वही चीजें होती। लेकिन गुजरात में इस भूकंप को आया तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, ये स्मृति वन भी बनाया गया, और उसमें जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया गया है, और मैं समझता हूँ कि हल्के भुज में जो उसके बाद भुज में जो भी मकान बन रहे हैं वो अर्थक्विक रेजिडेंस बन रहे हैं, ये भी एक बात है, लेकिन ये जो स्मृति वन वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है, क्योंकि एक भूकंप एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता आज तक। साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन भूकंप का प्रिडिक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन भूकंप से 100% बचाव संभव है। भूकंपरोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं और जो इमारतें पहले से भूकंपरोधी नहीं हैं उनको भी आप थोड़ा बहुत काम करके भूकंपरोधी बना सकते हैं। यही चीज शायद स्मृति वन में भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप भूकंप से बच सकते हैं, कैसे लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो उन लोगों की स्मृति मनाया गया, जो लोग उसमें मारे गए, उन लोगों को श्रद्धांजलि तो है ही। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को देश के दूसरे हिस्सों में प्रचारित किए जाने की जरूरत है और भूकंप को लेके, भूकंप के खतरों को लेके और इसके बचाव के तरीकों को लेके लोगों को बड़े पैमाने पर अवेयर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो साइंटिफिक रिपोर्टें हैं वो अभी भी हमारे लिए चेतावनी वाली हैं और जो ये बताती हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्से भूकंप के जोन 4 या जोन 5 में हैं। तो जोन 4 और जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है। तो इस जोन में बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के इलाके हैं, दिल्ली के कई इलाके जोन 4 में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है इसे प्रचारित कर सकें तो एक लोगों को जागरूक करने में काफी अच्छी मदद मिलेगी और लोग अपने घरों को भूकंप से बचाव के अनुरूप बनाने में सफल भी होंगे।
1: सुरेश जी, अब उस जगह चलते हैं जहां से पूरे देश की नीतियां बनती हैं। दशकों तक भारत उस संसद में बैठता रहा जिसे अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के लिए बनाया था। लुटियंस दिल्ली की उन चौड़ी सड़कों और इमारतों में एक किस्म की अहंकार और दूरी की गूंज थी। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना। एक शिक्षाविद के नाते आपसे ये समझना चाहेंगे कि केवल ईंट और पत्थर का बदलाव है या फिर ये बदलाव उस सोच का है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान भी वहां दर्शाई गई है। भविष्य में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी उसके लिए भी वहां पर सुविधाएं की गई हैं। कह सकते हैं कि वो ईंट और पत्थर के बदलाव से कहीं ज्यादा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक साथ ही साथ विकास की नई रफ्तार को गति देने वाला वो इमारत है।
2: निश्चित ही, देखिए जो नया संसद भवन है वो नए भारत की पहचान है। जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में सेंगोल जो प्रतीक है, वो प्रतीक है कि क्या संसद का अधिकार क्या है, उसका प्रतीक है, वो जनता का प्रतीक है सेंगोल, वहां स्थापित किया। और याद रखिए सर्वधर्म प्रार्थनाएं वहां हुई थी, उसके साथ वो शुरू किया गया था। भारत के जो जिसे कहते हैं कि सर्व पंथ समाभाव के भावना को प्रतिनिधित्व किया गया वहां, प्रतिबिंबित किया गया वहां। और जब ये उद्घाटन हुआ तो आप उस भवनों को देखेंगे, उस नए भवन को देखेंगे तो उसमें नए भारत की, वो कहीं विदेश से कोई किसी चीज को आयातित किया नहीं है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि जो पुराना संसद भवन है वो भी जो है आप सांची में जो एक बना हुआ था स्तूप उसी से प्रेरित होकर बनाया था। लेकिन यहाँ प्राचीन हमारे सभ्यता के प्रतिबिंब होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से, और जैसे आपने कहा भविष्य की, अगर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे और प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी आजादी के समय जो आबादी थी उससे 10 गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। आज उस आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं, जहां लाखों लोगों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां संख्या बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में, और हम आज बात कर रहे हैं कि एक तिहाई प्रतिनिधित्व हमारे माता और बहनों के लिए हम सोच रहे हैं, उसका विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो उनको कहां बिठाएंगे। कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता था तो सेंट्रल हॉल में जाना पड़ जाता था, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर उनको कहां बिठाया जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं की गई है, उससे आपको स्पष्ट होता है कि वहां उस विरासत और विकास दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए उसको जो है तैयार किया गया है और आधुनिक भारत का एक प्रतीक बनकर वो उभरा है। तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित ही जो पुराना संसद भवन है वह भी हमारा है, उसमें हमारे भारतीय जो मजदूर है उनके मेहनत से वो बना है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संसद भवन में निर्णय लेते हैं जो हमने बनाया, वो किसी विदेशी का बनाया हुआ नहीं है, वो नए भारत का जो है बुलंद आवाज है।
1: मदन जी, जब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि 25 वर्षों की इस यात्रा में बनी इन सार्वजनिक संरचनाओं में से आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या होने वाली है, उनका आकार, उनका स्थापत्य कला या फिर उनका उपयोग या वो कहानियां जिन्हें वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाने वाले।
0: देखिए तीनों बातें सही हैं। ये एक हमारे विरासत को भी प्रदर्शित करती हैं, दूसरा हमारी जरूरत भी है। जैसे मैंने कहा कि सर ने भी बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनानी पड़ी, जरूरत भी थी उसकी सिर्फ, और बाकी जो भारतीयता की पहचान है, एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है वो भी है, तीनों बातें हैं। इसी प्रकार अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा हमारी विरासत की पहचान भी है, हमारी आज की जरूरत भी है, और जो एक नई पहचान देने की बात कही है कर्तव्य।

0: ही ऑफिस चार अलग अलग बिल्डिंग में चल रहा था, तो उसको एक साथ आने की कोशिश की गई, तो उससे जो एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुआ। इसके अलावा जब वो बिल्डिंगें बनी उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम शास्त्री भवन से लेकर उद्योग भवन में देखते थे कि जिस कमरे में निकलो वहां पर तारों के इतने मोटे वहां पर गुच्छे लटके रहते थे। तो वो सिस्टम नए भवन में इस तरह से बनाया गया है कि आपका वो सीधे सर्वर से निकलेंगे और सर्वर तक ही पहुंचेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेके इन तमाम सेंट्रल सेक्रेटरियट के बिल्डिंग में बहुत बड़ा इशू था। फायर सेफ्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी, तो इनको फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, भूकंप की हम बात कर रहे थे अभी, तो भूकंप रोधी भी बनाया गया, तो ये भी एक चुनौती थी। इसके अलावा जिस जमाने में बिल्डिंगें बनी होंगी उस समय सिक्योरिटी का उतना जरूरत नहीं रही होगी या उतना खतरा नहीं रहा होगा, आज सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस सिक्योरिटी को भी इनमें ध्यान में रखा गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा रहेगा, कहाँ पर उसके दूसरे जो उनके नेटवर्क होते हैं सिक्योरिटी के, उसके भी सारी व्यवस्था की गई। पार्किंग बहुत बड़ा इशू था। अब आप जो पुरानी जो बिल्डिंगें थी सेंट्रल विस्टा की, जो सेंट्रल सेक्रेटरी से हम कहेंगे, तो उसकी बिल्डिंगों में पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। और आज जो नए हमारे कर्तव्य भवन बने हैं तो वहां पर इस तरह से मैनेज्ड पार्किंग है कि अगले कई सालों तक उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, और अब तो उसे मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक विरासत भी है और हमारी जरूरत भी है और एक नई पहचान भी इसके जरिए दी गई है।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इन सार्वजनिक पहचानों के माध्यम से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है?
2: एक आत्मनिर्भर भारत जो अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करता है और साथ ही साथ वो आधुनिक सुविधाएं जिसकी आवश्यकता है हमारे अपने लोगों के लिए, और उनके अंदर एक धैर्य और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है। जब नए भवनों को देखते हैं हमें गर्व ही नहीं आत्मविश्वास भी होता है, तभी जाकर हम जो है सही मायने में विकसित भारत की दिशा में जो है बहुत सकारात्मक और मजबूत कदम उठा पाए।
1: इमारतें बनती हैं लेकिन पहचान बनने में समय लगता है। पिछले 25 वर्षों की सार्वजनिक नेतृत्व यात्रा को देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक तस्वीर लगातार विकसित होती दिखाई देती है। विकास की नई संरचनाएं, प्रशासन की नई जगहें, इतिहास की नई स्मृतियां और भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के नए मंच, लेकिन इन सब की अंतिम कसौटी एक ही है, क्या वे स्थान आने वाले वर्षों में नागरिकों के जीवन, भारत की स्मृति और दुनिया में भारत की पहचान को और बेहतर कर रहे हैं। और इन सब के साथ ही आज का ये विशेष अंक समाप्त होता है। सुरेश जी आपका, मदन जी आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।